0: Talks with Ketan.
1: नमस्ते, सस्तिकाल, सलाम अलैकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से, हम 104.2 एफएम के जरिए। आप मुझे 87.7 एफएम के जरिए भी सुन सकते हैं अगर आप सिटी में घूम रहे हैं या सिटी में आप मुझे सुन रहे हैं तो। यस, जस्ट ट्यून इन इनटू रॉ हम 104.2 एफएम या फिर 87.7 आप मुझे सुन सकते हैं। वैसे रोआ ऐप भी है, रोआ ऐप के जरिए भी आप मुझे सुन सकते हैं। उसके जरिए भी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि कहा था मैंने, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से एंड देन यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन लिसन टू अस एनी टाइम एनी वेयर वो वेयर यू आर। आई मीन इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर इवन हैव यू नो गॉन आउट फ्रॉम द सिटी या फिर कंट्री, वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। चाहे यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर इन सम अदर कंट्री और एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन लिसन टू अस एनी टाइम। जी हाँ, 24 घंटे हमारा शो चलता है, शो एज एन हम एफएम चलता है, अलग अलग शोज आते हैं इसमें। तो अभी मेरा 12 से 3 बजे तक है, आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
0: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Homesick remedies के लिए आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे Lunchbox show पे. आप सुन रहे हैं मुझे और यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसी चीजों की, यानी कि of course आप यहीं के हैं अगर न्यूजीलैंड में, well and good. But if you are from a different country या फिर different states and you must have arrived here quite long time, और यहाँ आने के बाद there might be certain things which making yourself not very comfortable, and of course कुछ ऐसी चीजें जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं. So yes, यही चीज आपको मुझे बतानी है. 5599 is the number जहाँ पे आप मुझे text भेज के बता सकते हैं that there is something, there is one thing which you miss a lot being not from your, you know, away from your hometown or home state or could be home country as well. मैं अपना हमेशा बताता हूँ that, you know, of course I'm from India and काफी चीजें हैं जो मैं miss करता हूँ. But अभी obviously I am addicted to it. As in, like, you know, now I'm like living in New Zealand, so यहाँ आने के बाद, especially in Auckland में आने के बाद तो सच में इतनी ज़्यादा चीज़ें change हो चुकी हैं. यहाँ पे इतने options हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं सचमुच ऐसा फील नहीं होता है जैसे कि मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ. कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ स्टिल है. ऑफ कोर्स जो मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ जैसे कि मेरी माँ के हाथ का खाना जो काफ़ी जल्द पूरा होने वाला है. जब होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा. बट अभी के लिए ये मैसेज आया एक, वो कहते हैं क्योरा केतन, रोहन का मैसेज है ये. यस्टरडे अराउंड 9:30 PM आई वॉज क्रेविंग अ हॉट स्नैक एंड स्टेप्ड आउट इन माई नेबरहुड ओनली टू फाइंड एवरी सिंगल शॉप शट, डार्क स्ट्रीट एंड नॉट अ सोल इन साइट. बैक होम 9 PM वॉज वेन द रोड साइड स्टॉल्स वर बजिंग एंड वी वुड हैंग आउट विद फ्रेंड्स फॉर आवर्स. माई इंडियन friend was saying the exact same thing. Back home, 10 p.m. meant heading out for a late night chai, rolls or ice creams at local tapris. Here in Auckland, by 7 p.m. the city feels completely asleep. This early closing culture makes the night feel so long, silent and lonely. How do we cope up with missing that night, late night desi street vibe? Well, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ. इसका जवाब मैं डेफिनेटली दे सकता हूँ. उसका जवाब ये है कि आई एम नॉट श्योर कौन से सबब में आप रह रहे हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो टू डिफरेंट प्लेसेस. एक सेंड्रिंगम हो गया, देन माउंट रॉस्किल भी हो गया, साउथ में भी पापाटोटे हो गया, पापाकुरा में हो गया. बहुत सारी जगह पे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन आप अवेलेबल हो जाए. पापाटोटे के अंदर मेरे घर के पास ही इतना शानदार एक स्ट्रीट का पूरा लग चुका है जहाँ पे पब्लिक आती है, चाय पीती है, यू नो, स्ट्रीट फूड, पूरा प्रॉपर स्ट्रीट फूड जैसा एक्सपीरियंस हो गया. सो यस, घर पे ना बैठिए. आई एम नॉट श्योर आप कहाँ से हैं. अच्छा, इनका जस्ट मैसेज आया, हैंडरसन इन्होंने कहा है. हैंडरसन में भी है. मैं मेरे ख्याल से अभी लास्ट वीक ही थर्सडे को मैं गया था, वहाँ पे इतना अमेजिंग खाना था यार. एक जगह है पेट्रोल पंप के पास ही, मैं भूल गया मैं एग्जैक्ट, ऑब्वियसली वहाँ रहता नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, और पहली बार गया था मैं. बट यस, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप डेफिनेटली यू कैन हैव एक, यू नो, एग अगर आपको पसंद है तो उसका भी स्टॉल्स है. लेकिन दिक्कत सिर्फ ये, शायद वो 10 या 10:30 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद आप नहीं कर सकते. लेकिन दूसरी वाली जो है वो लेट तक खुली रहती है, 12-1 बजे तक. तो आप तब तक जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं फूड. वंस यू गो देयर, वंस यू ट्राई दैट, प्लीज लेट मी नो कि आपको वहां जाके कैसा लगा. लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
2: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here. Now I'm here. Back here now. Here I am. Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
3: Please use your imagination for the following ad.
4: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like. And once I'd calmed down, I'd actually do something like.
5: Imagine winning $5 million this Saturday. Play in store or online. Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
7: SIT Online. Learn without limits.
5: For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
9: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
10: Hum. Office shout out.
0: ऑफिस शाउट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करते हैं, आप अभी एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। अगर आपने घर पे बनाया तो वो मुझे बताइए क्या खा रहे हैं। अगर आपने बाहर से ऑर्डर किया तो कहाँ से ऑर्डर किया है मुझे आप बता सकते हैं। और ये भी बताना कि आपका फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कुजीन जो है वो आपका क्या है, ये भी आप मुझे बताएं। बट यस, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा आज। हम शो में बताएंगे, इस साल में ऑफकोर्स आपको खबर भी देंगे चटनी शॉर्ट्स में, एंड इसके साथ साथ कुछ एक कॉम्पिटिशन भी मैं रन करूंगा और एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आज के दिन हुई थी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देयर यू गो, देयर आर फ्यू मैसेजेस ओवर हियर। पहला मैसेज है कुणाल का, वो कहते हैं ऑफिस टुडे होममेड चिकन फ्राइड राइस पैक्ड बाय माय सिस्टर। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने वैसे कह ये नहीं बताया कि उनका फेवरेट कुजीन क्या है, बट फ्राइड राइस है तो लुक्स लाइक मे बी चाइनीज फूड इनका फेवरेट हो। बट एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। रीना कहती है वर्किंग फ्रॉम होम ऑर्डर्ड बटर चिकन एंड गार्लिक नान फॉर लंच, माय फेवरेट कुजीन इज नॉर्थ इंडियन। वाओ नाइस। रीना जी, वेयर यू फ्रॉम, आप मुझे बताइए आप कहाँ से हैं। आई अज्यूम अगर आप भी नॉर्थ इंडिया से हो तो बताना वहाँ की फेवरेट डिश क्या है। लाइक यू नो, अगर मैं नॉर्थ इंडिया जा रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं दिल्ली गया हूँ बट मैं पंजाब नहीं गया हूँ, कश्मीर नहीं गया हूँ, हिमाचल तरफ नहीं गया हूँ, तो चंडीगढ़ भी नहीं गया, तो यस प्लीज़ डू लेट मी नो कि वहाँ अगर जाता हूँ और अगर आप इन सिटीज़ में से हो तो बताइए मुझे कि वहाँ की फेवरेट खाना क्या है जो मुझे वहाँ जा रहा हूँ तो ट्राई करना ही चाहिए। आखिरी मैसेज है आरुष का, वो कहते हैं लंच ब्रेक राइट नाउ, मम पैक्ड सुशी रोल्स टुडे। दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस। आप बस बने रहिए, अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की, कि आज क्या हुआ है न्यूजीलैंड। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसमें कि क्या हुआ था। बट यस, कल आपको जैसे मैंने बताया था कि कैली कार्ल्टन, जिसके नाम से एक्वेरियम है, उन्होंने 1970s में समुद्र में एक जगह डाइव लगाई थी जहां पे उन्हें करीबन 19th century में डूबे हुए जहाज से काफी गहने मिले, जो तब की वैल्यू थी 3,000 यूरो, जो आज के टाइम में यू जस्ट कैलकुलेट कितना होगा, गोना बी मिलियनेयर।
9: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक। चलिए हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में 1970s के ऑयल शॉक यानी पेट्रोल की भारी कमी से निपटने के लिए 30 जुलाई यानी कि आज के दिन 1979 को केयरलेस डेज स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत परिवार जो प्राइवेट कार ओनर्स होते हैं उनको हफ्ते में एक दिन चुनना होता है जब वो अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, और इसके लिए उनकी कार पर एक स्पेसिफिक स्टिकर लगाया जाता था। रूल तोड़ने पर जुर्माना भी होता था। हालांकि ये प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया था क्योंकि लोग फर्जी यानी कि फेक छूट एग्जेम्पशन वाले एक्स स्टिकर्स का इस्तेमाल करने लगे, और अमीर लोग जिनके पास दो कार्स थे उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग दिन चुन लिया, जिससे उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसे पेट्रोल की बचत में कोई खास फायदा ना होने के कारण आखिरकार मई 1980 में इस सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर दिया।

0: ग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें सुन तो सकते ही हैं 24/7, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में हो, ऑकलैंड में या ऑकलैंड से बाहर, या फिर न्यूजीलैंड से ही बाहर हो तो भी आप हमें सुन सकते हैं, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली जो है इंडिया में बैठे बैठे मुझे सुनती है, वो भी लाइव। वैसे यस, और भी चीजें हैं, जैसे कि कुछ प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई है जिसे आप सुन सकते हैं कम्प्लीटली फ्री। हम रिवाइंड यानी कि नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है रोवा का, बॉलीवुड गोल्डन एरा 60s और 70s के हिट गाने यहाँ पे हमने रखे हुए हैं जिसे आप सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी। 80 दशक के जूक बॉक्स भी आप सुन सकते हैं, 80 दशक के जो गाने हैं उसे आप डेफिनेटली सुन सकते हैं, और ये नंबर टू रोवा का नंबर टू म्यूजिक स्टेशन भी है। फीजी भजन्स और फीजी कीर्तन भी सुन सकते हैं जो कि दुनिया का पहला 24/7 चलने वाले प्लेटफॉर्म पे है। उसके बाद चढ़ती कला, पंजाबी हिट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे जिसे आप सुन सकते हैं, और फिर राहत फतेह अली खान जी, वो अभी आके गए हैं, बहुत ही अमेजिंग शो था, काफ़ी अच्छी बढ़िया फीडबैक मिली है, और काफ़ी शो भी बहुत ही हाउसफुल गया था, लाइक इतनी पब्लिक आई थी। एंड यस, आप उनके भी कवालीज और सूफी गाने जो है वो सुन सकते हैं हमारी ऐप के जरिए। बट यस, कुछ पॉडकास्ट भी हमने रिकॉर्ड किए, उनमें से सबसे पहले है शनील लाल, वो आए थे यहाँ पे विथ रुजबे एंड सैंडी, उनके साथ उन्होंने काफ़ी अंदर की बातें बताई है रिगार्डिंग LGBTQ+, उसके जो राइट्स हैं, रेसिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी की है। काफ़ी ऐसी चीज़ें आई, ओपनर वाली बातें भी हुई हैं जहाँ पे सचमुच काफ़ी लोग अनजान में भी इतना कुछ कह देते हैं, अनजान में ही इतना कुछ कर जाते हैं, तो उन पे क्या बीतती होगी। ये सारे पॉडकास्ट के अंदर ही आप ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। उसके बाद सफायर 2.0 मेरा गाना जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, 10 तारीख को रिलीज हुआ था, 10 जुलाई को, काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें का एफर्ट भी बहुत किया है हमने, काफ़ी पूरे नॉर्थ आइलैंड में हमने ट्रैवल किया है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे दिखाई है, तो डेफिनेटली आपको ये चेकआउट करना चाहिए। जाइए अभी यूट्यूब पे और सर्च करिए सफायर केतन और आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर सफायर 2.0 भी आप सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। लंच
1: बॉक्स विद केतन, इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं,
2: इसके पीछे हम। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: girl right there.
1: Streaming on Rover.
2: Branchy Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
3: Hey, hello, bhai, hello, hello.
2: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજ ઘડવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ઘડવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से परेशान है तो इसका जवाब है टाकानिनी ऑटो ग्रुप के ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट. ब्रांड न्यू ईवी सिर्फ 29,990 से शुरू, 7 साल की वारंटी के साथ. एसयूवी हाइब्रिड्स, फोर व्हील ड्राइव्स, परफॉर्मेंस ईवीज और यूज्ड व्हीकल्स की जबरदस्त रेंज भी अवेलेबल है. विजिट टाकानिनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकानिनी. ट्रेड-इन्स और फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल. फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. टाकानिनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साल्ट रोड, टाकानिनी.
5: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
6: Bunnings has lowest prices nailed.
7: Keep warm with Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
1: Lunchbox with Ketan.
8: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
9: चटनी शॉट्स.
10: चलिए लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं अभी की बैक टू बैक. सबसे पहले पॉलिटिक्स से खबर है. न्यूजीलैंड के पब्लिक सर्विस कमिश्नर सर ब्रायन रॉचे ने गवर्नमेंट को टारगेट करने वाले कैंपेन पोस्ट कार्ड्स को गवर्नमेंट ऑफिसेज से हटाने का ऑर्डर दिया है. उनका कहना है कि पब्लिक सर्विस को हमेशा पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए. ऑकलैंड से एक चौंकाने वाली खबर. एक फैमिली जब ओवरसीज हॉलीडे पर थी तब उनके घर में चोर घुस गए और पूरा घर रैंसेक करके कीमती सामान ले गए. पुलिस अब सीसीटीवी और दूसरे एविडेंस के जरिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है. गवर्नमेंट ने फिलहाल बैकयार्ड फायरवर्क्स पर बैन लगाने का जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया है और इस फैसले से SPCA और कई एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स जो हैं वो नाराज हो चुके हैं. उनका कहना है कि फायरवर्क्स से हर साल जानवरों को काफी तकलीफ होती है. इंटरनेशनल अपडेट में जापान में आए पावरफुल 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. हजारों घरों की बिजली गुल हो चुकी है और रेस्क्यू टीम्स अब भी सर्वाइवर्स की तलाश में लगी हुई है. वहां मौजूद एक कीवी ने भी एक्सपीरियंस किया, बहुत ही एक्सपीरियंस अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताया था, बहुत ही ज्यादा स्कैरी था उनके लिए. मिडल ईस्ट से भी बड़ी खबर रही. अमेरिका ने कहा है कि ईरानियन अटैक को इंटरसेप्ट करने के बाद सऊदी बैक फोर्सेस को साथ मिलकर इराक में आयरन बैक्ड मिलिटिया टारगेट्स पर स्ट्राइक की गई है और इस रीजन में टेंशन अब भी बनी हुई है. और आखिर में ट्रैवल अपडेट्स. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर ट्रैवल के दौरान लो ह्यूमिडिटी, केबिन प्रेशर और लंबी देर तक बैठने की वजह से बॉडी पर असर पड़ता है. इसलिए फ्लाइट के दौरान पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ी वॉक कीजिए और स्ट्रेच करना ना भूले, बिकॉज आपका जब ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम फ्लोटिंग लेवल पे होता है, विच माइट गोना अफेक्ट योर बॉडी, विच इज सो ट्रू यार. काफी इंटरेस्टिंग है. इस पर तो मुझे लगता है कि एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए.
9: To you by NZPMI. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
11: Make some noise!

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल जान लेते हैं। आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। आज 10% चांस है बारिश के, लेकिन सनसेट होगा 5:35 PM पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स शो। अगर आप मुझे 12 बजे सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वैसे आप बने रहिए, थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर ट्रैवल करते हैं बाय एयर, उसके साइड इफेक्ट भी है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक हल्की सी ग्लिम्स बताई थी इन द चटनी शॉट्स, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या वजह से आपकी बॉडी को दिक्कत हो सकती है और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आप बस कहीं मत जाइए, 3 बजे तक मैं आऊँ इस आर में, आपको वो बताने वाला हूँ। बॉलीवुड के साथ साथ लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी यहाँ पे। सो यस, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू माय शो, लंच बॉक्स शो।
0: बचाओ क्या,

0: क्या प्लेन से ट्रैवल करते हैं? ये कैसा सवाल हो, डेफिनेटली करते होंगे। यहाँ पे आए कैसे, यहाँ पे नाव पे आना तो भाई कितने दिनों का काम हो जाता है। बट यस, क्या आप बहुत ज्यादा फ्लाइट पे सफर करते हैं? तो सोचने वाली बात है। वेल यस, ये जो आर्टिकल है मैं लेके आया हूँ उसके बारे में ये बताया गया कि एयर से ट्रैवल करना हमारी बॉडी पर काफी असर डाल सकता है और कभी कभी हेल्थ इमरजेंसी के कारण भी बनता है। क्यों, अभी देखते हैं। प्लेन के अंदर कैबिन प्रेशर बढ़ने से हवा में ऑक्सीजन लेवल जो है 21% से गिरकर 15% हो जाती है, जिससे हार्ट और लंग्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हार्ट या सांस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कैबिन में हवा सूखी यानी कि लो ह्यूमिडिटी होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होना तय है और इससे खून जो है काफी गाढ़ा हो जाता है और ब्लड क्लॉट्स जैसे DVT बनने का रिस्क बढ़ जाता है। ऊंचाई पर इसकी गैस नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा एक्सपैंड होती है, जिससे ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यू होते हैं और डिहाइड्रेशन या अल्कोहल के चलते चक्कर आने की संभावना भी बढ़ जाती है। वैसे इन सब परेशानियों से बचने के लिए एक्सपर्ट्स फ्लाइट के दौरान खूब पानी पियो। पानी मतलब लिटरली पानी, पानी के नाम पे कुछ और नहीं, वो तो पियो चलो कोई बात नहीं, ठीक है आपकी अपनी चॉइस है, बट पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। अल्कोहल कम लेने और थोड़ी थोड़ी देर में सीट से उठकर चलने फिरने की सलाह भी उन्होंने दी है। यानी कि आई नो आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो आपको नहीं पसंद है कि उठ के बार बार वॉशरूम में जाया जाए, तो जहां आपको मौका मिलता थोड़ा इधर उधर घूम लिए, पानी बहुत पियो। और मैं तो ये कोशिश करूंगा कि जब आपके पास ऑप्शन होता है टू बुक द टिकट, तो मैं तो बेस्ट कहता हूं कि आप ना कोने वाली सीट बुक करो ताकि आपको उठने बैठने में दिक्कत ना हो, यानी कि दूसरों को परेशानी ना हो, ये बेस्ट है। या फिर अगर आप फैमिली के साथ है तो बात अलग है, पूरा ऑक्यूपाई आप कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो आउट एंड इन, बट वॉकिंग इज मस्ट एंड ड्रिंकिंग इज मस्ट व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑन एयर। लंच बॉक्स
1: विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Coffee on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra, and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: Ready for a career you could build on? EarnLearn can help. Whether you're starting out, changing careers, or ready to trade screen time for tool time, an EarnLearn apprenticeship could be your next step. Earn while you train in electrical, plumbing, gas fitting, or drain laying. Build real skills on the job and get personalised support along the way. Get your career on the tools with EarnLearn. Visit earnlearn.ac.nz or call 0800 EARNIT today.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
4: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800 77 HIRA नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
6: Lunchbox with Ketan.
7: मुझे पसंद है लड़का.
6: हम. Lunchtime Rant Line.
8: Lunchtime Rant Line के सेगमेंट में आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM के जरिए, 87.7 FM के जरिए भी आप मुझे सुन रहे होंगे अगर आप सिटी से हैं तो. पर ये सभी के लिए जो मैसेजेस आए हैं उन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं. लंच टाइम रेंट लाइन यानी कि कुछ ऐसी बातें जो सच कुछ आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है इन आखिरी के अभी लेटेस्ट दिनों में. Sonia कहती है, Hi Ketan, I'm from Papa Tortoise. Today's rant is about people who park across two parking spaces when one is enough. ये irritation मुझे भी होती है काफी लोगों से. When two people can park, why you want to own it? इससे ना वो याद भी आता डायलॉग. काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग एड लगा था मुझे जो अक्षय कुमार ने बनाया था, जहाँ पे अक्षय कुमार दूर से रोकने का करते हैं, फाइनली एक ड्राइवर को रोकते हैं. ड्राइवर बोलता है कि भाई सॉरी मैंने आपको देखा नहीं. फिर अक्षय कुमार बोलते हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में होते हैं, वो कहते हैं लेकिन मैंने आपको देखा और मैंने आपको पहचान भी लिया. तो बोले अच्छा, तो बोले हाँ आप तो यही हो ना. उन्होंने कोई एक जैसे मान लो तिलक का नाम लिया या फिर कोई गांधी परिवार का नाम लिया उन्होंने. तो वो बोलता है कि ये तो है. तो वो बोलता है कि अक्षय कुमार बोलता है कि हाँ वो मर चुके हैं, ऐसा है, ये सब है, बहुत याद करते हैं. बोलते हैं कि अच्छा. तो बोले कि नहीं मेरे पापा तो जिंदा हैं, आप किसके? गांधी. तो फिर वो बोलता है, अक्षय कुमार बोलता है कि महात्मा गांधी आपके बाप नहीं है? तो वहाँ पर इतना स्विच होता है, उसकी शक्ल देखने लगती है. दैट मीन्स इन शॉर्ट अक्षय कुमार ये बोल रहे हैं कि भाई रोड तेरे बाप की है क्या? मैं मतलब लिटरली वैसा बोल रहा हूँ, बट ऐड ही ऐसा ही है. बट यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक एक्चुअली. इस पर ना काफ़ी लोगों का रेंट होगा इसमें, और काफ़ी लोग एग्री भी करेंगे कि यार भाई जब तुम, और स्पेशली जब छोटी कार होती ना तो और डिफिकल्टी होती है. दैट वो लिटरली जहाँ पे छोटी कार भी अगर आ जाए तो तीन कार पार्क हो सकती है, जहाँ पे लेंस डिविजन नहीं होती वहाँ पे भी भाई साहब दो की जगह ले लेते हैं. बट यस, थैंक यू सो मच सोनिया आपके इस मैसेज के लिए. इमरान कहते हैं मनुका हुसैन, व्हाई डू पीपल लीव द ऑफिस प्रिंटर आउट ऑफ पेपर एंड वॉक अवे विदाउट फिलिंग इट? ये मुझे काफी टाइम हो गया, तो आई कैन नॉट, मतलब मैंने जहाँ लास्ट काम किया था जहाँ पे प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती थी तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी. बट गुड पॉइंट यार इमरान, अगर यहाँ पे कोई है और जो सेम चीज़ पे एग्री करता है तो आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं. पूजा कहती हैं, नॉट हमारी विजय पूजा वाली ब्रेकफास्ट शो वाली पूजा, बट फ्लैट बुश से इन्होंने मैसेज किया. वो कहती हैं, कैन वी रेंट अबाउट पीपल हु कीप टॉकिंग ड्यूरिंग मूवीज एट द सिनेमा. ये पहले भी आया मैसेज, बट क्या करें अब, ये अब मना नहीं कर सकते. आई मीन मना तो ऑब्वियसली कर सकते हो डेफिनेटली, बट ये चीज़ रुकती नहीं है. अगर एक को करेंगे फिर दूसरे भी करते रहते हैं. बट हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, यू नो, जहाँ पे आता ना साइलेंस योर फोन प्लीज, तो वहाँ पे होना साइलेंस योर माउथ प्लीज एज वेल. ये भी लिखा हुआ चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में. बोला केतन, नरेश फ्रॉम मैंगरे, फीजी, इंडियन फैमिलीज कैन नेवर स्टार्ट ईटिंग अंटिल एवरीवन हैज टेकन फोटोज ऑफ द फूड. ओ दैट्स इंटरेस्टिंग, ये सही है, बट मैंने कभी सुना नहीं यार. या मतलब देखो, विजय पूजा फीजी से है, देन वी हैव अभी एज वेल, जिकास एज वेल, क्रिश एज वेल फ्रॉम फीजी, उनकी तरफ से तो कभी मैंने देखा नहीं वो फोटो ले रहे हैं. कुड बी कि आपकी शायद सराउंडिंग्स होगी, शायद वो ऐसा करती होगी. बट हाँ, जल्दी से खा लो यार, मतलब क्या फोटो वोटो तो बाद में लेते रहेंगे यार, और है ना.
0: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: अभी की लेटेस्ट खबर पता है क्या है? न्यूजीलैंड के मशहूर आर्टिस्ट बिल हैमंड की 1999 की बनी पेंटिंग ज़ूमोर्फिक लॉन्च 3 एक ऑक्शन में करीबन 1.35 मिलियन डॉलर में बिकी है, जिसकी टोटल प्राइस ऑक्शन फीस के साथ 1.65 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये हैमंड की अब तक की दूसरी सबसे महंगी बिकने वाली आर्टवर्क बन चुकी है और न्यूजीलैंड की टॉप सेकेंडरी आर्ट सेल्स में शामिल हो चुकी है। और इस पेंटिंग को वेब्स ऑक्शन हाउस ने एक प्राइवेट कलेक्टर के खिलाफ प्राइवेट कलेक्टर के बिहाफ पर बेचा था ताकि नए आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जा सके। खरीदने वाले की डिटेल सीक्रेट रखी गई है, पर यह कंफर्म किया है कि पेंटिंग न्यूजीलैंड में ही रहेगी और इस सेल का 5% रॉयल्टी पर आर्टिस्ट को के एस्टिमेट को मिलेगा। That's so cool यार, मतलब 1.65 का 5% कितना होता है बताना मुझे।

0: गरबा नाइट होने जा रही है ऑन 1st of August, यानी कि परसों गरबा नाइट विद राज गढ़वी नहीं, सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड इस सैटरडे को 1st August, यानी कि ऑकलैंड, द काउंटडाउन इज ऑन। आप जल्दी से जाइए, टिकट ले लीजिए events.tickets.co.nz पे। सैटरडे 1st of August को होने वाला ये महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में, काफी कम सीट्स बची हुई है तो जल्दी से जाइए, बहुत तेजी से फिल आउट हो रही है, जल्दी से बुक कर लीजिए। अगर कुछ सवाल जवाब करना है तो आप स्वप्निल शाह को कॉल कर सकते हैं 0224394736। और ये इवेंट लेके आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आप सभी के लिए प्राउडली प्रेजेंट करते हैं गरबा सेलिब्रेटिंग फीचरिंग द सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, कभी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Clothing.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: South America is on sale now at Flight Centre. Fly return to Buenos Aires from $1,979 with LATAM Airlines. Departing Auckland, book in store or online. These T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: Mike here from Novus Glass. When this happens...
4: Novus.
3: Just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
5: Show us your crack.
6: Nervous.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
7: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 0800-4NZPMI.
9: Here for easy dinners, game watching snacks, and last minute ingredients. When you need it now, get it delivered to your door. Just download and order on the Foursquare Now app. Foursquare, what'll it be today? Select stores only.
10: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
11: क्यों? क्या हुआ?
10: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
12: गुरु कैंडोला of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
13: Grab a new generation Samsung foldable phone from Spark with a huge deal. Upgrade now and save at least $1,200 on the all-new Samsung Galaxy Z Fold 8 or Galaxy Z Fold 8 Ultra over 24 or 36 months interest-free on eligible Spark plans with any trade-in. Plus, you'll save the trade-in amount of your phone on top. Get amazing savings on the all-new Samsung foldable phones at Spark. Minimum $99 deposit, trade-in and store only. T's and C's apply.
14: Danny didn't think he needed a DVS system.
15: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
14: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
15: Nah, only one room. It was just too noisy.
14: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
16: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
17: इसके पीछे
1: लंच के मंच पे
18: वेल बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट ने असम में आई भीषण बाढ़ यानी कि फ्लड के बारे में काफी चिंता दिखाई है और अपने फैंस से मदद की अपील भी की है। आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है और लिखा है कि ये फ्लड हर साल आता है और फिर भी हमें अनएक्सपेक्टेड लगता है। उन्होंने इस संकट यानी कि क्राइसिस की गंभीरता को हाईलाइट करते हुए ये कहा है कि बाढ़ की वजह से बहुत लोगों की जान जा चुकी है और कई परिवार ने अपने घर, जमीन और काफी एनिमल्स को, पालतू एनिमल्स को भी खोया है। आलिया ने असम को तुरंत राहत, इमीडिएट रिलीफ और लंबे समय तक चलने वाली मदद, लॉन्ग टर्म रिकवरी दोनों की जरूरत पर जोर किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी देने के लिए करेंगी जो ग्राउंड लेवल पर काफी रिलीफ का काम करवाते हैं और लोगों से अपील भी की है कि मदद के लिए आगे आएं और डोनेट करें। आलिया का ये कदम उनके कई सेलेब्स के एफर्ट्स का हिस्सा है जो असम फ्लड्स के की तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल।
1: दिल

नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं फिर से आज के इस लंच बॉक्स शो में। आप सुन रहे हैं हम पे मुझे मेरी आवाज 104.2 एफएम के जरिए या फिर 87.7 एफएम के जरिए। अगर आप सिटी में है तो सिटी के आसपास आपको ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो आप ट्यून इन कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया फ्रीक्वेंसी मिल रही है यार। अगर आप सुन रहे हैं उससे 87.7 तो प्लीज शाउट आउट कर दो यार, थोड़ा मैसेज कर दो 5599 पे। बढ़िया साहब, बने रहिए, थोड़ी देर में मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्पिटिशन लेके आना हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला भी था कि आप रेडी रहिए, इस थोड़ी देर में आपके लिए एक कॉम्पिटिशन आने वाला है जो थोड़ी देर में आपको मौका देगा जीतने का। वो बहुत ही बढ़िया मौका टू अटेंड जो बस कुछ ही थोड़े दिनों में होने वाला है। ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत थोड़ा हो गया, तो आपको भी थोड़ी देर ही रुकना है। मैं थोड़ी सी देर जाके कॉफी थोड़ी सी लेके और आपके साथ आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। टू मच थोड़ा थोड़ा बचाओ क्या

0: चलिए थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था अब थोड़ा सब्र नहीं करवाता हूँ और यहाँ पे सवाल लेके आ चुका हूँ, वो थोड़ा सा छोटा सा लेकिन आपको मौका देगा बहुत ही बड़ा, यानी कि एक डबल पास जीतने का मौका आपको मिलने वाला है। और उस ड्रॉ में शामिल होने के लिए आप सभी के पास जो सवाल है वो ये है, मैं पूछूंगा लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला आ रहे हैं अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके स्पार्क एरिना में 25 अगस्त को अपने गेस्ट अपीयरेंस लेके इक्की को, जी हाँ, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला शो, अमेजिंग धमाल, एक डबल पास, एक डबल एंटरटेनमेंट, सुपरस्टार एंड एपिक शो, कितना कुछ मिलने वाला है। टिकट आप ले लीजिए hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz पे जाके भी आप टिकट ले सकते हैं। स्पार्क एरिना में होने वाला है 25 अगस्त को। माय सवाल इज, करण औजला अभी हाल फिलहाल कहां रहते हैं? करण औजला वर्ल्ड में अभी हाल फिलहाल कहां रहते हैं, लाइक उनका घर का रेसिडेंस कहां है? लास्ट टाइम शायद कनाडा ही था, बट अभी मेरे को तो पता है बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। KA लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए जल्दी से जवाब के साथ। अगर आप जवाब नहीं लिखेंगे या फिर KA नहीं लिखेंगे तो यू माइट बी मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इस कॉम्पिटिशन के लिए। तो मेक श्योर सबसे पहले करण औजला का इनिशियल KA लिखना मत भूलिएगा और फिर जवाब और 5599 पे आप भेज दीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे। हाँ।

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। अभी की लेटेस्ट खबर काफी इंटरेस्टिंग और काफी शॉकिंग भी है। न्यूजीलैंड के माउंट एस्पायरिंग में एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया जब एक क्लाइंबर 200 मीटर नीचे बर्फ की खाई में गिर गए थे। उसके साथ उनके साथी को तो लगा कि शायद वो मर चुके हैं, लेकिन इसलिए वो मदद के लिए भी 3 घंटे क्लाइंबिंग करके पहाड़ की चोटी तक गए। जब पुलिस और एल्पाइन क्लिफ रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक बॉडी रिकवर करने जा रहे हैं, लेकिन छोटी सी 600 मीटर नीचे जांच करने पर गिरा हुआ क्लाइंबर जिंदा और अपने पैरों पर खड़ा मिला। आखिरकार लगभग 7 घंटे की मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात 1 बजे दोनों क्लाइंबर को पहाड़ से सुरक्षित निकाल लिया गया। क्या बात है यार, वेरी फैसिनेटिंग। मतलब हार्ड टू बिलीव, बट दिस इज व्हाट द मिरेकल इज ऑल अबाउट। बट आई फील मिरेकल इनविजिबल चीजों से ज्यादा आपके दिमाग पे भी होता है कि आपका दिमाग जो है कितना स्ट्रांग है। इफ यू फील लाइक नहीं आप मेरा कुछ नहीं हो सकता तो वो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, लेकिन इफ यू फील लाइक कि होगा अच्छा ही होगा, आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करने को मिलेगा लेकिन आप एंड में सक्सेस ही होगे।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, गौर फरमाते हैं। चलिए अभी तो सेकेंड लास्ट दिन है आज इस महीने का, बाकी काफी कुछ शुरू होने वाला है। फैंसी वर्ल्ड चैंपियनशिप आज आखिरी दिन है, हांगकांग में हो रही है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है ये। और कल ही मैंने देखा है न्यूज़, इंडिया एक रिले रेस में जीती है गोल्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात है। उसमें अगर गोल्ड टैली की अगर बात करें तो लेट मी जस्ट क्विकली रीड इट आउट। सबसे ऊपर अभी ऑस्ट्रेलिया है, अपना पड़ोसी देश, जो कि है अभी तक के हिसाब से 35 गोल्ड जीत चुकी है, 18 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 80 मेडल के साथ वो टॉप पे है। कैनेडा सेकंड पे है 13 गोल्ड के साथ, इंग्लैंड है 10 पे, वहीं इंडिया है 9वें नंबर पे और 8वें नंबर पर है न्यूजीलैंड 3 गोल्ड के साथ। वाओ, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। आप बस ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें सुनते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कौन सा क्या अपडेट आ रहा है। बट यस, उसके अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन गेम्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स हो रही है, आप उसे देख सकते हैं, 8 अगस्त तक ये चलने वाला है। और उसके बाद मुबाडाला सिटी डीसी ओपन टेनिस ये चल रहा है, उसे आप देख सकते हैं। अफ्रीकन वुमेन कप ऑफ नेशंस फुटबॉल वुमेन ये भी चल रहा है, इसे भी आप देख सकते हैं। साथ में AIG वुमेन्स ओपन ये हो रहा है यूके में, इसे आप देख सकते हैं। और आज से रैली फिनलैंड मोटर स्पोर्ट्स ये शुरू होने वाला है, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं।

0: पर एक सवाल हमारे जहन में हमेशा आता, हम फ्रूट्स यूज करते हैं और यूज करने से पहले या तो आप बाहर रखते हो ड्राई एरिया में या फिर आप फ्रिज में रखते हो, तो कौन से खाने चाहिए कौन से नहीं खाने चाहिए, इस पे काफी बहस होती है। अपने घर पे आप देखते होगे कि जिसका हल्की सी भी शक्ल अगर बिगड़ी है उसे आपके पेरेंट्स या फिर ऑफकोर्स जो भी बंदा होता है नोन, वो बोलता है कि भाई इसको मत खाया, बट आप बोलते हो कि नहीं यार चलेगा यार, चलता है, इतना तो चलता है, इसमें कोई नहीं होता है। बट यस, हियर्स द आर्टिकल जो कहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेफ तरीके से स्टोर करना और खाने के बारे में ये है। ज़्यादा पके हुए यानी कि ओवररैप्ड फ्रूट्स और वेजीज में बैक्टीरिया या माउल्ड हो सकता है जो फूड पॉइजनिंग का काम करता है। एप्पल, केला या गाजर अगर थोड़े मुशी या दाग वाले हों तो उन्हें खाया जा सकता है, पर अगर उनमें थोड़ा सा भी मॉल्ड या फंगस दिखे तो उन्हें फेंक देना चाहिए। उसे कभी भी उतना सा पार्ट कट करके नहीं खाना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, ऊपर से तो आपने कट कर दिया बट रूट्स जो है अंदर के वो हो सकता है फैल चुकी हो। पोटैटोज अगर ग्रीन नहीं है या फिर ग्रीन हो जाए तो उनमें स्प्रॉट्स निकल जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें नेचुरल टॉक्सिन बन जाते हैं जो पकाने के बाद भी ख़त्म नहीं होते हैं। इसके अलावा केला और एप्पल एथिलीन गैस छोड़ते हैं और इसीलिए उनके बाकी प्रोड्यूस से दूर रखना चाहिए, वरना दूसरे फ्रूट्स और सब्जियां भी जल्दी ख़राब हो जाती है। वैसे ये आर्टिकल में मेरे को एक चीज़ काफ़ी मतलब शॉकिंग लगी जो है आलू के बारे में, जो स्प्रॉट्स निकल जाते हैं उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आई मीन वो वैसे तो हम खाते नहीं है बट उसे यूज भी नहीं करना चाहिए ऐसा इसमें लिखा गया है। बट कितने लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, बिकॉज आलू जो होता है उसमें ऑब्वियसली काफी टाइम बाद हम यूज नहीं करते तो पड़े पड़े उसमें से अलग से स्प्राउट्स या फिर बोले तो एंकर निकलना शुरू हो जाते हैं, वो अपन कट कर देते हैं ये सोच के चलो कट कर दिया अब तो आलू नॉर्मल है, बट इस आर्टिकल के हिसाब से वो खाना ही नहीं चाहिए, वो आलू ही वेस्ट हो चुका है बिकॉज रूट्स में घुस चुकी है उसका जो टॉक्सिन जो क्रिएट हो जाता है वो। क्या लगता है आपको, लाइक आप उनमें से हैं जो यूज करते हैं या उनमें से हैं जिन्हें पहले से ही पता था और वो यूज नहीं करते हैं? 5599 इज द नंबर। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम
1: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहां पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो,
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
6: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance centre sale event today till Sunday.
7: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pools, swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
6: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance centre, 9 Sylvia Park Road.
8: And if you're just joining us after the break, we're talking about
9: holy $10 deals on Uber Eats.
10: Find $10 ding dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
11: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
12: Non-stop Bollywood.
13: Hum.
12: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
14: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
12: Iske piche.
13: Hum.
12: Tech Talk.
0: ये काफी इंटरेस्टिंग बात लेके आया हूँ मैं टेक टॉक के सेगमेंट में। ये जो टॉपिक है वो है अबाउट न्यूजीलैंड किंग सैल्मन को 9 साल के लंबे इंतजार और कानूनी कार्रवाई के बाद कंट्री का पहला ओपन ओशन सैल्मन फार्म बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये ब्लू एंडेवर नाम का फार्म मार्लबोरो साउंड्स में कुक स्ट्रेट के बीचों बीच कैप लैम्बर्ट से लगभग 7 किलोमीटर दूर बनाया गया। अब तक सैल्मन फार्मिंग किनारे पर होती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, पानी गर्म होने से किनारे पर मछली जो है वो काफ़ी कम आनी शुरू हो गई, काफ़ी हद तक तो वो ख़त्म ही हो चुकी है वहाँ पे। वही कुक स्ट्रेट का जो पानी है वो ज़्यादा गहरा और ठंडा है, जो सैल्मन के लिए बेहतर होता है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें पहले 18 महीने तक पानी के अक्सर उसका जो एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है, उसे चेक किया जाता था और उसी पे रिपोर्ट भी बनती थी कि इज इट ओके टू हैव द प्रोजेक्ट ओवर देयर और नॉट। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। वैसे जून 2025 से ट्रायल्स पेंस के साथ छोटा पायलट फार्म बनाया जाएगा और जब ये फार्म पूरी तरह से काम करने लगेगा तो इससे हर साल 10,000 से ज्यादा मैट्रिक टन सैल्मन तैयार होगी। वाओ, दैट्स सो बिग नंबर यार, जो न्यूजीलैंड को लगभग $300 मिलियन ईयरली एक्सपोर्ट की कमाई करके दे सकती है। $300 मिलियन वाओ। जैसे ओशन एंड फिशरीज मिनिस्ट्री से भी उन्होंने भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम बताया है। इफ इट इज हेल्पिंग कंट्री टू ग्रो फॉरवर्ड देन या इट इज गुड। व्हाट डू यू थिंक? दिल से

थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग टाइम एंड आपने जितना मुझे मैसेज भेजे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज कॉल नहीं आया वैसे किसी का, बट वुड हैव बीन ग्रेट अगर किसी से बात होती टेलीफोनिक, बट कोई बात नहीं. आप बस बने रहिए, अभी कॉफी ब्रेक में सैंडी आपका स्वागत करेंगे और ड्राइव शो में रुस्बे. बट यस, तब तक के लिए मैं निकलता हूँ. आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी। अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे?
1: आपको नहीं लगाने। NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.go.nz या call 0800-4-NZPMI.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: 3:20 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। ऑकलैंड में एक लेडी को सेंटेंस किया गया है ओवर $190,000 वर्किंग फॉर फैमिलीज फ्रॉड के लिए। सो ऑकलैंड की लेडी है जिसे सेंटेंस किया है टू 8 month होम डिटेंशन। सो इन्होंने क्लेम किया था नियरली $190,000 इन वर्किंग फॉर फैमिलीज टैक्स क्रेडिट ओवर 7 year पीरियड। So she was also given 6 months of post-detention conditions as well. So hua kya, this lady, she pleaded guilty to a representative charge of tax fraud in Menaco District Court. So she told Inland Revenue ki she was a single parent in 2015, despite being married since 2011 and living with her husband, jinke saath inke 6 bachche hain. To inhone matlab bejayani ki jhoot bola ki wo single parent hai. So between 2018 and 2024, she claimed the higher single parent working for families payments. So repeatedly, isne declared kiya ki her partner had no income. And then IRD said ki she received annual entitlement notices, but kabhi bhi usne kisi bhi circumstance ko correct nahi kiya. You know, working families jo hai, ye aapki help to zarur karta hai, working for families, agar aap kisi cheez ke through ja rahe hain. लेकिन इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी। अगर आप वहाँ पे ऑनेस्ट नहीं होते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस अगर आपकी लाइफ में चेंज हो चुके हैं, वो आप अपडेट नहीं करते हैं, आज नहीं कल वो सामने केस आपका आ जाता है। अब देखो ना, इसको अभी सेंटेंस भी किया गया है। शी रिसीव जस्ट अंडर $190,000 वाइल शी वॉज नॉट इंटाइटल टू रिसीव इट। So she is now repaying the debt at $300 per week के हिसाब से। इसको वापस of course अब पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस ख़त्म करने पे जो लिया है वो भी गया, लेकिन $300 per week के हिसाब से अब इसको पे करना पड़ेगा। So इसका जो है काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई। So जज ने नोट किया कि जो इमिग्रेशन रिकॉर्ड है showed ki she and her family made around 20 overseas trips between 2015 and 2024, suggesting ki wo relatively comfortable the financial position mein bhi. So this was more about greed rather than necessity. Yehi problem hai na. Ab kya hota hai ki jab bhi koi restrictions aa jati hai system mein, to hum kehte hai ki itna restrict kyu kar diya hai, chahe wo immigration ko leke ho, chahe wo is way se ho. बट देन वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं कई बार उनको भी सफ़र करना पड़ता है। बट या दिस इज़ एवरीवेयर दो, बट आई एम ग्लैड कि ऐसी चीज़ें जो है ये एक्चुअली में सामने आ जाती है। सो या अगर आप किसी को जानते हैं कि हु इज़ प्लेइंग अराउंड विद सिस्टम इन सच काइंड ऑफ स्टफ, तो मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर बताओ। रियलिटी जो है वो कुछ और ही है, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। सो बेटर बी ऑनेस्ट देन डू द फ्रॉड। सो ये इमिग्रेशन के सिस्टम में भी मैंने नोटिस किया है कि जब काफ़ी लोग ऑनेस्ट हो जाते हैं, जैसे वीज़ा ख़त्म होने वाला है एंड काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस समय पर कि यार वीज़ा ख़त्म होने वाला है, जॉब नहीं मिल रही है, तो मे बी ओवरस्टे इज़ द वन ऑप्शन जो कर सकते हैं। बट देन अगर आप कॉल करते हैं, पूछते हैं, दे आर वेज अराउंड दिस, बहुत सारे वेज होते हैं। सो अगर आप राइट पर्सन के पास जाते हैं, राइट अथॉरिटीज़ के पास अगर आप जाते हैं ना गाइज, तो बहुत सारे वेज होते हैं इसको लेके भी। उस समय पर टेंशन इतनी ज़्यादा होती है तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके रिगार्डिंग एक्चुअली में हमने यहाँ पे बातें भी की थी, ड्राइव कैचअप में हमने बातें भी की थी विद वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है एंड इनको काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता थी। ये अगर आपको सुनना है तो आप रोवा पे सर्च कीजिए ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे एंड वहाँ पे ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा।
1: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम।
2: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

3:36 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड आपके सुपर सिटी में एक बहुत ही सुपर इवनिंग होने वाली है, भजन जैम्स। सो अगर आपको भजन्स बहुत पसंद है तो भजन जैमिंग ये लाइव शो होने वाला है जहाँ पे रवितेश देव और अपने इनक्रेडिबल लाइव बैंड के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन्स एंड कीर्तन ये आपके लिए लेके आने वाले हैं। नाउ दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि भजन्स एंड कीर्तन्स का फ्यूजन जो है ये वहाँ पे रहने वाला है। सो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक ट्रेडिशनल डिवोशन, सो जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी, टैलेंटेड वोकलिस्ट जो है ये होने वाले हैं और एक वाइब्रेंट लाइव कॉन्सर्ट की सेटिंग होने वाली है। सो आप भजन जो है एक प्रॉपर कॉन्सर्ट वे में इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड दिस इज़ क्यूरेटेड बाय NZ कल्चरल ट्रस्ट। जो स्पेशल इवेंट है ये हो रहा है इन द एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। 22nd August इज अ डेट, 7 PM वैदिक सेंटर में। सो वैदिक सेंटर जो कि पापाटोई में लोकेटेड है, इसकी टिकट सिर्फ $30 की है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनकी एंट्री एकदम फ्री रहेगी एंड ऑन द वेन्यू स्नैक्स कवा ये भी सोल किए जाएंगे। टिकट्स आप खरीद सकते हैं वेरियस जगह से, इवेंट ब्राइट पे जाके भी टिकट्स आप ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो टू जेस फ्रेश पापाटोई, वैली फ्रेश पापाटोई या शिव प्रसाद कैलस्टन, वहाँ से भी ये टिकट्स आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक मेमोरेबल इवनिंग में जा सकते हैं जहाँ पे लाइव म्यूजिक डिवोशन जो है ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो भजन जैम्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इवनिंग आपके लिए जो पूरी की पूरी फैमिली के साथ आप एक्चुअली में इंजॉय कर सकते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.1 डिग्रीज और आज को बनाए 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। वैसे मौसम ऑलमोस्ट फाइन है, कल हल्की सी बारिश होने के चांसेस रहेंगे। आज का सनसेट 5:35 पर।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: चार बज के दो मिनट हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आपके लिए ड्राइव शो शुरू हो चुका है यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी और अभी से लेके सात बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा. थोड़ी देर में रुजबे यहाँ पे पहुंच जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? यू नो व्हाट, आज ट्रेंड मेकर्स में, कल वैसे हमने संजय दत्त का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ट्रेंड मेकर्स में. 6 से 7 का जो हमारा सेगमेंट है उसे हम ट्रेंड मेकर्स कहते हैं, जहाँ पे किसी का बर्थडे होता है तो उसको हम ट्रिब्यूट या सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई थीम लेके आते हैं. एंड आज जिस हस्ती का बर्थडे है ये हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 6 से 7 के बीच में. और ये जो हस्ती है ना, मुझे लगता है कि इनके गानों की लिस्ट अगर मैं आपसे मांगूँ तो बहुत ही लंबी लिस्ट हमारे पास आने वाली है. एंड इट्स गोना बी अ स्ट्रगल टू डिसाइड कि कौन सा गाना रखें और कौन सा गाना ना रखें. गुड आफ्टरनून रुजबे, सांस ले रहा है. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
4: गुड आफ्टरनून सैंडी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
3: बढ़िया बढ़िया.
4: बताइए कौन सी हस्ती के बारे में बात कर रहे थे?
3: So, मुझे लगता है कि इनका ना गाने डिसाइड कराना कि आज 6 से 7 के बीच में क्या रखे गाने और क्या नहीं रखे, इट्स गोना बी अ बिग स्ट्रगल.
4: तो आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है?
3: या
4: अच्छा,
3: सिंगर है ये?
4: सिंगर है ये?
3: सिंगर है ये. और बहुत लोग इनको सुन के सिंगर बने हैं.
4: ओ, सोनू निगम को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अच्छा,
3: इट इज सोनू निगम्स बर्थडे टुडे. सो या, इट्स गोना बी स्ट्रगल, राइट?
4: 100% या, इट्स रियली गोना बी टफ.
3: 6 से 7 के बीच में तकरीबन हमारे 6-7 गाने प्ले होते हैं या मैक्सिमम 8 गाने प्ले होते हैं.
4: मुझे लग रहा है आज लोग नहीं चाहेंगे हम कुछ भी बात करें इनके बारे में, बस इनके गाने ही सुनना पसंद करेंगे.
3: हाँ, मतलब तुम बात नहीं करना चाहते.
4: आज 6 से 7
3: फीलिंग्स ऐसे नहीं बताते हैं रुजबे.
4: आज 6 से 7 बैक टू बैक सोनू निगम के गाने क्या आप सुनना पसंद करेंगे या आप चाहेंगे कि हम बात करें?
3: यू नो, या थोड़ी सी बात तो बनती है ना.
4: लेट्स कीप इट अप टू देम. आप बताइए हमें.
3: सो गाइस,
4: ओनली सॉन्ग्स और वुड यू आल्सो लाइक टू लिसन टू अस
3: एंड कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सोनू निगम एक्सक्लूसिव आवर में?
4: देखो, एक गाना तो वो बनता है, मेरे को लगता है.
3: कौन सा?
4: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या.
3: मुझे तो वो वाला सुनना है, दीवाना तेरा.
4: वो तो होगा ही,
3: वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि होगा
4: दीवाना तेरा.
3: आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा गाना है जो लिस्ट को मिस ही नहीं कर सकता है, कि यू आर लाइक कि यार सोनू निगम का बर्थडे सेलिब्रेट करे तो इस गाने के बिना नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा गाना है?
4: एक और गाना है ना, वो तीस मार खान का गाना जो है.
3: कौन सा?
4: तीस मार खान का टाइटल ट्रैक, उसमें सोनू निगम ने हर एक आवाज में सोनू निगम ने गाया है.
3: ओ वाओ,
4: उसने लाइव भी गाया था ये.
3: ये मुझे नहीं पता था वैसे.
4: तीस मार खान का जो गाना है ना.
3: हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई गाना कौन सा है. तीस
4: तो
3: मार
4: उसमें
3: खान
4: कुछ तो भी रिकॉर्ड भी क्रिएट किया एक्चुअली, क्योंकि मल्टीपल वॉइसेस में सोनू निगम ने लाइव भी गाया था.
3: क्या बात है,
4: जब शो किया था तभी.
3: नाइस. सो यहाँ सोनू निगम का ऐसा कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि इसके बिना वो जो आवर है 1 आवर वो अधूरा रहेगा? सो लिख के भेजिए इफ यू वॉन्ट टू लिसन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. एंड बाय द वे रुजबे, आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सिद्धांत चंद्रा. सिद्धांत चंद्रा, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आपको लॉट्स ऑफ लव एंड आशीर्वाद आया है फ्रॉम योर डैड शेल्विन, मॉम अमृता एंड एल्डर ब्रदर शरंत. एंड बेस्ट विशेज है फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल मेट्स फ्रॉम मिशन हाइट्स प्राइमरी स्कूल. वाओ, सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सिद्धांत, जिन्हें जूनियर रोनाल्डो भी बोला जाता है.
4: जूनियर रोनाल्डो. सिद्धांत, हैप्पी बर्थडे टू यू. और होप
3: सिद्धांत, कैसा लगा आपको ये वर्ल्ड कप देख के? जूनियर रोनाल्डो ना, सो मे बी अगले वर्ल्ड कप के लिए शायद इंस्पायर्ड हुए होंगे.
4: जी,
3: सो दैट वे आई एम आस्किंग. एनीवे, अ वेरी वेरी हैप्पी वंस अगेन 10th बर्थडे है सिद्धांत चंद्र का.
4: आपको पता है एक सरप्राइजिंग न्यूज़ अभी फुटबॉल की, अगर आपने बात की है, अंडर 12 का मैंने एक रील में देखा है, अभी पता नहीं कितना सही है बट आई थिंक इट शुड बी ट्रू. अंडर 12 का एक कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें टीम इंडिया थी अंडर 12, उन्होंने डिफीट किया ब्राजील को.
3: क्या बात कर रहे हो,
4: अंडर 12 में.
3: That's so cool.
4: That's a big, big thing. Yeah, I would
3: it's
4: say.
3: A big thing. मुझे लगता है कि resources and facilities इतनी ज़्यादा नहीं हैं.
4: Honestly, अगर वो ब्राज़ील की A team भी रही होगी, तो भी बहुत बड़ी बात है.
3: तो भी बहुत बड़ी बात है, because ब्राज़ील में तो बच्चा-बच्चा खेलता है.
4: Exactly. And so, for team India to go up there and defeat Brazil, I think
3: in any kind of form, कोई भी है.
4: Yeah, it's well done.
3: वहाँ पे गली क्रिकेट जैसे होती है, वहाँ पे गली फुटबॉल को beat करने ही very difficult है.
4: Yeah, so it's a great achievement for 100%. Team India.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: टाका नेनी ऑटो ग्रुप में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स और SUVs ब्रांड न्यू सिर्फ 29,990 से। लीप मोटर, डोंगफेंग और बाइक के लेटेस्ट हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स, ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। विजिट टाका नेनी सुपर साइट। पेट्रोल और डीजल के क्रेजी प्राइसेस को बोलिए गुड बाय और नई या क्वालिटी यूज्ड ईवी या हाइब्रिड घर ले जाइए। और हाँ, ये ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेड कर लेंगे बस आपकी मदर इन लॉ के अलावा। टाका नेनी ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाका नेनी। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया।
3: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
4: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
4: 100% authentic and pure as mother's love.
5: Branchy Group 3 Event New Zealand ane Aroha Autos sathe maline prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
6: Hey, hello, bhai, hello, hello.
5: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.

0: अरिजीत सिंह की आवाज और ये बहुत ही बढ़िया सा गाना आप सुन रहे थे Only on Humpling Bollywood's Biggest Hits, आवारा पंटू का गाना टाइटल ट्रैक।
1: या 14 अगस्त को वैसे ये मूवी रिलीज होने वाली है। Now there is a topic, Ruzbe. वैसे more than 10,000 Kiwi teens they left school in 2025 with no qualifications.
0: Okay. ये सब न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड है ना?
1: Yeah, न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे हैं।
0: Yeah.
1: So Ministry of Education ने figure out किया है कि इतने बच्चे about 16% of school leavers.
0: मुझे लग रहा है अभी न्यूजीलैंड को अभी ये जो सब politics अभी जो election campaigns चल रहे सब चल रहे आई थिंक अब एक नया कैंपेन एक नया जो उस पार्टी को वोट मिलना चाहिए जिसका कैंपेन ऐसा होगा कि पढ़ेगा न्यूजीलैंड तो बढ़ेगा न्यूजीलैंड।
1: Yeah.
0: यार पढ़ाई पे फोकस ही नहीं है यार।
1: स्कूल जाएगा न्यूजीलैंड तो बढ़ेगा न्यूजीलैंड। स्कूल ही नहीं जा रहे हैं ना बच्चे।
0: This is so sad यार like
1: इसके काफी रीजंस बताए गए हैं वैसे
0: अच्छा,
1: जो पॉसिबल रीजंस हैं उन्होंने बोला है इस आर्टिकल में बोला है कोविड डिस्ट्रप्शन हुआ मेनी टीचर्स सेड कि लॉकडाउन से लर्निंग अटेंडेंस एंड मोटिवेशन जो है ये काफी इफेक्ट हुई है यंग पीपल आर चूजिंग वर्क वेरी अर्ली
0: So ये तो पहले भी होता था
1: हाँ लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है जो टीन्स है उनके अंदर जो है काम करने का पैसा कमाने का घूमने का वो ज्यादा हो चुका है घूमना है तो पैसा कमाना है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिक्वायरमेंट्स काफी स्कूल जो है इन्होंने कंसर्न रेज किए हैं कि जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है ये बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स हु मे स्ट्रगल विद एग्जाम्स सो या ऐसे काफी चीजें हैं स्टूडेंट्स आर डिसएंगेजिंग फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन alternative education numbers जो है ये increase हो चुके हैं and this is one of the reason as well
0: I think एक चीज यहाँ पे आज का topic हम छेड़ना चाहेंगे इसके ऊपर और please feel free to give us a call 0800-004-866 इस number पे आप call कीजिए और share कीजिए आपके thoughts और views इसके ऊपर and this is around working early like starting to work early मेरे को इसके around सच्ची में बात करनी है क्योंकि मैं जब ही मतलब इंडिया में हम जब पहले बढ़े तो ऐसा नहीं था कल्चर पार्ट टाइम वर्क का या फिर यू नो समर जॉब्स का भी कल्चर वो टाइम पे इतना प्रोमिनेंट नहीं था
1: काफी समय तक नहीं था यार मैंने
0: अभी
1: तो
0: शायद है, पता
1: अभी नहीं। है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इतना प्रोमिनेंट नहीं है वहाँ पे एंड व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप इट वाज लाइक कि डिग्री होनी चाहिए ऐसा था
0: हाँ.
1: लेकिन अभी मेरे को लगता है कि वो चीज़ें चेंज हो रही है इट्स नॉट अबाउट डिग्री होनी चाहिए एनी मोर इट्स अबाउट कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस हो चुका है रदर देन अ डिग्री डिग्री
0: सो टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड ओनली मेरे को एक चीज
1: माइंडसेट चेंज हो रहा है
0: मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी वो ये था कि यहाँ पे तुम्हें पार्ट टाइम करने का मौका मिल पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिलता है उससे बहुत एक्सपोजर बढ़ता है उससे बहुत एक्सपीरियंस बढ़ता है और उससे तुम्हें अंडरस्टैंड होता है कि तुम्हें एक्चुअली में क्या करना है काफी बार वो एक आइडिया आ जाता है बट उसका दूसरा साइड ये हो जाता है कि क्योंकि पैसा इतने जल्दी बच्चों के पास आना शुरू हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जिंदगी मस्त है अब क्यों ही पढ़ना है
1: उनको कोई और चीज करने की मोटिवेशन नहीं मिल रही है
0: हाँ तो
1: पढ़ने की या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हासिल करने की जहाँ से वो कुछ और बड़ा कर सके
0: कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन
1: प्रोफेशनल जैसे मेडिकल हो गया या ऐसी चीजें हो गई सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इफ यू आर अ पेरेंट या फिर इफ यू आर अ स्टूडेंट कॉल अस
0: डू यू थिंक तो मेरे को ये सवाल पूछना है डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एज इन टीनेजर्स टू डू पार्ट टाइम वर्क या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उनको ये ऐसा पार्ट टाइम मतलब एटलीस्ट एनी पार्ट टाइम काम नहीं करना चाहिए अगर उनके फील्ड में या फिर उनके कोई जो उनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं विच ऑल्सो अमाउंट टू की वॉलंटरी वर्क डू यू थिंक पार्ट टाइम वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल स्टार्टिंग आउट बिफोर कंप्लीटिंग देयर क्वालिफिकेशन
1: तो कॉल कीजिए यहाँ पे 0800 हम पर आपका क्या टेक है बहुत सारी कंपनीज में रुजबे इंटर्न्स भी होते हैं
0: इंटर्नशिप होती है काफी जगहों पे यहाँ पे मीडिया बॉक्स में काफी इंटर्नशिप होती है
1: सो काफी जो है वहाँ से ही देन आके प्रोफेशनल कहीं ना कहीं और निकल भी जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है
0: काफी बार एक एक्सपीरियंस मिल जाता है ना एक कॉर्पोरेट में काम करने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है और उससे फिर तुम्हें आइडिया आ जाता है कि ओके इज दिस लाइफ फॉर मी और नॉट फॉर मी ऐसा आइडिया आता है या फिर इसमें आप किसी और टीम के साथ एंगेज करते हो तो आपको लगता है कि अरे यार ये बहुत कूल जॉब है मेरे को ये जॉब में इंटरेस्ट है और उस बेसिस पे आप फिर आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हो
1: कि मुझे ये करना है.
0: सो या व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस यार, 0800004866, ये सीरियस कंसर्न है हमारे लिए. हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार कब हमारा इकोनॉमी इंप्रूव होगा, कब हम अच्छे दिन देखेंगे, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इट्स टू क्वेश्चन कि भाई हमारा जो इकोनॉमी है इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे.
1: 100%. सो क्या टेक है आपका इसके बारे में? 0800 हम यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. यू नो दे आर सिनेरियोज, फॉर एग्जाम्पल अ शेफ हु माइट बी अर्निंग मोर देन 100K विद नो डिग्री एट ऑल बट जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट. ये भी पॉसिबल होता है ना, बिकॉज कई शेफ ऐसे भी हैं जिन्होंने डिग्री नहीं है सर हासिल की है लेकिन एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा बनाते हैं, मोर देन 100K वो भी अर्न कर रहे हैं.
0: अरे कितने लोग वो है जो स्कूल ड्रॉप आउट होके अपना खुद का बिजनेस चालू कर देते हैं. अभी मार्क जकरबर्ग इज नॉट कम्प्लीटेड हिज क्वालिफिकेशन बट ही इज देयर, यू नो, फेसबुक.
1: अगर आपका माइंड प्रोग्रेसिव है कुछ ऐसा करने के लिए.
0: या हाय, आपका स्वागत है. बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो?
2: ठीक है भाई, तुम दोनों ठीक है?
1: जी एकदम बढ़िया.
0: ऐसा लग रहा है क्या नहीं है ठीक?
2: संडी मेरे को जानती है.
1: अच्छा, क्या नाम है आपका?
2: मैं राज बात करता हूँ.
0: राज, हाँ राज बोलिए, कैसे हो आज?
2: अच्छा मैं तो बढ़िया हूँ, क्या करो घर पे रहते हैं कुछ करते नहीं है, काम करना मना है.
0: अच्छा काम करना मना है आपको?
1: ओके.
2: नहीं डॉक्टर ने मना कर दिया ना.
1: ओके.
2: 2004 से मैं काम नहीं करता हूँ.
0: अच्छा ओके.
2: अब और ये जो टॉपिक लाया, अच्छा टॉपिक लाया. मेरे बगल से मैं बताता हूँ कि बच्चे लोग के काम नहीं करना चाहिए.
0: अच्छा,
2: क्योंकि वो जब पैसा देख लेता तो वो काम के बगल घूम जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है. ठीक, वो एक मेन रीजन है. और दूसरा, जब लॉकडाउन हुआ है ये तो मेरे लिए बहुत बर्बादी का चीज है.
1: ओके.
2: वर्क फ्रॉम होम जन कर दिया है.
1: ओके.
2: राइट, सुमन क्या मैं बताऊं, मेरा घर पे 3 जन कभी काम करते कभी 2 जन, आज 1 जन काम किया घर पे. अगर हमें घास भी नहीं काट सकते
0: क्योंकि आवाज,
2: सब गवर्नमेंट के काम करते. हाँ सब गवर्नमेंट के काम करते ना. अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं प्रबंध किया कि इनको काम पे बताया काम करो, तो हम भी घर पे घास काट सकते ना, कुछ काम धंधा कर सकते घर पे. एक हल्ला दंगा नहीं, एक मशीन नहीं चला, मैं तो निकल जाता हूँ दोस्तों के साथ, नहीं तो चलता मछली मारने. मौसम अच्छा हुआ तो मैं मछली मारने गया.
1: ओके.
2: सीधा बोट में.
1: क्या बात है.
2: ऐसे है जिंदगी. बट मेरे ख्याल से देखो, मेरा बेटी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी है, सबसे छोटी लीग में बताता, बड़ा तो बड़ा हो गया. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लॉयर है, उसके पास 3 डिग्री लॉ में, 3 डिग्री साइकोलॉजी में. सैंडी वो तेरे को फुसला के इतना अच्छा से पैसा निकाल लेगी तेरे को पता भी नहीं मिलेगा.
1: अच्छा
0: अच्छा, सेल्स में काम करती है मतलब.
2: वो तेरा दिमाग पढ़ लेगी.
1: ओके वाओ.
2: अभी 13 जुलाई के सब गया था ऑस्ट्रेलिया, मैं अकेले घर पे था, मेरा अपना वो पेट था, बिल्ली एक, हम उसके साथ में थे. मैं तुल जाओ, हम लोग घर पे ही आते, कभी भी कोई चीज सेलिब्रेट नहीं कर, सब अबोसिस. यहाँ पलवार इतना ढेर है.
0: एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये सब ये जो हो रहा है, तो मतलब तो काम करना है क्यों नहीं चाहिए पार्ट टाइम?
2: हाँ पार्ट टाइम में शायद अभी गवर्नमेंट देखो लॉ चेंज किया है, उसको जो हॉलीडे होगा वो बंद करता है.
0: अच्छा,
2: तो उनका हॉलीडे पे नहीं मिलेगा, सिक्लिप नहीं मिलेगा.
1: ओके.
2: तो क्या करोगे?
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगा
2: काम में तो तुम्हें वो सब चीज मिलेगा.
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पार्ट टाइम में नहीं मिलेगा, पार्ट टाइम में मिलेगा लेकिन प्रो रेटा हिसाब से मिलेगा ना.
2: हाँ 2027 से पहले वो सब चीज चेंज हो जाएगा.
1: कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ी देर में हम बातें करेंगे. वैसे या देयर इज एन आर्टिकल अबाउट इट.
0: ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन उस हिसाब से, मतलब
1: अगर कंडीशंस है उसमें
0: 20 घंटे काम करे तो 20 घंटे के हिसाब से मिलेगा वो पे, ऐसा रहता है ना.
2: हाँ
0: हॉलीडे पे
2: 20 घंटे के हिसाब. और तुम्हें कितना करेगा, अगर तू स्टूडेंट है पार्ट टाइम कितना कर पाएगा, उस पे भी उन्होंने कानून लगा रखे, इतने आवर्स कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो. फायदा क्या हुआ ना, उससे फायदा फुल टाइम काम कर.
0: अच्छा, तो
2: बच्चों लोग तो मैं मना करता हूँ कि आफ्टर स्कूल गो टू वर्क. वन सौ पैसा देख लेंगे फिर लौट के स्कूल नहीं जाएंगे, वो कहता कि नहीं मैं काम का और कहीं जा भी।
1: सो आपके अकॉर्डिंग की डीमोटिवेशन होती है ऑफ परसुइंग द एजुकेशन।
2: हाँ, हमारे पास दो लड़का है, दो बेटी लोग है और तीन बहू है और दो पोता है, एक पोतनी है।
0: क्या बात है,
1: वेरी नाइस
0: वेरी नाइस वेरी नाइस,
2: बिग फैमिली।
0: या या या इनसे भी बात कर लेते यार। हाय
3: हाय, आई थिंक बच्चों को काम करना चाहिए।
0: अच्छा, वेरी नाइस। क्यों करना चाहिए काम?
3: मैंने खुद ने लाइक व्हेन आई मैं इंडिया में जब थी तो ईयर 11 से मैंने चालू किया था, नॉट वर्किंग फुल टाइम बट पार्ट टाइम, लाइक आई यूज्ड टू टीच अ चाइल्ड एवरीडे।
1: ओके,
3: तो सीनियर
0: ट्यूशन ट्यूशन क्लास बेसिकली
3: 11th 12th। हाँ, ट्यूशंस करवाए थे। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो कॉलेज फिनिश होने के बाद आई यूज्ड टू डू ट्यूशंस अगेन, सो यू नो आई सेड दैट वो ग्राउंड वर्क हो गया था 11th 12th में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फिर मास्टर्स किया तो तब भी मैं पढ़ाती थी बच्चों को।
0: और ट्यूशन में बहुत पैसा था, कुछ भी बोलो वो टाइम पे, मतलब
3: वो टाइम पे भी बहुत ज्यादा था, अभी भी इतना ही है। इफ यू आर स्किल्ड देन यू रियली गेट गुड मनी देयर।
0: अरे अभी तो टीचर लोगों ने क्या क्या करोड़ करोड़ों बना दिए ना।
1: क्या बात कर रहे हो,
0: अरे टीचर लोगों का बिजनेस बहुत डेंजर है, मतलब बहुत सॉलिड है।
3: अभी नहीं बना है मैंने करोड़, तो हम इधर बेच रहे हैं अपनी। नहीं, आई थिंक दे शुड बिकॉज़ इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड, बिल्ड रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। इंडिया में तो चलो वो एक्सपोजर मिल जाता है ऑटोमेटिकली, पर यहाँ पे इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू डोंट हैव फैमिली और लाइक नेबर्स, जैसे यू कैन जस्ट टैप एट समवन्स डोर एंड गो एंड आस्क और टॉक टू देम काइंड ऑफ। सो या यू डू हैव फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में डिफरेंस होता है।
1: बट देन आपके अकॉर्डिंग की आपको एक नया रास्ता मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है आपके लिए उल्टा
0: मुझे,
1: हुआ।
0: मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, हाउ डू यू अवॉइड, लाइक हाउ डू यू रिफ्रेन देम फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट परस्यू एजुकेशन फ्रॉम देयर ऑन।
3: जैसे 11th और 12th इज बोर्ड्स राइट, तो माय पेरेंट्स मेड श्योर दैट आई वाज नॉट, आई वाज गेटिंग ऑफर्स ऑफ चिल्ड्रन मोर चिल्ड्रन कमिंग टू मी राइट, बट दे सेड नो नो नो इट्स हर 12th, like we want her to focus on her studies, so like to be honest sahi main bolu bcom ya mcom ya jo bhi degree humne ki uska I don't see the value in what we did so here, okay, but because I built that
1: confidence
3: or yeah. I can say skill, I could utilize that here kind of thing. So
1: got you. Yeah,
3: degree does not always give you exposure to jobs or professional or what you want to do, can it cannot always explain you that or help you do that. Yeah, it is kind of a piece of paper that you hold sometimes. See, it depends on skills that you doing as well, like IT hai to yes you do need a degree, accounting hai to tumko degree chahiye, you know, in certain spaces yes, but certain job profiles you don't always need a degree to do that job, right? So
1: yeah, ek jo exposure milta hai
3: dusra ki we are in a very evolving environment right now where AI is coming or the technologies are coming in. सही में बोलूं तो स्कूल्स को भी नहीं पता कि क्या पढ़ा है बच्चों को,
0: वो भी पॉइंट है।
1: या वो वैलिड होने वाला है आगे कि नहीं।
3: हाँ, सो यू डोंट नो द ऑथेंटिसिटी इज नॉट देयर एनीमोर। हाँ, बेसिक थिंग्स है, मैथ्स का एडिशन सबट्रैक्शन रिवीजन, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, साइंस के फंडा पता होने चाहिए, कुछ सोशल स्टडीज I should say environmental or geography के information आपको पता होने चाहिए।
0: मुझे तो लगता है history भी पता होना चाहिए। History is very important, I feel personally.
3: It is, but not all the time. Like, can I be honest? 10th standard में हमने Russian history पढ़ी थी, उसका कोई utilization नहीं हो रहा है, या World War One या two का कोई utilization मैंने आज तक अपनी life में नहीं किया, apart from जब मैं म्यूजियम में जाके वो देखती हूँ, then I can relate, okay, yeah, this is what.
1: And moreover, मेरे को वो भी लगता है हिस्ट्री को लेके ना, कि when we grow up, we learn a lot जो हमने कभी history में पढ़ा भी नहीं है, जो books में कभी था भी नहीं है.
3: हाँ, और वो तो गूगल पे अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन ऑलवेज रीड इट एट योर ओन लेजर काइंड ऑफ थिंग. बट या आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट वैल्यू एडिंग, समवन एल्स माइट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई एम सेइंग सिविक्स इज इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, जियोग्राफी इज इम्पोर्टेंट, सो दीज आर द थिंग्स. यस, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इफ इट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और द पैशन दैट यू वांट टू फॉलो काइंड ऑफ थिंग.
1: वेल सेड.
3: सो लाइक So,
0: thank you so much.
3: That's my point of view right now.
1: Not great, yeah.
0: Thanks for sharing.
1: Thanks for sharing.
0: Kya naam hai aapka?
3: Nice talking to you guys. Mera naam Vidhi hai.
0: Vidhi, thank you so much for calling. Thank you.
3: Thank you guys. Bye.
1: Bye.

0: वैसे गरबा नाइट विथ राज गढ़वी ये होने वाली है गाइस, और इसके लिए आप तैयार रहिएगा, अपने कपड़े निकाल के रख लीजिए 1st अगस्त को, यानी कि इसी शनिवार को।
1: कपड़े निकाल के रख दीजिए मतलब क्या?
0: कपड़े जो पहनने निकाल के रखिए।
1: ओ पहनने जो है वो, अच्छा ठीक है ओके।
0: कुछ भी यार,
1: अरे मतलब ये ऐसा कौन बोलता है कपड़े निकाल के रख दीजिए,
0: मतलब समझने वाले समझ गए।
1: अच्छा ओके ठीक है।
0: महात्मा गांधी सेंटर में, सो वहाँ पे ये इवनिंग रहेगी। सो इवन tickets.co.nz पे जाके अभी भी आप टिकट चेक कर सकते हैं। राज गढ़वी के साथ कोशिश करेंगे बात करने के लिए, वो कल यहाँ पे स्टूडियो में आने वाले हैं, तो और भी आपको फील समझ में आएगी अबाउट दिस इवेंट। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए स्वप्निल से बात कर सकते हैं, नंबर टू कॉल इज 0224394736।

0: from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: आज बजकर 2 मिनट हुए हैं. गुड इवनिंग, वेलकम टू द ड्राइव शो. हाय सैंडी,
5: वेरी वेरी गुड इवनिंग रुज़वे, कैसे हो तुम?
4: बहुत ही बढ़िया. क्या चल रहा है आपका सैंडी?
5: बढ़िया है. थोड़ी देर में कन्फेशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहीं पे ये पढ़ा, वो जो जापानीज टेक्निक्स मैंने बताई थी ना कल भी, एक बताई थी जापानीज सेइंग्स वगैरह जो है, जैसे टॉक टू योर बॉडी.
4: हाँ, टॉक टू योर बॉडी बोला आपने. यस,
5: सो आज मैंने ये पढ़ा है, वॉश इट ऑफ. सो When you spend some time with someone, जिसके बाद तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है, यू फील ड्रेन्ड आफ्टर टॉकिंग विद समवन, उसके बाद वॉश योर हैंड्स इन कोल्ड वाटर. तो बॉडी आपका रीसेट बटन कर देती है.
4: ओके,
5: सो द बॉडी टेक्स अ रीसेट एज अ सिग्नल कि इट्स टाइम टू लेट गो.
4: Wow.
5: तो वो ड्रेनिंग बेसिकली निकल जाती है. ऐसा जापानीज सेइंग है. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, बट यू कैन ट्राई दिस.
4: दैट्स क्रेजी यार.
5: या इफ यू फील लाइक आज काम पे किसी की बातें सुन के आप बहुत ड्रेन्ड हो गए हो विद सम कुलीग और विद सम बॉस या कोई भी एनीवन, इफ इट वाज टू ड्रेनिंग फॉर यू, जस्ट गो एंड ठंडे पानी से, अगर आप बीमार हो तो मत धोना ठंडे पानी से हाथ.
4: क्या आपको आज जरूरत पड़ी है क्या ठंडे, मतलब क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है सुनकर कि यार मैंने आज ठंडे पानी से हाथ धो देने चाहिए थे? अगर ऐसा सिचुएशन है तो बस यहाँ पे कॉल करके हमें बताइए. 0800
5: कर सकते हैं आज यहाँ पे
4: 4866 0800 004866. मैं बोलूंगा ऑनेस्टली मुझे आज बहुत ही जरूरत थी
5: ठंडे पानी से हाथ धोने की. नाउ यू नो क्या करना है ना, आप जाओ हाथ धो के आना.
4: हाँ. Yeah, actually. But yeah, you can also give us a call over here. 0800-004-866 is the number. And
5: और कई बार ऐसा होता है, it's not, yeah, and it's not about कि किसी को आप blame कर रहे हो इसमें, ऐसा नहीं है. कई कई personalities ऐसी होती है जब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, when someone is venting out या कुछ भी, तो आप वो energy बहुत seriously कई बार लेते हो. एंड आपको ऐसा ड्रेनिंग टाइप ऑफ फीलिंग होता है, ऐसा बहुत कॉमन है होना ये. एंड इसमें किसी की गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसकी बातें सुनी उसकी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है. इट जस्ट हैपन्स.
4: क्यों डिफेंड कर रहे हो आप उसको?
5: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत किया ना वेंट आउट करके.
4: सही बोल रहा
5: हूँ. सो वो ऐसा कुछ नहीं है, बट देन अगर आप ड्रेन फील करते हो तो यू कैन डू दिस.
4: या यू कैन. तो हैव यू हैड द नीड ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स विद कोल्ड वाटर टुडे? 0800-004-866 आप इस पे कॉल करके या फिर 5599 पे मैसेज करके भी बता सकते हो हमें ड्राइव कीवर्ड के साथ.
5: एंड थोड़ी देर में कन्फेशंस आपके लिए, अगर आप भी कुछ कन्फेस करना चाहते हैं यहाँ पे 5599 इज अ नंबर जहाँ पे आप कुछ कन्फेस कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हो आप.
6: दिस टाइम आई वांट फुल फ्रीडम.

0: Drive-through confessions.
1: Drive-through confessions में यहाँ पे confessions की हम बात करते हैं, लेकिन आज confessions के पहले Sandy को इस topic के ऊपर बात करनी है ना?
2: हाँ, it's a confession only basically. आप हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस चीज के साथ अगर आप relate करते हैं, तो यहाँ पे आप confess कर सकते हैं 0800 00 हम पर. So the statement is, not many people know this about me, but I still do this childish thing. ऐसी कौन सी childish thing है जो आज भी आप करते हैं, जो अभी भी आप करते हैं? जैसे कि example देती हूँ, for example कि रुस्बे से पानी नहीं पिया जाता है, तो वो उसमें फ्लेवर डाल के पानी पीता है क्योंकि इस बहाने से वो पानी पिलेगा. मेरे को बचपन याद आ गया, जब दूध नहीं, वही ना, जब दूध नहीं पीते थे तो बॉर्नविटा वो सारी चीजें जो थी, वो सारे एलिमेंट्स थे उसको फ्लेवर्ड मिल्क बनाने के लिए, ताकि हम दूध पिए. मुझे वो दिन याद आ गया एक्चुअली मैं तुम्हारी आज बात सुन के. सो व्हाट इज योर चाइल्डिश थिंग जो आज भी आप करते हैं? Like, not many people know about this and you want to talk about ki, yes, this is what actually I do.
1: What is that childish thing that you do?
2: Yeah, so wo kaun si cheeze hain? Main abhi bhi imaginary conversations karti hu.
1: Imaginary conversations?
2: Matlab, kisi imaginary, like, khud kise baat karna ya kisi imaginary se baat karna. You know, usually bache ye sab cheeze karte hain. It's a childish thing we say, na, ki imaginary friend hote hain.
1: Haan, khud se baat karna. Haan, matlab, haan.
2: Kisi imaginary friend se baat karna, aisa. तो वो मैं कभी कभी वो कन्वर्सेशंस करती हूँ.
1: राइट. मेरे को पता नहीं ये चाइल्डिश है कि क्या है, लेकिन मेरे को, मैं रैंडमली बर्तन धोते धोते रैंडमली गाना गाना चालू करता हूँ. रैंडम सॉन्ग.
2: गाना गाना तो चलो फिर भी ठीक है. क्या तुम अभी भी क्रिकेट खेलते हो? चाइल्डिश थिंग है
1: वो? चाइल्डिश थिंग नहीं है सैंडी, इट इज अ बॉय थिंग.
2: हो सकता है.
1: एंड इवन मेन आर ओके टू बी बॉयज, लाइक यू नो, मेन आर आल्सो बॉयज. हाय, आपका स्वागत है.
3: हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग?
1: बहुत ही बढ़िया भाई,
2: कैसे हैं?
3: एकदम मस्त. अच्छा, एकदम मस्त टॉपिक तुमने चूज किया है एज यूजुअल गाइस. तो मुझे लग रहा है एक बात मैं सबके सामने बोलूंगा यार, मुझे ना वो जीआई जो होते हैं ना, जीआई जो और ही मैन जो होते थे हमारे,
2: या
3: तो अगर वो कहीं दिख गए लग जाता हूँ यार.
1: क्या वो कहीं दिख गए तो क्या करते हो?
3: अरे खेलते है.
1: अरे यार, इनका क्यों अटक रहा है आवाज यार? मेरे टाइम, मेरे से यार, मेरे का सारे टाइम पे अटक रहा है. तो जीआईजो के साथ आप खेलते थे बचपन में?
3: तो यू वोंट बिलीव रुजबे, मेरा ना एक मतलब ना, देयर इज वन फेसबुक ग्रुप एक्चुअली, इट्स कॉल्ड आठवणीतील पुणे, मतलब पुणे इन मेमोरीज, ऐसा एक ग्रुप है फेसबुक पर. तो उसपे बहुत लोग लिखते हैं रुजबेला माहिती असेल कदाचित, बिकॉज विद द टेकन इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट ग्रुप, नाउ देर आर लॉट ऑफ ग्रुप सेइंग आठवणीतील मुंबई, आठवणीतील नाशिक, आठवणीतील छोटे छोटे. तो ओल्ड मेमोरीज लोग अपने अपने लिख रहे हैं उसमें, ठीक है. तो समवन वाज राइटिंग अबाउट माय एरिया और नारायणपेट इन पुणे. तो ऐसे करते करते ना, हमारे घर के सामने जो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी छोटी सी, तो वो लोग मुझे ऑब्जर्व करते थे मैं जब छोटा था तब. तो आई यूज्ड टू प्ले विद दोज ही मैन एंड ऑल दिस, यू नो, छोटे छोटे जीआई जोस. हाँ, जैसे मैंने देखो आज देख ली से ब्रोकन एरो. तो अगर मैंने वो फिल्म देखी तो वो वही फिल्म में उनके साथ, यू नो, ऐसे करूँ एज इफ आई एम डायरेक्टर, यू नो, and they are my characters.
1: That's right.
3: और मैं जोर से बोल रहा हूँ, रुको ना, आप हिंदी में वगैरह
2: वगैरह. Wow, so cool.
1: और मेरे पास ना एक, मतलब मैं खुद का नहीं था, लेकिन किसी जो, मतलब एक फैमिली फ्रेंड बड़ा हो गया था वो, तो उसको नहीं चाहिए था, मतलब उसके घर वाले निकाल रहे थे वो, तो एक सब बड़ा ऐसा घर टाइप था, घर भी नहीं बोलते उसको, आई डोंट नो, एक कुछ बहुत ही बड़ा था जीआई जो का ऐसा, जिसमें बेसिकली उनका टेंट टाइप काइंड ऑफ थिंग, और उसका अलग स्ट्रक्चर ऐसा होता था, लाइक जहाँ पे, एंड वी यूज्ड टू, एंड आई यूज्ड टू बिल्ड स्टोरीज इन माय हेड कि अभी यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ से ये अटैक कर रहा है, ये कर रहा है. हाँ,
3: अरे उनका बहुत कुछ कुछ था, दे यूज्ड टू हैव देयर ओन हेलीकॉप्टर्स,
2: जब
3: भी हॉबी एज अ हॉबी आई मेक शॉर्ट फिल्म्स.
1: अरे क्या बात है,
3: मुझे
1: ओंकार अब वही हो गया जो तबला भी प्ले करते.
3: नहीं
1: आप नहीं कर रहे तो वो दूसरा एक ओमकार है. नहीं नहीं मेरे फेसबुक पे कोई आया ओमकार, मेरे को लगा आप हो क्या वो, लेकिन नहीं वो कोई और है.
3: रुजबे तू मला विसरला यार.
1: नहीं नहीं मला माहिती है तू.
3: यस
1: मला आठवण आठवण आहे. आठवण आहे मला. हाँ ओके थैंक यू ओमकार यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन.
2: या थैंक यू सो मच ओमकार. वेल इससे मुझे याद आया कि या अनदर चाइल्डिश थिंग, आई स्टिल वॉच कार्टून्स. अगर मेरे को ऐसा ऑप्शन मिले कि एनिमेटेड मूवी देखने का तो आई डेफिनेटली वॉच इट. एंड अगर मेरे को कहीं ऐसा टॉम एंड जेरी कई बार मैं देखती हूँ ऐसा टाइम पास करने के लिए.
1: अच्छा.
2: तो या आई कैन वॉच
1: कार्टून्स. नॉट
2: वेरी लाइक उसके ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड in watching cartoons, but yeah.
1: मेरा एक दोस्त है, उसका आई थिंक चाइल्डिश बिहेवियर ये है कि वो अभी भी
2: उसके लिए कन्फेशन कर रहे हो यहाँ पे.
1: मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना, लेकिन उसका चाइल्डिश मेमोरी ये है, उसका चाइल्डिश बिहेवियर ये है कि उसने बहुत सारे डॉलर्स मैं बोलूंगा वेस्ट किए, वो बोलता है इन्वेस्ट किए. वो छोटी गाड़ियां होती है ना,
2: या
1: छोटी गाड़ी, नहीं नहीं वो एकदम हॉट व्हील्स वाली नहीं.
2: हाँ.
1: ये है रियल, लाइक नॉट रियल बट बेसिकली उसके एक
2: मिनी वर्जन्स होते हैं जो,
1: हाँ, छोटी वर्जन्स ऑफ लाइक प्रॉपर बिग कार्स.
2: यस
1: लाइक फरारी का एक एकदम ही छोटा सा वो मिनिएचर वर्जन,
2: लेकिन महंगा होता है वो.
1: वो बहुत महंगा होता है.
2: yeah.
1: उसने इतने डॉलर्स उसमें वेस्ट किए हैं, फिर उसका उसको अच्छे से रखने के लिए डब्बे भी खर्चा किया उसने.
2: It's a hobby ना, passion होता है कईयों का ये सब चीजों को लेके.
1: ये this is called पैसा उड़ाना passion.
2: This is not childish. Childish होता है toy cars, Hot Wheels. ये childish नहीं है, ये बड़ों वाला है.
1: I think my one other childish trait is जब मैं मेरे दोस्तों के घर पे जाता हूँ और उनके बच्चों के खिलौने के साथ मैं खेलना चालू कर देता हूँ.
2: Yeah.
1: I enjoy that.
2: What is your childish thing? आप भी यहाँ पे बता सकते हैं. किसी का message भी आया रुजबे.
1: जी यहाँ पे एक message आया कि we would love to play Dubai Spy. अभी Dubai Spy आपको पता है ना क्या है actually में?
2: नहीं.
1: I Spy basically हम, हाँ मतलब Dubai Spy क्या पता है आपको?
2: डब्बा नहीं पता.
1: मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो बेसिकली एक डब्बा होता है.
2: हाँ.
1: वो डब्बे को हम ऐसा फेंकते हैं रास्ते पे.
2: हाँ.
1: जो डिनर होता है वो जाके उस डब्बे को जाके लेकर आता है और एक स्पॉट होता है अलॉटेड, उस स्पॉट पे जाके रखता है. बाय द टाइम द डिनर गोज एंड फेचेस दैट डब्बा, तब तक बाकी सबको छुपना है. फिर ये डिनर को जाके उन सबको ढूंढना है, बट मेकिंग श्योर कि कोई भी आके उस डब्बे को लात ना मारे.
2: अच्छा, तो डब्बे को भी बचाना है और सबको ढूंढना भी है.
1: डब्बे को भी बचाना है और
2: किसी ने आके अगर लात मार दी तो वो गया,
1: फिर से न्यू डेन अगेन. हाँ, अगर और अगर उसने सबको पकड़ लिया तो जिसको सबसे पहले पकड़ा उसका डेन.
2: ओह वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग. एंड देन बेनेफर का मैसेज है, उन्होंने बोला है कि नरगोलियो हिटी किटी चोर पुलिस लास्ट टिप चेन गिटीज गिरी डंडा
1: खेलते थे हम लोग. हां
2: मैंने वो टाइसा गेम व्हिच आई सोली मिस. Let's revive and play these games.
1: अच्छा,
2: मुझे लगता है कि इन गेम्स का भी एक ओलंपिक्स होना चाहिए.
1: मुझे लगता है पहले आप आपके घुटने संभालो. Let's play these games. Anyway, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो 5599 पे मैसेज करते हुए आप के कौन से ऐसे बचपन की ऐसी आदतें हैं
2: जो आप अभी भी करते
1: हो आप, या जो आपने शायद बचपन में नहीं की

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Abhi hum baat karne wale about the new legislation, jo holiday replacing holiday act karne wala hai. और इसके बारे में अब काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही है. बेसिकली एनुअल लीव, सिक लीव, पब्लिक हॉलीडे एंटाइटलमेंट्स, ये कैसे अर्न होते हैं और कैसे ली जाते हैं या कैसे पे होते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे आई है.
4: सो जो करंट हॉलीडे एक्ट है 2003, इसे रिप्लेस किया जाने वाला है.
3: 2027 से होने वाला है.
4: ये 2027 से होने वाला है. सो व्हाट इज चेंजिंग, एनुअल लीव विल बी अर्नड डिफरेंटली. So currently, employees become entitled to 4 weeks annual leave after 12 months of employment. New system mein leave will be earned progressively based on the hours employees work.
3: So making it
4: proportional for the different hours.
3: Right. So even if it is 20 hours, agar aap kar rahe ho, to us proportion mein aapko milta hai.
4: Us proportion
3: mein milega. Aur waise hi hota hai yaar. Most times casual workers ko usually unke pay mein hi holiday pay mil jata hai.
4: Yes, yes.
3: So
4: sick leaves ke rules bhi thode change hone wale hain. Naye system mein they will simplify how sick leave is calculated and उसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो.
3: और एक और चीज है ना कि पहले सिक लीव किक इन होता था आफ्टर 6 months विद अ लमसम एंटाइटलमेंट ऑफ 10 days पर ईयर, रिगार्डलेस आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो या फुल टाइम वर्क कर रहे हो. अभी नए सिस्टम में ये पहले दिन से ही अक्रू होंगे, बट ओनली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क. तो सिक लीव भी इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क.
4: नंबर ऑफ आवर्स. और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज कैजुअल एंड पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए भी होने वाली है. वर्किंग आवर्स का स्टैंडर्ड, एडिशनल, कैजुअल, सो उनको भी अफेक्ट करेगा हाउ द लीव इज बीइंग कैलकुलेटेड. सो बिजनेसेस विल हैव टाइम टू अपडेट द पेरोल प्रोसेस बिफोर द चेंजेस टेक अफेक्ट. सो एक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा प्रेप करने के लिए.
3: जी, और कैजुअल वर्कर्स जो है इनको लीव कंपनसेशन पेमेंट होगा एटलीस्ट 12.5% फॉर देयर आवर्स, और उनको नहीं मिलेगा कोई एनुअल या फिर सिक लीव. वैसे बिरेवमेंट एंड फैमिली वायलेंस लीव, ये सारे वर्कर्स को अवेलेबल रहेगा इंक्लूडिंग कैजुअल्स. तो ये सबको मिलने वाला है.
4: सो इसके रिलेटेड आने वाले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं एक पॉडकास्ट भी लेके आने के लिए. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर करंट एग्रीमेंट्स या लीव्स को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग वन पॉडकास्ट रिलेटेड टू दिस नेक्स्ट वीक में भी.
3: नेक्स्ट वीक आपके लिए लेकर आएंगे ये. तो या स्टे ट्यून्ड.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
6: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेल माहौल तो बनने वाला है अभी, क्योंकि आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम रामायण का ट्रेलर।
1: यस, ट्रेलर आ चुका है। काफी समय से ये मूवी रुसबे बन रही थी। रणबीर कपूर इज प्लेइंग एज राम इन दिस, लॉर्ड राम इन दिस मूवी। साई पल्लवी सीता का रोल कर रही है, यश जो है रावण का रोल कर रहे हैं, सनी देओल इज डूइंग हनुमान,
0: एंड
1: रवि दुबे जो है वो लक्ष्मण का रोल इन्होंने किया है।
0: रवि दुबे
1: दैट टीवी एक्टर होस्ट। सरगुन
0: उनके हस्बैंड। अच्छा, नाइस ओके ग्रेट यार।
1: सो ट्रेलर सो फार जितना हमने देखा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। द प्रोडक्शन सीम्स रियली गुड एक्चुअली। नितेश तिवारी ने एक्चुअली में इस मूवी को बनाया है।
0: चलो फटाफट दिखा देते हैं, मतलब सुना देते हैं आपको ट्रेलर।
2: तुम्हारा नया राजा

0: Yash.
1: Yeah.
2: Devlo. Prithvilo. Patallo. Tino loko me ek hi raj hoga.
1: इन केजीएफ
3: भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
4: मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम
0: रणबीर कपूर बहुत सॉलिड लग रहा है।
4: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए स्वीकार।
0: वो रवि दुबे था बाजू में।
4: निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
5: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
6: जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा
5: वो मोहित हो गई है आप पे।
2: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। ना राम की मृत्यु साधारण होगी ना उसका अपमान।
7: रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लूंगा।

0: यार ये मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है।
1: Even the VFX जो इस मूवी में है ना कमाल की है।
0: बहुत beautiful.
1: The production is really good.
0: ये विवेक ओबरॉय है इसमें।

0: अमेजिंग यार, अभी तक वैसे इसमें हनुमान का करेक्टर मैंने देखा नहीं अभी तक.
1: मैंने भी नहीं देखा, बट बस थोड़ी झलक दिखी, बट उसमें कुछ ऐसे मेरे को लग रहा था कि देखेंगे.
0: या बट वन थिंग आई विल से गाइस, जब भी आपको मौका मिले ट्रेलर जरूर जाके वीडियो चेक कीजिएगा, बिकॉज इस ट्रेलर में सोफाना जो करेक्टर्स भी डिफरेंट दिखाए हैं वो बहुत ही कमाल के, लाइक द वीएफएक्स इफेक्ट्स इज लाइक नेक्स्ट लेवल. बाहुबली की याद आ गई मुझे.
1: और ये ट्रेलर की खास बात मुझे लग रहा है ये है कि इट इज लेफ्ट विथ वांटिंग यू टू सी मोर.
0: यस,
1: इट्स नॉट कि इसमें सब कुछ देख लिया है.
0: इट्स लाइक वी नो द स्टोरी, ऐसा नहीं है.
1: हाँ.
0: पता है हमें, लेकिन इसको अलग ही वे से देखना, मुझे लगता है ये मूवी ना ब्लॉकबस्टर जाने वाली है सिनेमास में. दिस इज अ ब्लॉकबस्टर मूवी.
1: So yeah, Raman's going to be releasing during Diwali. So
0: yeah.
1: Diwali is almost 2-3 months away now.
0: Yeah, Diwali ke samay par perfect time pe ye movie release hone wali hai.
1: Toh dabba ke promotions hone wale is movie, kaise lag rahe hai abhi ke liye?
0: Yeah.
1: But aap batayega aapko kaisa laga ye trailer sunkar, kaisa laga aapne agar dekha YouTube pe to batayega zarur. 5599 pe message karke, how did you find this trailer?

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 6 to 10 a.m.
1: Accurate traffic.
2: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
3: Rain overnight for Auckland, moderate northerlies. The low of 11 on the northern. It's heavy from Spikety Junction to Northcote Road. Heading north, the northwestern is slow westbound from Newton Road to Te Atatū. On the southern, it's slow southbound from Newmarket to Sylvia Park and heading north from Luke Street to Green Lane. The southwestern's heavy, heading north from Massey Road to Onehunga and south from Mangere Bridge to the southern.
2: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar chitna shudh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
8: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance centre sale event today till Sunday.
9: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
8: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance centre, 9 Sylvia Park Road.
10: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their 3 Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
11: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
12: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
11: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
12: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
13: Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Bukit-Koi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
17: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए 104.2 FM और 87.7 FM in city. आप लेकर आते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं. और रोवा ऐप के जरिए भी you can stay connected with us from anywhere in the world.
18: So करण औजला का शो होने वाला है guys. P-pop culture world tour होने वाला है 25 अगस्त को Spark Arena में. So tickets अगर आपने नहीं खरीदे, hum.rova.nz पे scroll down, you can buy the tickets. Otherwise यहाँ पे अभी भी चांस है आपके पास टिकट जीतने का. So very easy. आपको करना क्या है, एक सिंपल से सवाल का आपको जवाब देना है 5599 पर के ए कीवर्ड के साथ, ठीक है? या सो मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है, क्या करण औजला फेमस अमेरिकन शो लेट नाइट शो जो है जिमी फैलन के साथ उसमें आ चुके हैं या फिर नहीं?
17: जी, इसको आपने बस हाँ या ना में लिखकर भेजना है.
18: यस और नो लिख के भेजिए. सो करण औजला अपीयर्ड ऑन द फेमस अमेरिकन लेट नाइट शो जिसका नाम है द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन. इसमें क्या करण औजला आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, हाँ या ना में के ए स्पेस यस या नो लिख के भेजिए 5599 पर. करेक्ट एंट्रीज इस ड्रॉ में जाएगी जहाँ पे आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे डबल पास जीतने का मौका है
17: जी। फटाफट जाइएगा टिकट ले लीजिएगा क्योंकि मैं अभी देख रहा ही था तो अभी भी काफी टिकट्स अवेलेबल है और अच्छे प्राइसिंग पे अवेलेबल है यार। लेकिन अगर आप जा रहे हो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बालकनी वाला सेक्शन जो है ऊपर वाला सेक्शन, तो $80 में टिकट मिल रहा है। स्पा करीना में बहुत रेयरली हमको ये रेट पे टिकट्स मिलते हैं,
18: $80 होता नहीं है।
17: सो इट इज अ गुड रेट, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, यू कैन बाय इट ओवर देयर। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखकर भेजिए हमें,
18: या के ए स्पेस क्या करण औजला द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन, इसमें आ चुके हैं या फिर नहीं 5599 पर।
17: ठीक है, फटाफट भेज दीजिए।

0: ट्रिप ले गए, मुलाकात हो गई आपसे। हम थ्रोबैक
1: 6 बजे के बाद आपके लिए ट्रेंड मेकर्स लेकर आएंगे, और ट्रेंड मेकर्स में आज तो बहुत ही स्पेशल शो होने वाला है। टुडे इज गोइंग टू बी एन आवर of just beautiful music.
2: Yes, beautiful music, because aaj soulful songs bhi, dance numbers bhi of Sonu Nigam hum play karne wale hain. Sonu Nigam is celebrating birthday today.
1: Sonu Nigam ka happy birthday hai, aur agar aapko bhi music bahut pasand hai to definitely aapne you have looked up to Sonu Nigam at some point. तो आज पूरा आवर डेडिकेटेड रहेगा सोनू निगम के लिए। आपका सोनू निगम का फेवरेट गाना कौन सा है जो आपको लगता है इस आवर में होना ही चाहिए? हमको मैसेज करके बताइए 5599 पे अभी के अभी, सो दैट वी कैन सेट आवर प्लेलिस्ट। मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है ना आज।
2: सो आपका फेवरेट गाना कौन सा है सोनू निगम का? ऐसा कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं? 5599 इज अ नंबर जहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ।
1: तो फटाफट मैसेज कीजिए और हमें बताइए, और प्लस हम लोग कम्युनिटी में जो इवेंट्स हो रहे हैं इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे इन द नेक्स्ट आवर। तो बस ध्यान देते रहिए, सुनते रहिए और एंजॉय करिए। हम

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Ruzbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe only on Hum. Hum. Accurate traffic.
8: BYD South Auckland now open.
9: Rain overnight for Auckland, moderate northerlies, the low of 11 degrees. On the northern, it's heavy from Spaghetti Junction to just past Esmond Road. Heading north, the northwestern slow westbound from Spaghetti Junction to Rosebank. On the southern, it's slow southbound Newmarket to Sylvia Park and heading north from Loop Street to Green Lane. The southwestern's heavy in both directions between Puhinui Road and Mangere Bridge.
8: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
10: Celebrate your favourite big screen icons with pocket-sized pals and oodles of fun. Featuring a blockbuster cast of 40 characters, get one free Disney Ushi with every $30 you spend. Now playing at Woolworths. T's and C's apply while stocks last.
11: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
12: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghi Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
13: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
14: क्यों, क्या हुआ?
13: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
15: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
16: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
0: हम टाइम चेक. हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
17: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 6. A number of locations of interest have been identified in Palmerston North after a mystery measles case popped up. The person has no connection to international travel and there's no known source of infection. They'd spent time in Wellington during the busy Matariki weekend. The team behind a rescue on Mount Aspiring says it was one of the most challenging missions they've ever carried out. A climber fell 200 metres into a crevasse on Tuesday. Their companion then climbed for more than 3 hours to raise the alarm. Graham Gale from Helicopters Otago says luck was on their side.
18: Chill factor up there, minus 15 or something. The chances of getting in the next day, we may not have been able to. So to do it that night, and it was very pleasing.
17: A range of recommendations has been unveiled aimed at cutting red tape for residential solar. The Ministry for Regulations review found that planning rules can create barriers for some solar installations, particularly larger or ground-mounted systems. Pie makers continue to push the envelope as they battle for top honours at the Bakewell Supreme Pie Awards. For the first time ever, a horse pie is among the 5,000 entries. Chief Judge Ian Moore says power pies are also on the up.
4: There was only one the previous year. They ranged between 5 and 7 power pies last year.
17: To sport, the Commonwealth Games track cycling gets underway this evening with preliminaries. There are team pursuit and team sprint medal races in the morning. The last women's golf major of the year, the AIG Women's Open, has teed off in England. The two Kiwis, Amelia Garvey, is among the very early starters. She's parred the first. Dame Lydia Ko starts at 18-8. And NPC Rugby kicks off from 7:10, Waikato taking on Bay of Plenty.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
15: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
14: सूचित किया जाता है अरिश्मा आरती रोनिल नारायण तथा स्वर्गीय अवनील नारायण के माँ नरेन सामी की पत्नी पापाकुरा के ईश्वरी सामी की मृत्यु मिलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रोनिल को कॉल करें 0211-166511 पे या विजिट कीजिए 51 बाउंड्री रोड पापाकुरा. अरिश्मा आरती रोनिल नारायण तथा स्वर्गीय अवनील नारायण की माँ नरेन सामी की पत्नी पापाकुरा के ईश्वरी सामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार मंडे दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप रोनिल को 0211-166511 कॉल कर सकते हैं या विजिट करें 51 बाउंड्री रोड पापाकुरा.
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम. हाँ।

0: Good evening, Trendmakers. आपके लिए शुरू हो गया है. You're listening to the Drive Show with Sandy and Ruzbe. Hi, Sandy. Good evening.
1: A very, very good evening, Ruzbe. Yes, Drive Show शुरू हो चुका है और आज Trendmakers में हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं सोनू निगम को, सेलिब्रेट करने वाले सोनू निगम को,
0: क्योंकि आज सोनू निगम का बर्थडे है. और इस बर्थडे के मौके पर हम बोले कि आज ये वो पूरा आवर डेडिकेटेड रहेगा फॉर ओनली सोनू निगम सॉन्ग्स. हमने मैसेज पूछा था आपको, मैसेज करके बताइए हमें कौन सा ऐसा गाना है सोनू निगम का जो आप सुनना ही चाहेंगे. और काफी मैसेजेस यहाँ पे आए हैं एंड काफी कॉमन सॉन्ग्स भी आए हैं यहाँ पे,
1: बट कुछ गाने आज आपके लिए हम प्ले कर पाएंगे यहाँ पे.
0: सो कोशिश रहेगी एंड ऑब्वियसली आई थिंक वी हैव टू डू अ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ऑल्सो. आई थिंक वो भी काफी नहीं होंगे सोनू निगम के लिए.
1: सोनू निगम या बॉलीवुड में, बॉलीवुड इज फुल ऑफ सोनू निगम. यू नो, मेरे को बहुत ही फुल सर्कल लगता है रुजबे सोनू निगम को लेके. वी नो दैट ही स्टार्टेड हिज करियर बीइंग अ मोहम्मद रफ़ी फैन, राइट? कि मोहम्मद रफ़ी से इंस्पायर्ड होके उनके गाए हुए गाने भी वो गाया करते थे अपने कॉन्सर्ट्स में, लाइक छोटी छोटी जगह पे वो एक्चुअली में गाया करते थे पहले. एंड देन धीरे धीरे वो बड़े हुए और अपने गाने को उन्होंने गाने शुरू किए. इट्स फुल सर्कल ना कि हमने इसी साल एक्सपीरियंस किया कि हमारे लोकल आर्टिस्ट सोनू निगम के गाए हुए गाने अपने कॉन्सर्ट्स में, अपने लोकल कॉन्सर्ट में वो प्ले कर रहे हैं, गा रहे हैं वो गाने उनके, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए. एंड देन दे आर स्टार्टिंग विद देयर ओन सॉन्ग्स.
0: दैट्स राइट. या हम नील पटेल की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे जिन्होंने एक शो भी किया था पूरा सोनू निगम को डेडिकेटेड.
1: एकोस ऑफ सोनू निगम.
0: या एंड व्हाट अ फैबुलस शो आल्सो दैट वाज. वेल एनीवे, सोनू निगम की अगर बात करें तो सोनू निगम ने कुछ क्रेजी चीजें की है. आपको पता है उनका एक वीडियो, ये बहुत पहले की बात है जब सोशल मीडिया हुआ भी नहीं करता था, बट उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था विच वाज ही प्रिटेंडेड टू बी अ बेगर. स्टोरी हुई थी तो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. इट इज कॉल्ड द 12 रुपी स्टोरी. तो एक यंग स्ट्रेंजर थे जिनका नाम था शाहबाज अली सैयद. वो रुके और उन्होंने सोनू का हाथ थामा और उनको कहा, पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट खाया है, और ऐसा करके 12 रुपए उनके पाम में दे दिए उनको. और सोनू निगम एक्चुअली गॉट वेरी मूव्ड बाय दैट जेस्चर, क्योंकि वो तो एक भिखारी का रोल प्ले कर रहे थे, लाइक बेगर का रोल प्ले कर रहे थे, और वो डिसगाइज में ही थे तो बंदे ने पहचाना नहीं था कि ये कौन है. बट फिर सोनू निगम ने लेटर उनको ट्रैक किया और फिर उसको इनवाइट किया स्टूडियो में, वहाँ पे हक किया. एंड वो जो 12 रुपए थे वो पूरा फ्रेम करके उन्होंने रखा है वहाँ पे. उनके मेजर ट्रॉफीज और म्यूजिक अवार्ड्स के बाजू में वो 12 रुपए रखे उन्होंने.
1: क्या बात है.
0: या
1: सो कूल,
0: बिकॉज़ यू आर सो टच्ड बाय जस्ट हाउ गिविंग दैट पर्सन वाज.
1: सो अगर आपको ये वीडियो मिले तो जरूर जाके चेक करना. इट्स अमेजिंग वीडियो. दो दूर से कुछ लोग शूट कर रहे थे इस वीडियो को लेके. सो वेरी नाइस वीडियो. सोनू निगम के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया था. दिस वॉज अ दैट टाइम, उस समय पर एल्बम्स का टाइम था एंड सोनू निगम ने शुरुआत की थी एल्बम्स में अपना गाना गाकर बिफोर स्टार्टिंग इन बॉलीवुड.
0: उनका दीवाना, दीवाना करके एक एल्बम था ना.
1: या
0: और वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था एंड आई थिंक पीपल जस्ट लव्ड हिज वॉइस इन दैट.
1: इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड में सच काम किया था, अच्छा सीला दिया था.
0: अच्छा सीला उन्होंने किया था कुछ, बट दीवाना वॉज द वन दैट लिटरली सेट हिम अपार्ट. एंड देन उसके बाद फिर जो उन्होंने गाने किए,
1: द होल एल्बम वाज वेरी गुड.
0: या द होल एल्बम. तो उसका ही जो मेन सॉन्ग था जिसका टाइटल भी दीवाना है, वो आपके लिए हम एज अ फर्स्ट सॉन्ग वो प्ले कर रहे हैं. एंड देन देयर इज गोना बी सम मोर क्लासिक्स फॉर यू. तो बस सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए दिस होल आवर डेडिकेटेड टुवर्ड्स सोनू निगम.

0: Trend Makers.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbe, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum.
8: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Clean up your space with 20% off Dissolvit cleaners and save $160 on a super tub single cupboard laundry tub, now $539. T's and C's apply. Shop in store and online at Mitre 10.
9: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
10: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
9: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
11: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ। अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
16: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
0: The beat of Bollywood.
17: World's best, हमारी good

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Humping Bollywood's biggest hits. Sonu Nigam ko aaj shout out de rahe hum aur ek khas baat Sonu Nigam ki ye hai ki it's not just one kind of songs jo inhone gaaye hai, perform kiye aur hit kiye hai. Inhone alag alag type ke gaane gaakar unki jagah banayi hai hamare dil mein.
2: Yeah, thousands of songs inhone gaaye hai, more than 30 languages mein rusbe.
1: Wow.
2: Hindi, Kannada, Bengali, Tamil, Telugu, Marathi, Malayalam, much more. So, even versatility tum inki dekho na, romantic gaane bhi gaaye hai, classical gaane, ghazal, sufi, pop songs, devotional songs, dance numbers, rock numbers, diversity dekho in kitna inhone versatile way se gaya hai.
1: Yeah, actually main Sonu Nigam was kind of also responsible, not really, but aisa kehne ko sahi lagta hai, cool lagta hai, was responsible to get a few people suspended from their job.
2: Okay,
1: to
2: kaise?
1: Ye kissa hai around जहाँ पे वो एक फ्लाइट में थे 2016 में जोधपुर से मुंबई और जो फेलो पैसेंजर्स थे इन्होंने रिकग्नाइज कर दिया सोनू निगम को तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यार एक गाना हो जाए ऐसा तो उन्होंने डिसाइड किया इम्प्रॉम्प्टू कि वो फ्लाइट में जो वो अनाउंसमेंट वाला होता है ना पीए सिस्टम कि वहाँ पे वो एक गाना गाएंगे तो उन्होंने उस पे ऊपर गाना शुरू कर दिया दो पल और पंछी नदिया
2: रिफ्यूजी का
1: आई थिंक वो और दो पल तो इसका है ना वीर जारा का सो वो वीडियोस काफी वायरल हो गए एंड बाद में जो एयरलाइन कंपनी थी जेट एयरवेज उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया क्योंकि ये सेफ्टी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था
2: हाँ अलाउड नहीं होता है
1: और उन्होंने जो भी 5 क्रू मेंबर्स थे ऑन बोर्ड उनको सबको सस्पेंड कर दिया
2: लाइव कॉन्सर्ट सुन रहे थे वो
1: पैसेंजर को इन फ्लाइट अनाउंसमेंट सिस्टम यूज करना अलाउड नहीं होता है
2: बट
1: व्हाट अ फ्लाइट दैट मस्ट हैव बीन ना फॉर
2: आई नो मैन फ्लाइट में लोग बैठे हैं और सोनू निगम गा रहा है उनके लिए नेक्स्ट लेवल
1: दैट्स क्रेजी बट एनीवे और भी ऐसी बातें लेकर आएंगे आपके लिए बस सुनते रहिए हम

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: Unwrap huge savings at Capricorn's birthday celebration sale.
3: Rain overnight for Auckland, a low of 11. It's heavy on the northern from Spaghetti Junction to Oniwa Road. From the city to Silverdale, 45 minutes. The northwestern is heavy westbound St. Luke's to Rosebank. On the southern, half an hour to Monaco, 40 minutes to Drury. It's heavy south from St. Mark's Road to just past Green Lane, heading north from Sylvia Park to Green Lane. The southwestern is heavy Massey Road, north to Mangere Bridge.
2: Get free installation and free underlay on selected Rhino carpet. Visit Carpet Court today.
4: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है, अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ। अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज, ट्रेड इन वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है, फ्यूल पर पैसे बचाइए। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स, विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो। फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
5: Good news, tradies. This Saturday, Mitre 10 Mega Botany aaiye for a free sausage, supplier demos on site or giveaways, range, convenience aur aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupahar 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega Botany.
6: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
7: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Merikau and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.

0: ट्रेंड मेकर्स,
1: आप सुन रहे हैं हम ट्रेंड मेकर्स, आपके लिए जारी है और आज हम बातें कम करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इट्स सोनू निगम स्पेशल आवर और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोनू निगम के गाने आपको सुना सके।
2: या सो बिफोर बिकमिंग अ फेमस सिंगर वो चाइल्ड आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया है काफी मूवीज में एंड एज अ कंपोजर भी उन्होंने काम किया है। ही कंपोज म्यूजिक फॉर फिल्म इंक्लूडिंग जल एंड मेनी अदर मूवीज।
1: ओके, इन्होंने एज अ एक्टर भी काम किया है ना, वो कौन सी वो मूवी थी वो दो तीन मूवीज में काम किया है उन्होंने
2: लेकिन चली नहीं थी वो,
1: कभी नहीं चली वो। और एक तो वो मूवी थी यार वो सांप वाली, वो क्या थी
2: नागिन?
1: नहीं यार, अरे यार बहुत क्रेजी मूवी है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स है। उसमें सुनील शेट्टी है, सनी देओल है।
2: आई नो
1: वो है वो जो बिग बॉस में आया था वो, यार क्या नाम है उसका, मैं भूल गया।
2: लिस्ट ऑफ एक्टर्स है उसमें,
1: लिस्ट ऑफ एक्टर्स है और सोनू निगम भी है उसमें। एंड क्या थी वो मूवी यार, अभी कोई कॉल करके बताएगा हमें। बट एनीवे टाइम नहीं आज फोन लेने का, बट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी वांटेड टू आई वांटेड टू से इज कि ये 3 साल की उम्र से गा रहे हैं सैमी, 3 साल की उम्र से ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। 3.5-4 ईयर्स के थे और उन्होंने अपने डैड को ज्वाइन किया था जिनका नाम है अगम कुमार निगम और ये वो वेडिंग्स पे और लोकल शोज पे वो गाते थे और मोहम्मद रफी के हिट गाने वो गाते थे वहाँ पे।
2: बाय द वे मूवी का नाम था जानी दुश्मन।
1: जानी दुश्मन, हाउ कैन आई
2: एक अनोखी कहानी, इतनी अनोखी थी। इसमें सनी देओल, अक्षय कुमार, मनीषा कोइराला, सुनील शेट्टी और भी बहुत एक्टर थे, अरमान कोहली थे इसमें
1: जी। सो अभी जो गाना आपको सुनाने वाले हैं ये गाना इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना। एंजॉय कीजिए।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से एक गाने, आज सोनू निगम के गाने आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
1: सोनू निगम के गाने, अगर आपने इनकी कभी लाइव सिंगिंग सुनी है ना, सोनू निगम इज कैपेबल ऑफ लाइव सिंगिंग में सिंगिंग फीमेल वॉइसेस as well.
0: हाँ, एक साथ
1: मल्टीपल, एक साथ।
0: वो लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे तो उनके शो में उन्होंने वो गाया था आज की रात,
1: या फीमेल और मेल दोनों वॉइस
0: एक साथ, मतलब वो लिटरली नो ब्रेक एंड लाइक यू नो इट वाज सो गुड मैन,
1: मजा आ गया था यार। सो मतलब जो आप लिटरली सोनू निगम को देखते हो वही लाइव एक्सपीरियंस इनका रहता है। बट यहाँ इन्होंने बॉलीवुड में जो काम किया एंड मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड इनके काफी ज्यादा फैंस हैं। इन्हें ऑनर भी किया गया था 2022 में पद्मश्री अवार्ड के साथ।
0: पद्मश्री के साथ इनको किया था फेलिसिटेट। और ये ऑफिशियल हिंदी वॉइस रहे हैं डिज्नी के अलादीन में भी।
1: ओह वाओ,
0: तो डिज्नी का जो अलादीन सीरीज या मूवीज है उसके ये ऑफिशियल आवाज बने हिंदी वॉइस। और ये था लॉन्ग बिफोर ये बॉलीवुड के टॉप प्लेबैक सिंगर बने, क्योंकि ये स्पीकिंग एंड सिंगिंग वॉइस थे 1994 में अलादीन जो आई थी उसके हिंदी डब।
1: और सोनू निगम को अगर देखा जाए तो अपने ओपिनियंस को लेके वो काफ़ी वोकल रहते हैं। रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी वो आए थे बिकॉज उन्होंने अपने ओपिनियंस ओपनली बोले थे कुछ आर्टिस्ट को लेके।
0: हाँ।
1: तो उसके वजह से वो उसमें भी रहे हैं।
0: बीच में वो काफी बॉलीवुड से दूर भी चले गए थे,
1: दूर भी चले गए थे।
0: उन्होंने बोला था कि
1: मेरे लिए

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heart beat.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Weeknights you're flat out. And it's leftovers again?
5: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
4: Zesty laksa, viral tacos or a juicy steak. Ready in minutes. Take back dinner time with HelloFresh.
6: Farmer's birthday sale for Farmer's Club members is now on. Up to 50% off kitchen and dining, 50% off beds by Sleepyhead, and up to 50% off furniture and small appliances. Farmer's birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
7: Winger Motors mana raha

हम पर नाइट कैफे में अभी का साथ है, जबकि रोमांटिक थर्सडे का रोमांस का सिलसिला जारी है। अगला गाना बजाने से पहले इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। लेट 90s में अक्सर कुछ रोमांटिक फिल्में आती थी जहां पर हीरोज के नाम राहुल या फिर राजू हुआ करते थे। इसी तरह से गोविंदा ने भी अटेम्प्ट किया था, अपने कॉमेडी वाले रोल्स को छोड़कर रोमांटिक अवतार में ये नज़र आना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक फिल्म की थी, हम तुम पे मरते हैं। हालांकि ये फिल्म कामयाब नहीं थी, लेकिन ये जो गाना है उस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है उत्तम सिंह की म्यूज़िक में कंपोज की गई, ये काफ़ी फेमस हुआ था। तो इसी फिल्म से आपके लिए सुनवाने जा रहे हैं एक और एक रोमांटिक नंबर, इसे भी सुनिएगा और इन्जॉय कीजिए।

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fiber and vitamins you need to get up and go.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: हम Night Cafe on Hum.
5: हम पर नाइट कैफे लेकर मैं हूँ अभी आपके साथ में। आपको अपने सोशल मीडिया के लिए ब्यूटीफुल लोकेशंस के रील्स काटने हैं, बनाने हैं, तो ये खास आपके लिए, क्योंकि सिंडी और रुजबे आपके लिए लेकर आए हैं बाली एंड बैंकॉक गेटअवे इन मार्च 2027। तो यहाँ पर आप जाकर खूब टूरिस्ट की तरह घूम सकते हो, खूबसूरत रील्स काट सकते हो, और इसके अलावा अमेजिंग जो मार्केट्स है, बसलिंग मार्केट्स, यहाँ पर जाकर आप मज़ा ले सकते हो। इसके साथ में इनक्रेडिबल स्ट्रीट फूड का भी आप टेस्ट ले सकते हो। ये सभी कुछ आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि मार्च 2027 में आपको अकंपनी करेंगे सिंडी और रुजबे टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन इन बाली एंड बैंकॉक। तो बाली में जो एक का फेमस स्विंग है ना, इसका भी आप रील काट सकते हो, बना सकते हो खुद उस स्विंग पर बैठकर। तो इनके लिए आप सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें, और यहां से आपको एक ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस मिल जाएगा, जिसके चलते आप अपने जो फाइनेंशियल प्लान्स है ये बना सकते हैं, और इसके साथ में अपने छुट्टियों का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, जबकि एम्पल समय है आपके पास में टिल मार्च 2027 ये सभी कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एक ऐसा मौका जहां पर बाली एंड बैंकॉक आप घूम सकते हैं विद द अमेजिंग कंपनी ऑफ सिंडी एंड रुजबे।

जहां पर आप जाकर हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा जो फेसबुक पेज है हम 104.2 एफएम का फेसबुक पेज, आप इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां पर भी जो इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट्स है हम यहां पर पोस्ट करते रहते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में और इस आवा पर आपका खास स्वागत करता हूं जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ऐसे में इस आवा की शुरुआत करते हैं जबकि आपको बताने वाले हैं राज गढ़वी के बारे में जो लाइव परफॉर्म करने वाले हैं ओकलैंड में इसी शनिवार को दिस सैटरडे ऑन द 1st of August और इनको देखने के लिए आप जा सकते हैं महात्मा गांधी सेंटर यहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस है ये रहेगा और सिर्फ देखने ही क्यों इनके साथ में मिलकर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं गरबा खेल सकते हैं ये सभी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास में है हाँ लेकिन टिकट्स लगेंगे और टिकट्स के लिए जहाँ तक मैंने सुना है कि टिकट्स काफ़ी फास्ट बिक रहे हैं तो अभी तक आपने अपने सीट्स नहीं सिक्योर किए हैं तो eventstickets.co.nz पर जाइए जल्द से जल्द और यहाँ जाकर टिकट बिल्कुल ले लीजिए क्योंकि एक ऐसा मौका जहाँ पर सेलिब्रेशन रहेगा और काउंटलेस मेमरीज टू मेक ये सभी कुछ आपके पास में रहेगा इनको ला रहे हैं लोटस प्रोडक्शन साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप तो राज गढ़वी के साथ में झूमने का जो मौका है इसी शनिवार को एट द महात्मा गांधी सेंटर इन ओकलैंड बायो टिकट्स नाउ विद द वेबसाइट जी हाँ eventstickets.co.nz

हम पर नाइट कैफे लेकर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि आज है थर्सडे तो ऐसे में रोमांटिक थर्सडे है और रोमांटिक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए सॉफ्ट म्यूज़िक, सॉफ्ट लाइटिंग और साथ में सॉफ्ट सेंट यानी कि खुशबू। जो म्यूज़िक की बात जहाँ तक आती है तो हम पर हम आपका पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं, जबकि आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, और आपका साथ देते रहेंगे ठीक 12 तक।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
2: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
4: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 30

0: Night Cafe on Hum.
1: हम पर मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और चलता रहूंगा और अब समय हुआ कि आपको एक चेंज दे जहां पर आप खुद के लिए एक डबल पास जीत सके। करण ओजला का जो पीपअप कल्चा वोल टुआ है ये ओकलैंड में होने को है और ये रहेगा स्पा करीना में ऑन द 25th ऑफ अगस्त। तो ऐसे में इस मौके पर आपके लिए एक कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं, एक क्विज लेकर आए हैं जिसका जवाब देकर आप बड़े ही आसानी से अपने आप को ड्रो में शामिल कर सकेंगे। याद रहे जब भी आप जवाब लिखें तो लेटर्स के और ए ज़रूर लिखें क्योंकि ये की लेटर्स हैं। उसके बाद में अपना जवाब लिखें फॉलोड बाय योर नेम एंड टेक्स्ट मी ऑन 5599। आज के लिए बिल्कुल आसान रखेंगे। आप हमें सिर्फ इतना ही बताइए, करण ओजला ने विकी कौशल के लिए एक गाना गाया था फिल्म में, उस गाने का जो टाइटल है आपको वही लिखकर भेजना है 5599 पर। और अगर जो आप टिकट्स और साथ में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं hum.rova.nz या फिर livenation.co.nz पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अपने नाम को ड्रॉ में शामिल करने के लिए करण ओजला ने विकी कौशल के लिए एक गाना गाया है और बॉलीवुड में, और इस गाने का जो टाइटल है आपको 5599 पर जवाब में

हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि। और जबकि रोमांटिक थर्सडे है, तो अगर जो रोमांस की बात करें तो एक फिल्म आई थी धड़कन, इससे ज़्यादा रोमांटिक क्या फिल्म हो सकती है, जहाँ पर सुनील शेट्टी साथ में अक्षय कुमार ने अभिनय किया था, एक्ट किया था, साथ में थी शिल्पा शेट्टी। तो इस फिल्म को अगर जो बातें करें इस फिल्म के बारे में आपके साथ में, तो ये जो फिल्म है ये 2000 में आई थी, और इससे पहले अगर जो आपको लेकर चले तो अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म शराबी में आपको याद होगा एक एक्टर थे मुकरी, और मुकरी अगर जो आप जब भी इन्हें याद करेंगे तो एक डायलॉग था, मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी हो। तो इनके जो डॉटर है नसीम मुकरी, इन्होंने आपको शायद पता नहीं होगा, इन्होंने धड़कन में कहानी लिखी है धर्मेश दर्शन के साथ में। तो नसीम मुकरी ने बतौर एज अ राइटर फिल्म धड़कन में कहानी लिखी है, और अगर जो मैं गलत नहीं हूँ तो धड़कन में ये नज़र भी आती है एक सीन के लिए एज मिसिस मल्होत्रा, जहाँ पर ये देव को इंट्रोड्यूस कराती है इन अ पार्टी, ये कहकर कि मीट देव द न्यू फ्लेवर ऑफ द सीज़न। तो ये नसीम मुकरी है जो कि कॉमेडियन मुकरी की बेटी हैं।

नाइट कैफे में मैं हूं अभी आपके साथ में, और कुछ कम्युनिटी न्यूज़ भी है आपके साथ में शेयर कर दूं। ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है, कल यानी फ्राइडे 31 जुलाई को इवनिंग में कोटा पास 7 से इसकी शुरुआत होगी। आपको सिर्फ जाना होगा ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में, और इसके साथ में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में ये है। और साथ में लेकर आ रहे हैं आपके लिए, आयोजन करने जा रहे हैं अखंड रामायण पाठ की, जो कि सैटरडे 1 अगस्त साथ में संडे 2 अगस्त को रहेगी। सैटरडे का जो प्रोग्राम है सुबह 7 पर रोड पूजा के साथ में आरम्भ होगी, और इसके साथ में 8:45 AM पर रामायण पाठ जो है अखंड रामायण पाठ इसकी शुरुआत होगी। ये चलती रहेगी संडे सुबह 10 तक। उसके बाद में हवन और आरती भी रहेगी, महाप्रसाद सेव किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो मार्क कीजिएगा डेट्स, सैटरडे 1 अगस्त साथ में संडे 2 अगस्त को आप यहां पर जा सकते हैं 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, जहां पर है श्री राम मंदिर। और जानकारी के लिए 09836464647 पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10
5: a.m. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: Reliance Ventilation System।
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: Moisture और ventilation का problem लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
6: Oh, that's not good। हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111। Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best. Hamari good brands nahi hai.
0: Night Cafe.
11: हम पर नाइट कैफे की महफिल लगाए हुए मैं हूं अभी आपके साथ में, और यहां पर हम पर आपके लिए अलग अलग जरिया है जहां पर आप हमें सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सुनने के लिए हम 104.2 एफएम है जहां पर आप अभी हमें सुन रहे हैं, इसके साथ साथ रोवा ऐप है जहां पर आप हमें देश के किसी भी कोने पर में सुन सकते हैं, इसके साथ साथ हमका जो फेसबुक पेज है हम 104.2 एफएम, यहां पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट्स है आपके लिए हम डालते रहते हैं। इसके साथ अगर जो वापस हम बातें करें रोवा की, तो यहां पर आपकी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए हम म्यूजिक स्टेशन हैं जहां पर 60s और 70s के गाने हैं जो हम रिवाइंड के नीचे हैं। इसके अलावा 80s के जो आपके फेवरेट नंबर्स हैं, हम 80s जुक बॉक्स पर आप इसे पाएंगे। इसके साथ साथ फिजी के जो भजन हैं, इसे भी आप सुन सकते हैं। इनका एक अलग प्लेटफॉर्म है फिजी भजन करके। इसके साथ साथ में जो पंजाबी हिट्स है पंपिंग नंबर्स आप सुनना चाहते हैं, चर्दी कला के नीचे आप इसे सुन सकते हैं। और इसके अलावा फिजी कीर्तन संग्रह भी है जहां पर फिजी के प्रमुख आर्टिस्ट की आवाज़ों में जो भक्ति रस कीर्तन है इसे आपके लिए स्टोर किया गया है। और राहत फ़तेह अली खान की अलग फैन फॉलोइंग है, तो इसको ध्यान में रखकर इनके गाए हुए सूफी और कव्वालियों को भी यहाँ पर रखा गया है। ये सभी कुछ है आपके लिए खास हम म्यूज़िक स्टेशंस पर, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
0: बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो, बधाई

सर्दी भरे रातों में हम पर नाइट कैफे का सिलसिला जारी है और 11 पर आपके लिए न्यूज भी रहेगा और फिर उसके बाद में उड़ान भरेंगे अपने आखिरी हवा का जो कि 12 तक आपके साथ में रहेगा।

0: Night Cafe on Hum. You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में यह है नाइट कैफे का सिलसिला और यह है फाइनल आवर ऑफ द शो जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस आवर की शुरुआत करते हैं एक और एक कम्युनिटी न्यूज़ के साथ में जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भारत को छोड़ते हैं तो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है लेकिन अब आपके लिए मेघ उत्सव का मौका रहेगा जहाँ पर इंडिया की मानसून फेस्टिवल को आप धूम धड़ाके के साथ ऑकलैंड में सेलिब्रेट कर सकेंगे। एक ऐसा फेस्टिवल जिन्हें आप अपनों के साथ में बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट कर सकेंगे। ऑन द 8th ऑफ ऑगस्ट ये डेट मार्क कर लीजिए। ऑन द 8th ऑफ ऑगस्ट एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल यहां पर 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक आपके लिए मेघ उत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा और जो हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट्स यहां पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगे साथ में फूड स्टॉल्स रहेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए उनका खुद का डेडिकेटेड कोना और गेम्स एंड एक्टिविटीज फन फॉर ऑल एजेस ये सभी कुछ करने का मौका है और अगर जो आप इनसे नहीं खुश हुए तो शॉपिंग करने का भी आपको एक मौका दिया जाएगा। ये सभी कुछ मेघ उत्सव के दौरान ऑन द 8th ऑफ ऑगस्ट एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल 4:30 PM से जो इवेंट है ये शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्री एंट्री है आपके लिए।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आपको बता दूँ कि अगर जो आपको एक ऐसे रास्ते की तलाश है जहाँ पर आपको सुकून चाहिए, इसके साथ साथ में आप ढूंढ रहे हैं अपना लक्ष्य पाने की रास्ता, तो खास आपके लिए चिन्मय मिशन आपको इनवाइट करती है भागवत गीता डिकोडेड एक मास्टर क्लास में, जहाँ पर वेदांत जो रहेंगे टीचर श्री ईशान चैतन्य जी, ये आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा इंटरेक्टिव सेशन जहाँ पर अगर जो आप चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो ये मौका खास आपके लिए है। फ्राइडे 7 अगस्त को आपको सिर्फ जाना होगा न्यूलिन कम्युनिटी सेंटर में एट द मेन हॉल 45 टोटारा एवेन्यू न्यूलिन में, और यहाँ पर 7:30 PM से जो प्रोग्राम है ये शुरू होगी टिल 9 PM तक आपके लिए रहेगी। एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाइए www.chinmaya.org.nz, याद रहे www.chinmaya.org.nz पर जाकर आप रजिस्टर हो सकते हैं।

0: Night Cafe on Hum.
1: हम पर यह है नाइट कैफे और मैं हूं अभी आपके साथ में जल से बातें कर लेते हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट की, जहां पर सिंडी और रुजबे अक्सर कम्युनिटी से ही, हमारे बीच में से ही, ऐसे ही एक पर्सन को लेकर आते हैं, पर्सनालिटी को लेकर आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ऐसी बातों को बता सकते हैं जिन्हें सुनकर हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ब्रेकिंग बैरियर्स एक ऐसा अनफिल्टर्ड का पॉडकास्ट है जहां पर शनि लाल ने बातें की हैं LGBTQ को लेकर, उनके राइट्स को लेकर। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किए हैं कि कैसे कम्युनिटी में उनको एक साइकिज्म का सामना करना पड़ता है जहाँ पर लोग इनको ताने देते हैं, और कैसे अपने हिम्मत से, मनोबल से ये उन सभी ऑब्स्टिकल से ऊपर उठकर आते हैं। कहीं ना कहीं हम कॉमन लोगों का ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, बस इसी सवाल का जवाब इस पॉडकास्ट में है। आपको सिर्फ जाकर चेकआउट करना है, और इसको सुनने के लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें, आपको पूरा का पूरा ऑडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ब्रेकफास्ट केचअप, आप मिस कर देते हैं जो ब्रेकफास्ट शो है इसे, तो ब्रेकफास्ट केचअप खास आपके लिए है। आपको सिर्फ BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करना है।

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था, जबकि 8 बजे से आपने हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वापस मिलेंगे सैटरडे मॉर्निंग को, जबकि आपके लिए लेकर आएंगे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो, इसका भी हमें पूरा इंतजार रहेगा। लेकिन इन बिटवीन अभी से लेकर सैटरडे मॉर्निंग तक आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। डू टेक केयर, बाय।

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप तो
3: आए आए बताओगे।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: Flight on Hum.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी को बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप तो
3: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
5: Business फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: राइट नाउ योर टीम कुड बी विनिंग, स्प्रिंटिंग, पिचिंग, किकिंग, सिन बिनिंग, एंड यू नीड टू नो अबाउट इट।
8: Join
7: the Tribe! The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
8: join the Tribe!
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Flight on Hum.
1: Yo ho, I experienced that too.

0: Sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
1: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
0: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event. Today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
2: अपने घर को रेडी कीजिए माइट 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइट 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन। चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स, सेलेक्टेड नए ओमुडा और

0: flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner.

0: put down after breaking her leg in a race at Addington on Wednesday.
1: The findings of an external review into the fatal landslide at Mount Maunganui Holiday Park is due to be completed today. It will cover off circumstances leading up to the slip, decision-making at the time and lessons learned. It will be released publicly by August 21st, with Mayor Mahi Drysdale saying they recognise there is significant community interest in the tragic event. Boaties are being urged to act responsibly after a surge in worrying habits up north. The Regional Council has noticed some larger recreational vessels carving damaging wakes. Deputy Harbour Master Peter Thomas says high-powered LED lights are also causing issues.
2: We need to be able to see navigation lights so we can tell which direction vessels are going. And if they're coming towards you with these light bars on, you're completely blind.
1: The death toll from a powerful earthquake in Japan has risen to 34. Rescuers are working to find survivors 2 days on from the tremor as the country swelters in intense heat. In sport, 4 medals for New Zealand in track cycling at the Commonwealth Games in Glasgow. Sighted pilot Jesse Hodges and Emma Foy had to pick themselves up from a crash to win gold in the Parasport B tandem sprint on Sky Sport.
3: Yeah, we were definitely pretty sore, but we were saying after we won gold, we don't feel so bad now.
1: The women's team pursuit secured silver, while the men's pursuit claimed bronze. Nicole Murray also took bronze in the Parasport C45 individual pursuit. New Zealand now has 18 medals in total, 4 gold, 8 silver and 6 bronze.
4: Sports News.
5: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
6: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
7: Suchit kiya jata hai ki Arishma Aarti, रोनील नारायण तथा स्वर्गीय अवनील नारायण की मां नारायण सामी की पत्नी यानी पापाकुरा की ईश्वरी सामी की मृत्यु मिडिल मॉ हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार को दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी या श्रद्धांजलि के लिए आप रोनील को 02111665111 पर कॉल कर सकते हैं या 51 बाउंड्री रोड पापाकुरा जा सकते हैं। याद रहे अरिश्मा आरती रोनील नारायण तथा स्वर्गीय अवनील नारायण की मां यानी नारायण सामी की पत्नी पापाकुरा की ईश्वरी सामी की मृत्यु मिडिल मॉ हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार को दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बॉल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी या श्रद्धांजलि के लिए आप रोनील को 02111665111 पर कॉल कर सकते हैं या 51 बाउंड्री रोड पापाकुरा जा सकते हैं।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
5: जबरदस्त हिट्स
8: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
5: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
8: हम
5: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: इस समय आपको याद दिला दें कि इतने दिनों से बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे वेंसडे से खूबसूरत साफ और सुहाना मौसम हमने एक्सपीरियंस किया। आज के लिए कहा जा रहा है लिटिल बिट ऑफ क्लाउड, पीरियड्स ऑफ शावर्स, रेन जो ये हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। और आज सनसेट होगा 5:36 PM पर, सनराइज होगा 7:20 AM पर। टेम्परेचर जो है आज ओवरनाइट 8 degrees एंड हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर।
5: द ब्रेकफास्ट शो विद वीटे एंड पूजा
9: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मंको, इंग्लिश हेरिटेज inspired furniture for everyday luxury living.
5: Breakfast catch up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
7: Hello Kira, good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aaj hai Friday, 31st of July, the final day for this month, the 7th month of 2026. 2026 का सातवां महीना भी खत्म हो गया। जस्ट इमेजिन, मतलब कितने ही रफ्तार से ये समय जो है भाग रहा है, ये साल भाग रहा है। आई हैव नो आइडिया, आई जस्ट डोंट रियलाइज कब सुबह होती है, कब शाम होता है, कब एक महीना खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सो फास्ट इट्स गोइंग। और अगर आप भी मेरी तरह इसी बोट में हैं जहाँ पर आपको भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब लाइफ अच्छी चल रही है यार। क्योंकि अगर एक एक दिन जो है ये आपको फील हो रहा है कि बहुत लंबा गया यार, बहुत जल्दी बहुत धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बट वट एवर द सिचुएशन इज, यू हैव बीन एंजॉयिंग योर 2026 सो फार। आपका ये साल जो है अच्छा गया। उम्मीद है कि बाकी के जो आने वाले महीने हैं, दिन हैं, ये आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और इसी उम्मीद के साथ

आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा, मैं पूजा आ गई हूँ आप सभी का साथ देने के लिए 104.2 FM या रोवर ऐप पर. फिलहाल अगर आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए, आप सभी की कंपनी के लिए. भाई मौसम में कह सकते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर जो है ऊपर तो जा रहा है, लेकिन लोगों की तबीयत जो है ये थोड़ा धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है. यहाँ हमारे हम पर भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो स्लोली आर कमिंग अंडर द वेदर. एंड अगर आपका भी सेम सिचुएशन है, जस्ट अ थिंग, जस्ट अ रिमाइंडर, अपना और अपने का ख्याल रखे ऐसे मौसम में. कीप योर सेल्फ वार्म. जो भी ज़रूरी आपके विटामिंस वगैरह हों, इम्यूनिटी बूस्ट्स आपको लेने हैं, तो कीप दैट अप टू डेट. अपना फ्लू जैब वगैरह अगर आप लेते हैं, कीप दैट अप टू डेट, ताकि ऐसे मौसम में आपकी तबीयत पर इसका असर ना पड़े, आपके अपनों की तबीयत पर इसका असर ना पड़े. नेवरदलेस शुरुआत कर रहे हैं आज के हमारे ब्रेकफास्ट शो के सफर की ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ. ऑल यू नो की शुरुआत होती है एक हैप्पी न्यूज सनी साइड अप में. आपके लिए आज की हैप्पी न्यूज, आज का सनी साइड अप स्टोरी कमिंग अप वेरी शॉर्टली.

0: Sunnyside Up. तो आज की सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए हैं समथिंग वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. अक्सर अगर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे या कुछ ऐसा सिचुएशन लाइफ में फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उस जगह की उस शख्स की पहचान जो है सिचुएशन से उस गलती से हो जाती है. बट इमेजिन कि अगर आप अपने हालात को अगर बदल दो और आपकी पूरी की पूरी पहचान बदल जाए तो कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात होगी, है ना. आज की सनी साइड अप इंस्पायरिंग स्टोरी इज़ ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. इंडिया में महाराष्ट्र जो स्टेट है यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है आदाचीवाड़ी. और आदाचीवाड़ी जो है इसने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है. There was a time जब इस गांव को जाना जाता था यहाँ पर जो ड्राउट आया था उसकी वजह से, मतलब इट वॉज सच अ ड्राई ड्राई विलेज. और अब इन्होंने इसे एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी में बदला है कि पूरी दुनिया में इनके बारे में बातें हो रही है. इनफैक्ट इमेजिन इंडिया महाराष्ट्र में ये छोटा सा गांव आदाचीवाड़ी जहाँ पर आई हैव नेवर बीन, पर यहाँ न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के शहर में बैठे बैठे रेडियो पर आपसे मैं इस गांव के बारे में बातें कर रही हूँ. दैट्स हाउ पॉपुलर दे हैव बिकम. नाउ इनके बारे में ये बात सामने आई कि इन्होंने अपने आप को इस तरह से बदला कि फ्रॉम अ ड्राउट प्रोन विलेज वो अब एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन चुके हैं ऑफ अ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट. आज इस गाँव में 100% प्लास्टिक फ्री हो चुके हैं सभी. यहाँ पर किसी भी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता. दे आर पावर्ड बाय सोलर एनर्जी और एक स्ट्रिक्ट वेस्ट सेग्रीगेशन रूल जो है यहाँ पर फॉलो होता है ताकि जो गीला यू नो कचरा है या सूखा कचरा है इसे अच्छी तरह से सेग्रीगेट कर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए जहाँ पर रिसाइकल रीयूज रिड्यूस हो सके. और साथ ही साथ यू नो जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये प्रॉपर तरीके से इस गांव में हो सके. यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने कहा है कि इनके पास एक एक्सेस है टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल होता है एक स्मार्ट कार्ड बेस्ड वाटर ATM सिस्टम. ATM जो है नॉर्मली पैसों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पर इस गांव में ये वाटर ATM सिस्टम का इस्तेमाल होता है ताकि पानी की भी बर्बादी ना हो. और एक गवर्नमेंट स्कूल है विच हैज़ गॉन डिजिटल नाउ. इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जहां पर यू नो सीखने सिखाने को और भी एंगेजिंग और भी आसान कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए. बट व्हाट ट्रूली मेक्स आदाचीवाड़ी एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट इज द विलेजेस हियर जिन्होंने एकजुट होकर एक साथ मिलकर अपने गाँव की पहचान जो है ये बदली है. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ लोकल अथॉरिटी यहाँ के गाँव वालों ने हर एक चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली. रेगुलरली एक साथ एकजुट हुए फिर अपने गांव के सड़कों को साफ किया, वहां की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नोट किया, उन पर काम किया और रियल बदलाव जो है ये लेकर आए हैं अपने इस गांव में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये समझते हुए. आज अगर देखा जाए तो ये गांव आदाचीवाड़ी जो है इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ मॉडल ऑफ अ सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंट विलेज अक्रॉस इंडिया. और इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया है कि जब एक कम्युनिटी एकजुट होती है तो कैसे रिमार्केबल चीज़ें जो है ये कर सकती है. Isn't that inspiring? Isn't that amazing? तो आज की ये सनी साइड अप स्टोरी उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छा कुछ खूबसूरत आपको भी सुनने को और सीखने को मिला हो. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ. Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Here for easy dinners. Game watching snacks and last minute ingredients. When you need it now, get it delivered to your door. Just download and order on the Foursquare Now app. Foursquare, what'll it be today? Select stores only.
5: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
7: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
8: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
9: Maddie didn't think she needed a DVS system.
10: I've got a heat pump.
9: That should do.
10: But it didn't do it, did it, Maddie?
9: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
10: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
2: Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Global Headlines.
0: ग्लोबल हेडलाइंस में आज सबसे पहले जापान में आई अर्थक्वेक में कहा गया है अभी तक मरने की लोगों की संख्या जो है ये बढ़कर 13 हो चुकी है. बताया जा रहा है कि पावरफुल अर्थक्वेक जो कि जापान के कुआमोटो के इलाके में आया है जिसकी वजह से करीबन 13 लोगों की जानें जो है ये जा चुकी है. रेस्क्यू टीम्स अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं ताकि सर्वाइवर्स की जाँच जो है ये की जा सके, उनकी मदद की जा सके. आफ्टर इस अर्थक्वेक की वजह से बहुत से बिल्डिंग्स, रास्ते और डैमेज तो हुए हैं लेकिन बहुत सी सर्विसेज जो है ये भी डिस्रप्ट हुई है जिनमें ट्रेन सर्विसेज भी शामिल हैं. हजारों की संख्या में लोगों को अपने घरों को इवैक्यूएट भी करना पड़ा है. भारत की खबरों में कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियन डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपना MBBS डिग्री तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन अब दे आर एक्चुअली अनएबल टू टेक फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स क्योंकि उनके कॉलेजेस ने जो रिक्वायर्ड इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट नहीं किया था. जिसके बाद चलकर कई ऐसे इंडियन डॉक्टर्स हैं जो कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अपनी निराशा जरूर दर्शा रहे हैं. कहा जा रहा है अन्य खबरों में कि अवार्ड विनिंग एक्टर या ऑस्कर विनिंग एक्टर 30 Seconds to Mars के फ्रंटमैन जेरेड लेटो के बारे में कुछ बातें सामने आ रही हैं जहां पर इनके ऊपर क्रिमिनल सेक्सुअल मिसकंडक्ट की चार्जेस जो है ये एक्विजेशंस जो है ये लगाए गए हैं. अभी तक चार महिलाओं ने ये कहा है कि वो दरअसल एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट का शिकार हुए जेरेड लेटो के हाथों और ये महिलाओं ने कहा है कि ये जो इंसिडेंट्स है ये दरअसल तब हुए थे जब वो अपनी टीनेज उम्र में थे. बताया जा रहा है कि ये जो एलिगेशंस हैव नॉट येट बीन प्रूवन इन कोर्ट. फिजी की खबरों में कई बातें सामने आ रही हैं कि पार्ट्स ऑफ लोटोका में कुछ रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने वहां पर हो रहे ड्रग डीलिंग और ग्लू स्निफिंग के मामले को लेकर अपने चिंताओं को व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत एक बड़ा कंसर्न है जो आए दिन इनके इस सेटलमेंट में बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा है कि डिस्कार्टेड नीडल्स जो है ये उनके इलाकों में पाए गए हैं जिसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न्स पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं खासतौर पर बच्चों के मामले में. पुलिस ने कहा है कि जब वो पुलिस पेट्रोल इस मामले में कर रहे हैं तो इसकी वजह से वहाँ पर ड्रग सेल्स जो है ये कम ज़रूर नोट या इसमें कमी ज़रूर नोट की गई है. रेसिडेंट्स ने कहा है और लोगों से मांग कर रहे हैं टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी कम्युनिटी में कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो उनके लिए या उनकी कम्युनिटी के बच्चों के लिए सही नहीं है. तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार.
2: अपना A-game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो चलिए बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है लेटेस्ट इसके भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आई गॉट अ चांस टू वॉच द मूवी रामायण का जो ट्रेलर, याद है आपको मैंने कल इसके बारे में बताया था कि रिलीज़ होगी ना, तो कल लेटर इन द डे रिलीज़ हुआ एंड मैंने बाद में देखा भी। मैंने सोचा चलो सबसे पहली जो खबर है बॉलीवुड की इसके बारे में ही बातें कर लेते हैं। आई हैड रेड अ रिव्यू जो बॉलीवुड हंगामा पर रिपोर्ट किया गया था, पर मैंने ट्रेलर जो है ये देखने से पहले रिव्यू पढ़ा, उसके बाद मैंने ट्रेलर देखा एंड आई मस्ट से कि टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद वट एवर देव रिटन, क्योंकि ये जो ट्रेलर आप देखोगे 4 मिनट का है मेरे ख्याल से, और इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ मेरे लिए, ओ शुड आई से नॉट आई कैचिंग चीज़ बट सबसे ज़्यादा आई कैचिंग कैरेक्टर और द एक्टर जो था वॉज नन अदर देन यश। वो मुझे बहुत पावरफुल लगे इन द पोर्ट्रेयल ऑफ रावण जो उन्होंने किया, एंड आई मस्ट से कि ही इज़ स्टीलिंग अ लॉट ऑफ स्पॉटलाइट। अभी ट्रेलर में तो ऐसा ही दिख रहा है, हो सकता है मूवी में भी ऐसा हो या यू नो समथिंग डिफरेंट हो, बट ही लुक्स अमेजिंग और वो सच में आपका अटेंशन पूरा का पूरा उन पर जरूर जाएगा, उनका इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस आपको जरूर अच्छा लगेगा। सो इफ यू हैवन्ट सीन द ट्रेलर आप जरूर देखिएगा, ये रिलीज हो चुका है जिसमें रणबीर कपूर लुक्स क्वाइट काम एंड डिग्निफाइड एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी जो कि माता सीता का रोल प्ले कर रही है वो भी बहुत ग्रेसफुल और कन्विंसिंग लग रही है, और ऑफ कोर्स इस ट्रेलर में आपको लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे, अरुण गोविल, विवेक ओबरॉय ये सब दिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि एक बहुत ज़रूरी किरदार निभा रहे हैं और वो है सनी देओल जो कि हनुमान जी की रोल में जो है ये दिखेंगे, तो उनको तो कहीं भी ट्रेलर में देखने को नहीं मिला अभी तक। लेट्स सी अगर बाद में चलकर यू नो पार्ट टू का कोई ट्रेलर आता है तो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, बट सो फार इट लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। बहुत अच्छे ग्रैंड विजुअल्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं इस ट्रेलर में, एंड वंस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी देखने के बाद आपका जो भी रिस्पॉन्स हो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा, या अगर आपने देख लिया है तो आपका क्या फीडबैक है वो भी आप मुझे 5599 पर टेक्स्ट करते हुए जरूर बता सकते हैं। बाय द वे याद रहे कि नितेश तिवारी जो है ये इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, और कैरेक्टर्स के बारे में कौन क्या प्ले कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसकी कहानी मतलब इस रामायण का जो संगीत है म्यूजिक है ये हैंस जिमर और साथ में अय्यर रहमान जो है ये कंपोज कर रहे हैं। दो पार्ट्स में ये रिलीज होगी, पार्ट वन दिवाली इस साल 2026 में ये एक रिलीज होगी और पार्ट टू अगले साल यानी 2027 की दिवाली के दौरान जो है ये रिलीज होगी। और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स बॉलीवुड से आपके नाम हम करते रहेंगे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। थोड़ी देर बाद आज का पहला सवाल ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Hey, देखो आ गए।
2: Accurate traffic.
3: Kitchen mania. 17th birthday.
4: The chance of showers should stay mostly fine today. Got a high of 16 degrees. Into the city, we're just starting to slow a little bit on the southern motorway, but otherwise we're really good. Southern, little slow at Manurewa and through Papatoetoe. 21 minutes Manukau to town. 32 all the way from Drury. Northwestern, just 16 minutes in from Massey. A little bit of traffic here and there. And northern, the same 16 Constellation to town.
3: You could win 10K when you order your new Kitchen Mania kitchen. T's and C's apply.
5: Winger Motors Manara.

0: Offer 31st July. T's and C's apply.
1: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance centre sale event today till Sunday.
2: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
1: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance centre, 9 Sylvia Park Road.
3: Good news, tradies! It's Saturday. Mitre 10 Mega Botany IA for a free sausage. Supplier demos on site or giveaways. Range, convenience, or aapki trade ki har zarurat. Saturday morning trade breakfast, subah 8 se dupair 12 baje tak at your locally owned Mitre 10 Mega.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
5: Breakfast catch up.
7: आज है फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई एंड द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम पर। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच आपके साथ और समय के लिए, या फिर अगर आप रोवा ऐप के जरिए हमें दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं शुक्रिया आप सभी के साथ के लिए, आप सभी के समय के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट कैचअप ऑन ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और कैचअप जबकि आपके साथ हो रही है कई तरह की चीज़ों की तो आपके साथ भी कर लेते हैं हर सुबह की तरह। आज भी हमारे पास आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए हर सुबह हमें याद करने के लिए। मिस्टर माटामाटा है, विनीता जी है, ऑफ कोर्स बॉबी मान जी, आपका भी मैसेज आ रहा है। संजेश थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं जब भी आपको समय मिलता है। अभी दो तीन रोज से आपके मैसेजेस आ रहे हैं। विमलेश प्रिया भी हमें मैसेज करते रहते हैं, थैंक यू आप सभी के साथ के लिए। बाय द वे सुख एंड खुश आपको स्पेसिफिकली हम याद करना चाहते हैं, आप दोनों भी हमारा साथ जो इतने दिनों से दे रहे हैं आपके भी साथ के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मैंने कहा था कि इस घंटे का पहला सवाल ये आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, और सवाल बड़ा सिंपल सा है। आज आपको हमें किसी भी ऐसी बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना होगा जिसका टाइटल इंग्लिश में हो, ठीक है? ऐसी कोई एक हिंदी फिल्म जिसका टाइटल इंग्लिश में हो। एग्जांपल के रूप में फिल्म तो हिंदी है लेकिन नाम जो है इसका ये इंग्लिश है, विच इज मॉम। अगर आपको याद हो जिसमें श्रीदेवी ने काम किया था, मॉम, मॉम इज ए इंग्लिश वर्ड इजंट इट, और फिल्म तो हिंदी है, कहानी तो उसकी हिंदी है। तो बस उसी तरह से आपको किसी भी एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना है जिसका टाइटल इंग्लिश में हो, एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग हमारे पास क्या कुछ आंसर्स जो है कि भेजते हैं। आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है अपने आंसर्स भेजने के लिए। 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब भेजिएगा, थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस हम जरूर देखेंगे।
8: As

द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में विशाल ददलानी की बड़ी ही पावरफुल आवाज, लेकिन एक रोमांटिक अंदाज में आपने सुना आज. फिलहाल हमने जो सवाल पूछा है आंसर्स कई आ रहे हैं, उसके एग्जांपल के रूप में हमने जो जवाब दिया था वो भी कुछ लोग भेज रहे हैं. पर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, ऐसी एक बॉलीवुड फिल्म जिसका टाइटल इंग्लिश में हो आपको बताना है. तो कई लोग अपने अपने आंसर्स भेज रहे हैं. राकेश जी है पापा टोटो से, इन्होंने कहा है थ्री इडियट्स. प्रिया ने कहा क्वीन. अमित ने कहा है रॉक स्टार. नेहा ने माउंट रॉस्की से डॉन लिखकर भेजा है. और सनी है जिन्होंने कहा है वेलकम वेलकम बैक. और उसके साथ साथ किक इमरान आपने भेजा है. मीना ने बॉटनी से मैसेज किया है सेइंग फैशन. आई मस्ट से आज बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं यार, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट जवाब आप हमारे पास भेज रहे हैं. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. तो इसी तरह से आप भी हमारे पास अपने आंसर्स भेजते रहे. अनदर टू मिनट्स और देते हैं आपको, जिसके बाद हम रैपअप करेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. और जितने मैसेजेस आएंगे थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, हम शाउट आउट भी आपको जरूर देंगे. फिलहाल ऐसी कौन सी बॉलीवुड फिल्म है जिसका टाइटल इंग्लिश में है ये आपको मैं बताना है. 5599 पर मैसेज आपने भेजे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगी कि एक बड़े अमेजिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड, और इसी वीक सैटरडे को उनका जो इवेंट है ये होने जा रहा है. अब कल जब ये इवेंट इनका होने जा रहा है, आपने अगर अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो क्या करना होगा टिकट्स लेने के लिए, कहाँ से टिकट्स लेने, ये सारे डिटेल्स कमिंग अप वेरी शॉर्टली.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic.
2: Maritin Mega Botany Trade.
3: Mostly fine, a bit of cloud, possible showers, 16 hour high. Coming into the city, southern starting to slow down a touch, 25 minutes Manukau to town at 40 in from Drury. Slow Papakura to Manurewa at Papatoetoe and Mount Wellington. A little bit of traffic heading to the airport terminal on George Bolt. Northwestern, 20 minutes in from Massey, just slow from Greylin. And northern, slowing at Glenfield at 17 in from Constellation Drive.
2: Maritin Mega Botany Trade event Saturday. Stock up on great deals and meet the suppliers.
4: Professional Financials has saath aapke loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: Get 70% off selected stock at Spa World's Clearance Centre sale event today till Sunday.
7: There's thousands off display models, scratch and dent, and end-of-line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first-come basis.
6: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's Clearance Centre, 9 Sylvia Park Road.
8: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
9: The sleepless nights. The aching knees. The energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: Throwback.
12: फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई की ये सुबह आप सभी के नाम ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम कर रहे हैं द फाइनल डे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को अगर आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी शादी की सालगिरह इट्स अ स्पेशल डेट फॉर यू बिकॉज समथिंग स्पेशल आज ये तारीख आपके लिए होल्ड करता है अगले घंटे विश भी करेंगे हैप्पी बर्थडे आपको तो वो भी रहेगा थोड़ी देर बाद पर इससे पहले रिमेंबर मैंने बताया था कि एक शख्स आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड अपना बड़ा ही कमाल का शो लेकर और इनका शो कल यानी 1st of August को होने जा रहा है जिसका हिस्सा आप बेशक बन सकते हैं अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है तो आपको बता दें राज गढ़वी ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड और इनका बहुत ही अमेजिंग जो वाइब्रेंट एनर्जी है ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनके साथ गरबा डांस जो है ये करते हुए यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस रिच कल्चरल सेलिब्रेशन एंड यू कैन डांस द नाइट अवे अपने लव्ड वंस के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऑल थैंक्स टू लोटस प्रोडक्शंस श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता एंड प्रांश ग्रुप तो ये बहुत ही अमेजिंग वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गरबा सेलिब्रेशन है जो कल फाइनली होगा द सेंसेशनल राज गढ़वी के साथ एट महात्मा गांधी सेंटर कुछ ही टिकट्स बाकी हैं और कुछ जब मैं बोल रही हूँ तो एग्जैक्टली कितने वो मैं आपको नहीं बता सकती बट इतना ज़रूर पता है कि इवेंट कल है तो ज़्यादा टिकट्स नहीं है आज इफ़ यू वांट टू चेक इफ देयर इनफ टिकट्स अवेलेबल फॉर यू events tickets.co.nz आप विजिट करें टिकट्स ग्रैब कीजिए या स्वप्निल शाह को 022-439-4736 पर आप कॉल करते हुए डिटेल्स हासिल कर सकते हैं वंस यू ग्रैब द टिकट्स बी रेस्ट एश्योर्ड कि आप भी इस शो का मजा उठाएंगे राज गढ़वी के साथ कल एट महात्मा गांधी सेंटर नाउ दूसरी ओर मैंने आपसे सवाल भी किया था आपको बताना था कि वो कौन सी बॉलीवुड फिल्म है जिसका टाइटल इंग्लिश में है। कई लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे। राज ने हमारे पास फैशन लिखकर भेजा था, किरण जी आपका भी मैसेज आया, आपने भी हमारे पास क्वीन लिखकर भेजा है, और साथ में अंजलि आपने भी मैसेज किया है, यू आल्सो रिटन क्वीन। थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं बॉलीवुड की जो अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में जिनके टाइटल्स हैं, नाम है उनका। सो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। अगले घंटे मॉर्निंग मैडनेस शुरू करेंगे। मॉर्निंग मैडनेस में दिन कैसा बीतेगा आपके हॉरोस्कोप्स के हिसाब से राशि वाइब्स में जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज फ्राइडे है और आज के मौसम के लिए कहा गया है कि आज क्लाउडी पीरियड जरूर रहेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ शावर्स बिफोर द डॉन, और आज हल्की हल्की हवाओं का साथ भी बना रहेगा. सनसेट 5:36 PM पर, सनराइज 7:20 AM पर, यानी कि इसी घंटे होगा. ओवरनाइट टेम्परेचर जबकि 8 degrees रहेगा, तो हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: Hello, Kiora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aapke liye on the Breakfast Show with Vijay and Pooja, hum lekar aa rahe hain. Aaj ka hamara Morning Madness ka safar is ghante. Aapke liye Morning Madness mein definitely kaafi cheeze rahengi. 7:30 par news headlines ke liye taiyar rahiyega. We'll find out kya kuch latest ho raha hai khabron ke mamle mein in New Zealand. Aur uske saath saath aaj ka hamara Celebrity Alarm kal bada hi interesting raha jab hum aapke liye Celebrity Alarm lekar aaye the. Humne jaise ki aapko bataya bhi tha, gine chune logo ne hi pehchani wo awaaz jo ki thi बमन ईरानी की. और जितने लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे, थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए भी. और साथ ही साथ आज देखेंगे कि क्या आप आवाज़ पहचान पाते हमारे सेलिब्रिटी की इन सेलिब्रिटी अलार्म, या फिर फॉर द वीकेंड मेरे को एक ब्रेक मिलेगा और मंडे को वही आवाज़ आपके लिए लेकर आएंगे. विल सी हाउ इट गोज, राइट. बट ऑन द अदर हैंड ये मत भूलिएगा कि इसी घंटे आपको देंगे एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी. करण औजला आ रहे हैं भाई सुपर सिटी ऑकलैंड 25 अगस्त को अपना धमाकेदार पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर. अगर आपको भी इनको विटनेस करना है स्पार्क रीना, तो टिकट्स के लिए hum.rover.nz या livenation.co.nz विजिट कर लीजिएगा. ग्रैब योर टिकट्स. बट इफ यू वांट टू विन सम पासेस विद अस ऑन हम, तो सुनिएगा इस घंटे ये मौका आपको हम जरूर देंगे. सो तैयार रहिएगा, इस घंटे मॉर्निंग मैडनेस यहां पर आपके लिए जरूर जारी रहेगी.

0: राशि वाइब्स।
1: आज का दिन कैसा बीतेगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप्स, आपके राशि वाइब्स में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज मेष यानी एरिस, आपके लिए कहा गया है कि कोई बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस आज आपके साथ होगा, जिसकी वजह से पूरा दिन तो बहुत अच्छा बीतेगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे रिजल्ट्स आप हासिल करेंगे दैट विल डेफिनेटली मेक यू फील दैट फाइनली यू हैव डन इट। किसी बड़ी समस्या से आज आपको छुटकारा भी मिलेगा एंड दैट विल ऑल्सो बी अनदर रीजन ऑफ यू बींग सो हैप्पी टूडे। पुराना रोग उभर कर वापस परेशान करेगा, इसीलिए तबीयत पर ध्यान दे, खुद का ख्याल रखे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ वाइज परेशान कर रही है, तो उन्हें जितना जल्दी हो सके एड्रेस कीजिए। वैसे वृष ने टोरस, आपके लिए कहा गया है कीमती चीज़ों को संभाल कर रखें, और उसके अलावा आपके लिए बताया गया है कि आज काफ़ी बिजी रहेंगे आप। इनफैक्ट इतना बिजी रहेंगे कि कब आपका समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई अगर आप नहीं चाहते कि कुछ काम बने, कुछ काम बिगड़े, कुछ काम हो, कुछ काम ना हो, मतलब यू वांट एवरीथिंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान, तो अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एक प्लान जरूर बनाएं कब क्या कैसे करना है। आपको एक सलाह भी दी जा रही है आपसे कि आपको कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि आज आपके उम्मीदें शायद पूरी नहीं होंगी, और जब ये पूरे नहीं होंगे तो इससे होगी आपको परेशानी, दिक्कत होगी, और हो सकता है कुछ नाराजगी भी कुछ लोगों के टुवर्ड्स हो, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो फोकस कीजिए खुद पर, जितना लोगों से कम उम्मीद रखेंगे आज उतना आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन यानी जेमिनी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। इनफैक्ट काफी फायदा होगा, हैप्पी रहेंगे आप रिजल्ट्स ऐसे पाकर। डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है, जिससे काफी फायदे के मौके हाथ लगेंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है, यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन टुडे। और आज आपके लिए कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, एकदम पीछे पड़े हैं आपके, तो इनसे थोड़ा केयरफुल रहना है। जितनी दूरी हो सके बनाए रखें, फायदा आपका इसमें रहेगा। कर्क यानी कैंसर, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है अगर आपका खुद का बिजनेस है तो। यू आर वर्किंग क्वाइट हार्ड अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आज वो दिन है जहां पर अगर कुछ जरूरी फैसले लेने हो तो गेट दैट डन, ताकि आपको और भी फायदा हो भविष्य में चलकर। दूसरी ओर कहा गया है कि रिस्क उठाने की हिम्मत आज आप में जरूर आएगी। कुछ काम होते हैं जो बिना रिस्क उठाए आप नहीं कर पाएंगे, एंड टुडे इज वन ऑफ दोज डेज एंड दोज रिस्क्स आर इन्वॉल्व्ड, जिसके लिए आपको अच्छी तरह से फैसले लेकर ये करना होगा। लंबे समय से रुका हुआ काम भी एक रफ्तार पकड़ेगा एंड अच्छा रिजल्ट आप हासिल करेंगे। सिंह यानी कि लियो, आपके लिए कहा गया है लीगल मैटर्स में जो भी काम आप कर रहे थे बट यू वांटेड अ पर्टिकुलर रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। फायदे के मौके भी हाथ लगेंगे, काफी खुश रहेंगे आप इस रिजल्ट को हासिल करते हुए, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, और आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है अपना, ये आप जरूर आज देखेंगे। कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है पैसों के मामले में फायदा हाथ लगेगा, और ईश्वर पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास आज आपके काम आएगा, मतलब जो आस्था है आपकी वो आपके काम आएगी, बिकॉज इट विल मेक यू फील मोर स्ट्रॉन्गर, एंड आपका बिलीव जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। आज आपको एक सलाह दी जा रही है, गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल करते समय बहुत केयरफुल रहें। तुला यानी लिब्रा, जीवन साथी के सहयोग से जो भी मुश्किलें हैं आपकी आज पूरी होंगी, और सुख के साधन जरूर जुटा पाएंगे, मतलब यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ टुडे, इन योर डे टुडे, जो आपको बहुत हैप्पी कर देंगे। आज आपके लिए ये भी बताया गया है कि लाभ यानी फायदे के बहुत से मौके मिलेंगे। अच्छा है कि ये मौके आपको मिल रहे हैं, बस आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनसे फायदा उठाना है। वृश्चिक के लिए स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी अगर आपकी है जिसे बेचने के बारे में आप सोच रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो अपने फैसले अच्छी तरह से कीजिए और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उस पर काम करना है तो अच्छी तरह से अपना रिसर्च कर ही अपने पैसों को आप इसमें डालिएगा। और साथ में आपके लिए यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी लेन देन आप कर रहे हैं दैट इन्वॉल्व्स मनी, आज जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लें और फिर आप अपना काम आगे बढ़ाएं। धनु यानी सेगिटेरियस, बहुत बिजी रहेंगे, भागदौड़ अधिक रहेगी और इसी वजह से थकावट भी काफी महसूस करेंगे आज आप। जल्दबाजी करेंगे तो लापरवाही होगी, लापरवाही मतलब आज आपके लिए नुकसान, तो इसीलिए जितना कम जल्दबाजी हो सके और जितनी कम लापरवाही हो सके उतना अच्छा, मतलब उतना कम नुकसान। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज लेन देन में आपको केयरफुल रहना है, बातों में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, रिश्ते बिगड़ रहे हैं आपके, खराब हो रहे हैं दिन ब दिन, और ये रिश्ते आपके लिए बहुत जरूरी है, तो हो सके आप अपनों को जो भी जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर आप ऐसे फैसले जो है ये लीजिए। आज अननेसेसरी भागदौड़ भी आपके लिए कहा जा रहा है काफी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानियां और थकावट दोनों ही रहेगी। कुंभ यानी अक्यूरियस आपके लिए बताया गया है, किसी बड़े काम का आज आपका मन बनेगा, मतलब बड़ा काम करने का मन बनेगा। एंड वंस यू हैव मेड योर माइंड टुडे, आप उसी तरह से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए रखिए क्योंकि आप उसे पूरा करते हुए अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। और आज घर में थोड़ा तनाव रह सकता है जिससे आपको परेशानी होगी, सो ट्राई एंड गेट दैट सॉर्टेड फॉर योरसेल्फ। और अगर आपको कुछ बातें कर किसी के साथ कुछ चीजें सुलझानी है, अच्छा दिन है टू गेट दैट डन। फाइनली मीन यानी पाइसेस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आपके लिए कहा गया है कुछ लोग हैं आपका बुरा चाहते हैं, आपके विरोध में हमेशा रहते हैं, तो आज ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होगी, इनसे थोड़ा केयरफुल रहे। नौकरी में चैन की सांस लेंगे, एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए ट्राई एंड वर्क आउट योर एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे। रिमेम्बर थोड़ी देर बाद आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, ये आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
2: Rebel is turning 30 and we've got 30% off deals to celebrate. Like 30% off all Adidas running shoes, 30% off birthday deals and so much more. On now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitimata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
5: Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant!
4: In just 13 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
3: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
7: तो चलिए सेलिब्रिटी अलार्म की बारी आई एस प्रॉमिस्ड और कल जबकि इतनी आसान सी आवाज आपके लिए लेकर आए थे भवन ईरानी की तो आज फ्राइडे यार आज क्यों डिफिकल्ट रखे ना वीकेंड अच्छा जाएगा आप सभी का जब इजी हो जाए सब कुछ और आई ट्राई एंड कीप इट एज इजी एज पॉसिबल एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वंस जो अभी तक हमने सेलिब्रिटी अलार्म में किया है आज की आवाज चलिए आई एम 100% श्योर आप पहचान तो लोगे पर चलो सुनते हैं और ध्यान से सुनिएगा यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वॉइस टुडे
8: मुझे कुछ याद नहीं रहता है कुछ याद नहीं रहता है मुझे फोन भूल जाऊंगी ये घूमती रहती हूँ मैं साथ साथ में ये भूल गई वो भूल गई कुछ यहाँ पे छोड़ दिया
7: तो कौन है ये मतलब किसकी आवाज है ये आपको बस इतना अनुमान ये लगाना है जवाब आपको भेजना है BF लिखना है सबसे पहले ही फिर अपना आंसर अपना नाम और भेज देना है 5599 पर ठीक है BF योर आंसर योर नेम 5599 पर सेंड करें यू गॉट इनफ टाइम अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए कि अभी जो आवाज हमने आपको सुनाई वो किसकी आवाज है हियर वी गो एक बार फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से
8: मुझे कुछ याद नहीं रहता है कुछ याद नहीं रहता है मुझे फोन भूल जाऊंगी ये घूमती रहती हूँ मैं साथ साथ में ये भूल गई वो भूल गई कुछ यहाँ पे छोड़ दिया
7: चलिए जल्दी से अपना आंसर हमारे पास सेंड कीजिएगा थोड़ी देर बाद देखेंगे आप में से कितने लोगों ने आज की हमारी सेलिब्रिटी को पहचाना है इन सेलिब्रिटी अलार्म
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
9: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: News Headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में कहा गया है कुछ पेरेंट्स अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं जब माउंट एल्बर्ट ग्रेमर स्कूल जो है ये पेरेंट्स इनके एक रूल को लेकर काफी अनहैप्पी है, जहां पर स्टूडेंट्स को बताया गया है कि वो अपने जैकेट्स और स्कार्व्स नहीं पहन सकते हैं अगर वो क्लासरूम के अंदर हो तो, डिस्पाइट ऑकलैंड में अभी जो विंटर वेदर है ये लोग फेस कर रहे हैं। स्कूल ने कहा है कि क्लासरूम्स में हीटर्स होते हैं और उनके ये जो रूल है क्लासरूम के अंदर जैकेट्स और स्कार्व ना पहनने की, ये उनके लॉन्ग स्टैंडिंग यूनिफॉर्म पॉलिसी का एक हिस्सा है। लेकिन कुछ पेरेंट्स का कहना है कि अगर स्टूडेंट्स को सर्दी लग रही, मतलब ठंडी लग रही है, तो डिस्पाइट दिस रूल उनको उनके जैकेट्स को पहनने की परमिशन जो है ये देनी चाहिए अगर उनको ठंड महसूस हो रही है। तो अन्य खबरों में कहा गया है कि क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल फिलहाल काफी स्ट्रगल कर रहा है टू कोप अप विद द सर्ज इन विंटर पेशेंट्स। रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको कॉरिडोर्स में ट्रीट किया जा रहा है ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ बेड्स जो है ये फेस किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये सिचुएशन काफी अनसेफ होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ इमरजेंसी प्लान्स भी प्रिपेयर किए गए हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हॉस्पिटल के बाहर टेंट्स भी सेटअप किए जाएंगे ताकि वो इस बढ़ते डिमांड को मीट कर सके। हेल्थ न्यूजीलैंड ने कहा है कि एक्स्ट्रा बेड्स ऐड किए गए हैं, लेकिन विंटर इलनेस के चलते कई हॉस्पिटल्स अभी भी सिग्निफिकेंट प्रेशर का सामना कर रहे हैं। खेलकूद के खबरों में बताया जा रहा है कि ऑकलैंड एफसी ने अपना नया कोच जो है ये अपॉइंट कर लिया है। ऑकलैंड एफसी के नए अपॉइंटेड कोच पोर्चुगीज कोच पेड्रो मोरेरो बताए जा रहे हैं। ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार।
2: Accurate traffic.
3: Say hello to winter comfort.
4: Possible showers on what's a mostly fine day. 16 our high today. Into the city at the moment. Northern motorway flying really well. About 20 minutes in from Constellation Drive. We've got patchy spots on and off. Mainly slow at Esmond. Northwestern, slow from Greyland to the city and a few other patches. 22 minutes in from Massey. Southern, 32 Manukau to the city. We're slow on and off all the way from Manurewa, but pretty quick overall.
3: Up to 50% off winter sale on now at Hunter Home Wairo, Sylvia Park and Westgate.
5: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you New Zealand's lowest prices in home improvement. Kukar 50-inch smart TVs $499. Vogue black glass wall ovens $349. 60cm black range hoods $79. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: It's Woolworths Half Price Week. Get Makona Coffee Sachets 20-pack for just $7.39 each. And Paseo 4-Ply Ultra Soft Toilet Tissue 6-pack for just $4.90. 1 week only, while stocks last. Tea, C's and exclusions apply.
7: Spa World's Auckland Clearance Centre is holding a massive sales event today till Sunday. Andrew, Mr. Spa World, tell us more.
8: Yes, this is going to be huge. We're discounting thousands of dollars off spa pools, swim spas, saunas and pergolas from world-leading brands. Save up to 70% off display models, scratch and dent and end-of-line stock in our massive Auckland Clearance Centre event.
7: There you have it, up to 70% off selected stock and grab an absolute bargain at Spa World's Auckland Clearance Centre sales event today till Sunday from 9 a.m. at 9 Sylvia Park Road, or see sparworld.co.nz. Save thousands on demo units, scratch and dent certified display models and end of line stock in the massive Auckland Clearance Centre event.
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
1: हैप्पी बर्थडे आपको विश करने का समय हुआ. हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज जितने भी लोग जहां कहीं भी अपना बर्थडे, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, हमारी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन. आज अगर देखा जाए बहुत से लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आज हम देना चाहते हैं. इन्होंने बहुत दिनों पहले अपने मैसेजेस हमारे पास भेजे थे. 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आज अरुणा जी. विशिंग यू द हैप्पीएस्ट 60th बर्थडे. टुडे वी सेलिब्रेट नॉट ओनली द स्पेशल माइलस्टोन बट आल्सो द इनक्रेडिबल वुमेन यू आर. योर लव, काइंडनेस, स्ट्रेंथ एंड एंडलेस केयर हैज टच्ड ऑल ऑफ आवर लाइव्स इन सो मेनी वेज. यू डिजर्व ऑल द लव एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. With all our love and best wishes, your loving husband Shiv Singh, beta hai Akash, bahu hai Raksha, and grandson hai Ayansh. Sending lots of love and hugs from daughters Kritika, saath mein Divina, and unke parivar walo ki or se bhi. Not forgetting your beloved grandchildren Kriya, Erika, and Eric ki or se. Aur dheer sara pyar samast parivar walo ki or se, dosto ki or se, rishtedaro ki or se, jo yahan New Zealand mein rehte hain, Fiji mein rehte hain, aur America mein hain, in sabhi ki or se. So Aruna ji, aapki pyari si bahu Raksha ne ye bahut hi प्यारा सा मैसेज हमारे पास भेजा था आज आपके जन्मदिन के मौके पर. हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम विश कर रहे हैं. और आज अगर आप भी 31st ऑफ जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे आपको, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हम आपको जरूर विश कर रहे हैं. होपफुली यू एंजॉय योर डे टुडे.

0: तो आपको तो याद होगा कि अभी हाल ही में जो सैटरडे नाइट को पावरबॉल जैकपॉट जो है ये जीता गया था दो लोगों द्वारा, और दोनों जो लोगों ने जीता था 40 मिलियन टोटल जैकपॉट था, लेकिन जो दो लोग जीते थे और अनॉनिमस, मतलब उनकी तो आइडेंटिटी रिवील होगी भी नहीं है, अच्छा है नहीं रिवील हो रही है, 20.1 मिलियन ईच उन्होंने जीता था। तो उनमें से एक जो विजेता है एक यंग ऑकलैंड कपल है, और उनका कहना है कि इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम कि उन्होंने 20.1 मिलियन जीता सैटरडे नाइट वाले पावरबॉल ड्रॉ में। और ये जो कपल है अभी भी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स द राइट डिसीजन। और उन्होंने ये कहा है कि वो जो टिकट है जब वो खरीदते हैं तो तभी खरीदते हैं जब जैकपॉट 30 मिलियन या उससे ज़्यादा का होता है, उससे पहले वो पैसे नहीं बर्बाद करते अपने। ये डिस्कवर्ड कि ये जो विन है उनके लिए तब जब जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड उन्होंने अपना माई लोटो ऐप जब चेक किया, उनको पता चला एंड ही वॉज ओवर द मून। ऑब्वियसली 20.1 मिलियन किसी के हाथ जाए तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाए, मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। बट इस कपल ने कहा कि ये जो पैसे उन्होंने जीते हैं, सबसे पहली चीज़ वो उन्होंने जो प्रॉपर्टी अपनी खरीदी थी उनकी यही प्रायोरिटी है, दैट दे विल बी पेइंग ऑफ देयर मॉर्गेज फॉलोड बाय बाइंग अ न्यू कार। दे ऑल्सो होप कि वो कुछ पैसों का इस्तेमाल करेंगे टू हेल्प एनिमल्स एंड समथिंग दे से कि वो उनका एक सपना रहा है, उस सपने को वो हमेशा यू नो पूरा करने के बारे में सोचते थे। तो फाइनली दे गोना यूज दिस मनी टू फुलफिल देयर ड्रीम। दे प्लान कि वो टाइम लेंगे अच्छे से और फाइनेंशियल एडवाइस भी लेंगे ताकि अगर कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन उनको लेना हो पैसों के मामले में तो वो अच्छी तरह से कर सके। दैट इज सच अ सेंसिबल थिंग टू, इजंट इट? तो अरे यार इतना तो आपको बता सकते हैं कि अगर कोई भी पैसे जीतता है आप सोचोगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हमेशा वैसा लोग करते नहीं है। पीपल प्लान इट आउट वेरी यू नो अकॉर्डिंगली प्रॉपरली एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। तो दिस इज़ द सेम सिचुएशन फॉर दिस यंग ऑकलैंड कपल जिन्होंने ये जैकपॉट जीता था 20.1 मिलियन का, और जो दूसरा 20 मिलियन का जो प्राइज है अभी तक तो इसे क्लेम नहीं किया गया है। विनिंग टिकट जो है ब्लॉकहाउस बे पोस्ट शॉप एंड स्टेशनर्स ऑकलैंड में बेचा गया था। सो जस्ट इन केस इफ यू आर वन ऑफ देम जिन्होंने यहाँ से टिकट लिया था, अपने टिकट चेक कर लो, कन्फर्म कर लो। ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपने नहीं जीता है, एक बार चेक कर लो, नेवर नो, हो सकता है कि आप विजेता हो। बाय द वे ऑन द सेम नोट आई'ड लाइक टू आस्क यू, नहीं अच्छा ऐसा करते हैं ये ना अभी नहीं पूछेंगे, ये अगले घंटे पूछेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ी देर बाद आज का थ्रोबैक आपके लिए लेकर आएंगे।
1: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
2: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय,
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: Accurate traffic.
5: Innovative interiors, your luxury wardrobe specialist.
6: Possible showers on a mainly fine day, got a high of 16. Slowing down on the northwestern now, 26 minutes messy to the city. We're slow from Point Chev with some heavy patches. Southern 34 in from Manukau, 45 Drury to town. Slow on and off from Manurewa, but it's not very bad. Northern 20 in from Constellation, slow there to Milford and at Esmond. The southwestern looking pretty good both ways.
5: Innovative interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
7: It's double points week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
8: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
9: Mike here from Novus Glass. At Novus, we can handle your insurance claim. So what does that actually mean? It means one phone call to your local branch. It means that as a preferred supplier to insurance companies, we know the process. It means getting on with the rest of your day whilst we sort your insurance and your vehicle. Plus, every time you choose Novus, you're helping plant native trees. So as soon as you notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
10: Show us your crack.
11: Ah, Novus!
4: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है। अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपर साइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ। अवार्ड विनिंग लीप मोटर बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज। ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। फ्यूल पर पैसे बचाइए। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स। विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप 170 ग्रेट साउथ रोड टाटा नैनो। फीस सीज डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Throwback.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपके लिए आज का हमारा ये सफर जारी है मॉर्निंग मैडनेस का 104.2 एफएम या रोवा ऐप पर अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं थैंक यू आप सभी के साथ और आप सभी के समय के लिए। इस घंटे एलिया मैंने ये कहा था ना कि आपको देंगे मौका हमारे साथ ड्रो में शामिल होकर। करण औजला जबकि आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ऑन द 25th ऑफ ऑगस्ट, तो आपके पास भी मौका है इसका हिस्सा बने और आप इनको विटनेस कर सके, देख सके राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज परफॉर्म करते हुए। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्ट्स ऑफ दिस ईयर होने जा रहा है, तो आप पीछे कैसे रह सकते हैं? आपको तो इनको देखना ही देखना है। पिछली बार जब ये आए थे तो इन्होंने तो धूम मचा दी थी, इस बार वही उम्मीद लेकर वापस आ रहे हैं। इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस तो ग्रैब योर टिकट्स नाउ। hum.rover.nz विजिट करें या livenation.co.nz। स्पेशल गेस्ट इकी भी यहाँ पर रहेंगे, परफॉर्म करेंगे और इनके अमेजिंग परफॉर्मेंस का मजा आप जरूर उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू विन अ डबल पास और इसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है। कोई एक सवाल हम पूछेंगे उसका जवाब देना है KA यानी कि करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए। पर राइट नाउ आज फ्राइडे है, आज ना मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ड्रो का हिस्सा बने। सो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप बस KA लिखे, अपना नाम लिखिए और 5599% कर दे। इसका मतलब यही होगा यू आर इंटरेस्टेड इन विनिंग और तभी आपका नाम ड्रो में जाएगा। ठीक है, KA यानी कि करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखे, अपना नाम लिखे और 5599% कर दे और आपका नाम इस ड्रो में हम जरूर शामिल करेंगे जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी टू विन अ डबल पास टू गो एंड विटनेस नन अदर देन करण औजला इनकी पीप ऑफ कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत। मैसेजेस भेजते रहे और अगला थ्रोबैक का मजा उठाते रहिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: I'm going to hunt him down.
1: 4 medals on the opening day of track cycling, including gold to Emma Foy and sighted pilot Jesse Hodges in the para team sprint. Tom Walsh had to settle for silver in shot put and bronze for para sprinter Anna Grimaldi in the T47 100 metres.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari good brands bhi hai.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: आज के मौसम के बारे में कहा गया है कि बारिश होगी, लेकिन बाद में चलकर बारिश थमती हुई नजर आएगी, लेकिन बादल जो है ये जरूर आज छाए रहेंगे. सनसेट होगा 5:36 PM पर. ओवरनाइट टेम्परेचर 8 डिग्रीज एंड अ हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
4: A very good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं The Breakfast Show with Vijay and Pooja. और आपको तो पता है ही कि Breakfast Show में इस घंटे जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए The Rush Hour. बातें करते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके नाम करते हैं इस घंटे, शेयर करते हैं डिटेल्स भी. तो वहीं पर ट्रेंड पेट्रोल के साथ होती है हर बार इस घंटे की शुरुआत. तो आपको बताना है हमें, हमें बताना है आपको कि फिलहाल अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए क्या चीज़ है जो ट्रेंड कर रही है. गूगल सर्चेस की बातें अगर करें, ऐसी कौन सी चीजें जो लोग ढूंढते रहते हैं गूगल पर और सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या हुआ है. वेल, कुछ चीजें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये एक शब्द है जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है फिलहाल न्यूजीलैंड में. गूगल सर्च में बहुत से लोग इसे ढूंढ रहे हैं. इन्फ्लेशन इस शब्द को काफी लोगों ने ढूंढा हुआ है, मतलब इससे जुड़ी डिटेल्स जो है ये पता कर रहे हैं. पेड्रो मोरेरा, ये नाम अभी आपने सुना भी होगा. पिछले घंटे हमने न्यूज हेडलाइंस के दौरान बताया था कि ऑकलैंड एफसी के नए कोच अपॉइंट हुए हैं और इनका भी, इनके बारे में भी लोग काफी सर्च वगैरह जो है ये कर रहे हैं. बट अनदर डिटेल दैट हैज कम फॉरवर्ड जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इज लोटो $500,000 विनर्स. ये लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर, काफी ज्यादा लोगों ने इनफैक्ट इसके बारे में सर्च किया है. नाउ वी हैव शेयर डिटेल्स अबाउट द फैक्ट कि पिछले घंटे हमने बातें की थी कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 20.1 मिलियन जीता था पिछले सैटरडे वाले ड्रो में. तो वहीं पर प्लेयर्स फ्रॉम रोटरुआ एंड ब्लेव प्लेंटी आर अमंग दोज 13 पीपल नेशन वाइड जिन्होंने सेकंड डिवीजन लोटो जो है ये जीतते हुए कल रात, नहीं वेंसडे रात को, नॉट थर्सडे, वेंसडे रात वाले ड्रो में जीता था, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है ये अपने नाम किया. द प्लेयर्स ईच वन $17,438, इंक्लूडिंग वन प्लेयर जिन्होंने एक ऐसा टिकट लिया था पेकिन से रोटरुआ से मेरे ख्याल से, और दूसरे प्लेयर ने बे ऑफ प्लेंटी में ये टिकट जो है माई लोटो ऐप पर लिया था. एक ऑकलैंड प्लेयर है जिन्होंने टिकट जो है ये खरीदा था और उन्होंने पावरबॉल सेकंड डिवीजन भी जीता, जिसकी वजह से उनका विन $29,466 हुआ. पर कमाल की बात यह है कि दो अन्य प्लेयर्स हैं जो न्यूजीलैंड में कहीं हैं, एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चला है, बट दे ईच हैव वोन $500,000. $500,000 इज नॉट अ बिग स्मॉल अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट, नॉट अ स्मॉल अमाउंट. एंड डेफिनेटली लोग पता करने की कोशिश शायद कर रहे होंगे कि क्या उन्होंने जीता है या नहीं, क्योंकि ट्रेंड्स की बातें करें ट्रेंड पेट्रोल में तो दिस पर्टिकुलर लोटो $500,000 विनर्स ये काफी ट्रेंड कर रहा है फिलहाल. वैसे आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे व्हाट्स योर टेक में कुछ इसी से रिलेटेड है जो आपके लिए हम लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है. अपने व्यूज आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड बाय द वे, आई टोटली फॉरगॉट, पिछले घंटे हमने किया था ना सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज आपको पहचाननी थी. कई लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे थे यार, थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट. यस, यू गॉट इट राइट, इट वॉज अनुष्का शर्मा. बहुत आसान था ना इनकी आवाज को पहचानना. सो थैंक यू सो मच हमारे साथ पार्ट लेने के लिए.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
3: Give your place a winter glow-up for less with Mitre 10. Clean up your space with 20% off Dissolvit cleaners. And save $160 on a Super Tub single cupboard laundry tub, now $539. T's and C's apply. Shop in-store and online at Mitre 10.
1: Takanini Auto Group mein electric or hybrid cars or SUVs. Brand new. Sirf 29,990 se. Leap Motor, Dongfeng aur bike ke latest hybrid or EV models. Trade-ins welcome. Finance bhi available hai. Visit Takanini Supersite. Petrol aur diesel ke crazy prices ko boliye goodbye. Aur nai ya quality used EV ya hybrid ghar le jaiye. Aur haan, ye almost sab kuch trade kar lenge. Bas, aapki mother-in-law ke ilawa. Takanini Auto Group. 170 Great South Road, Takanini. Fees, C's, D's and credit criteria apply.
4: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: आज व्हाट्स योर टेक में हम आपके लिए लेकर आए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक. एंड वो टॉपिक ये है कि सपोज हाइपोथेटिकल टॉपिक, क्योंकि अभी तो यू नो कई लोग जीत रहे हैं, कई सारे पैसे जीत रहे हैं. अभी फॉर एग्जांपल ये जो ऑकलैंड कपल जिनके बारे में मैं कहा था, 20.1 million इन्होंने जीता सैटरडे वाले पावरबॉल ड्रॉ में. और फिर उस पैसों को इन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह से प्लान करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे और फिर उसको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना वो करेंगे, अपना मॉर्गेज पे ऑफ करेंगे, नई गाड़ी लेंगे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी पैसे लगाएंगे जिससे कि जानवरों की हेल्प हो सके. आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. लेट्स बी वेरी हाइपोथेटिकल, लेट्स पुट इट दिस वे, कि ये जो 20.1 million है, सपोज आपने जीता होता, इफ यू हैड वॉन दिस 20.1 million dollars, बींग वेरी ऑनेस्ट, क्या आप जो भी नौकरी अभी फिलहाल कर रहे हैं क्या वो नौकरी आप करते या फिर आप छोड़ देते एंड इस पैसों को, मतलब इन पैसों को इन्वेस्ट कर आप शायद रिटायर हो जाते एंड इन्वेस्टमेंट के जो पैसे हैं उसका फ़ायदा आप उठाते. व्हाट वुड यू हैव डन? बीइंग वेरी ऑनेस्ट ना, आपको सिर्फ मुझे अपने आंसर्स जो है टेक्स्ट करने हैं 5599 पर, अपना व्यू बताना है. व्हाट्स योर टेक? क्या अगर आप 20.1 million dollars जीतते, क्या जो भी नौकरी फिलहाल आप कर रहे हैं क्या वो नौकरी आप कंटिन्यू करते या नौकरी छोड़ देते और इन पैसों को इन्वेस्ट कर अपना जो फाइनेंशियल फ्यूचर है इसे सिक्योर करते, मतलब वो भी करते और नौकरी भी करते, या फिर सिर्फ वही करते और अपना नौकरी जो है आप छोड़ देते? व्हाट्स योर टेक? लेट्स सी. 5599 पर अपने नाम के साथ अपने मैसेजेस आप सेंड कीजिएगा, थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस हम जरूर देखेंगे. फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद आज बातें होंगी लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला के साथ भी, तो इनसे बातें करने के लिए भी इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा. थोड़ी देर बाद हम और आप एक साथ इनके साथ जरूर जुड़ेंगे.
8: Hollywood's most wanted.
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
13: मैं लाऊं अपना A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हेलो क्योरा, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का स्पेशल वेलकम है आज के हमारे रश आवा के सफर में। यू तो एवरी थर्सडेज को हमारे साथ जुड़ जाते हैं लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला, लेकिन आज थोड़ा हमने सोचा इस वीक का एक स्पेशल रखें और आपके लिए एक स्पेशल अपीयरेंस थर्सडे के बजाय फ्राइडे को क्यों ना करें। अब वेरी गुड मॉर्निंग गुरु, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग पूजा, मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया। और आज फॉर अ चेंज, फॉर अ सरप्राइज, आपसे फ्राइडे के दिन बातें हो रही हैं, तो जितने लोग शायद थर्सडे को आपको नहीं सुन पाते हैं वो आज ज़रूर सुनेंगे, और आज आपके ओर से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है इसका लुफ्त उठाएंगे, क्योंकि इट्स समथिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल मेक द राइट डिसीजंस। तो आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं आपसे आज बातें करना चाहती हूँ अबाउट फर्स्ट होम बायर्स, इफ़ दैट्स ओके। तो अभी जो भी करंट सिचुएशन है मार्केट में, आई मीन हाउसिंग मार्केट को लेकर जो भी बातचीत हो रही है, कुछ लोगों को कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन तो कुछ लोगों को कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपनी अपनी ओर से जो भी इन्फॉर्मेशन लोग गैदर कर रहे हैं उस हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये उनके लिए एज अ फर्स्ट होम बायर अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का या नहीं। बट आई वुड लाइक देम टू नो फ्रॉम द एक्सपर्ट यू, लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला, आपके हिसाब से आप अगर हमें बता सके कि करंट हाउसिंग मार्केट का जो भी सिचुएशन है, अपडेट है, इसे ध्यान में रखते हुए, इज इट अ गुड टाइम और अ बैड टाइम फॉर फर्स्ट होम बायर्स टू यू नो गेट इनटू द मार्केट?
1: पूजा, सबसे पहले तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और जो फर्स्ट होम बायर की मार्केट में घर देख रहे हैं, डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, बट आज की मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट इज सिटिंग ऑन द लोअर साइड, व्हिच मींस की लोअर साइड का मतलब है कि प्राइसेस आर स्टेबल एंड सिटिंग एट द एट लोएस्ट लेवल। तो अगर आप इस मार्केट में खरीदते हो तो डेफिनेटली यू गेट एज ए बार्गेन डील एज कम्पेयर टू अगर मार्केट हाई हो जाती है। जब मार्केट हाई हो जाती है देन यू पे द कम्पिटिटिव प्राइस। सो अगेन एवरीवन सिचुएशन इज डिफरेंट, एंड अगर आप भी मार्केट में घर लेना है तो ये इट इज, और आपका फर्स्ट होम है तो अगर आप किसी का रेंट पे कर रहे हो, यू नो, सो व्हाई नॉट टू ट्राई दैट टूवर्ड्स building your own fortune, क्योंकि as financial अगर आपको freedom लेना है तो you have to take a step somewhere, and that step if it comes through the property ladder, which is I think one of those places कि जहाँ से आप financial freedom की खोज करना शुरू कर सकते हो, and you know this is the best move to or a safest move भी होता है, because property आपके पास है, अगर कल को कुछ नहीं होता है देन यू कैन सेल इट एंड मूव ऑन व्हाटएवर, बट लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी मार्केट है कि जो एकदम से क्रैश नहीं होती है, इट इज ऑलवेज लाइक यू नो इट इज एज अ साइड सिटिंग ऑन द लोअर साइड इज गोना कीप गोइंग ऑन द हायर साइड स्लोली, बट इन नटशेल अगर देखो भी फर्स्ट होम बायर्स लाइक अगेन पीपल नॉर्मली यू नो अर्निंग अराउंड $40,000 to $50,000 ऑन अ मिनिमम बेसिस। तो अगर एक कपल, अभी हमने लोन किया जैसे कि कपल की फैमिली थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की इनकम 95,000 थी, सिंगल कपल थे, बच्चे था नहीं उनके पास, कोई लोन्स नहीं चल रहे थे, यू नो दे हैड अ क्रेडिट कार्ड ऑफ $5,000 ओनली, एंड दे पेइंग दे वर पेइंग द रेंट फॉर 585 का रेंट पे कर रहे थे, एंड दे जस्ट थॉट कि क्या हम ये कर सकते हैं, वही सेम डिस्कशन हुआ, दे हैड अ कीवी सेवर में उनके पास $30,000 सेव हुआ पड़ा था कीवी सेवर में, एंड बेसिकली दे फाउंड अ प्रॉपर्टी अ टू बेडरूम यूनिट अ ब्रांड न्यू यूनिट इन अ प्लेस, मतलब अच्छा जैसा वो दो बेडरूम में पहले भी रह रहे थे, बट वो यू नो जो घर छोटे टू बेडरूम घर में रह रहे थे, पुराना घर था, बट दिस वन दे फाउंड टू बेडरूम ब्रांड न्यू हाउस $30,000 डिपॉजिट थ्रू कीवी सेवर, इन 570 का उनका लोन हो गया, एंड बेसिकली दे हैड देयर इनकम ऑफ दैट कंबाइंड इनकम ऑफ 95,000, इन जो उनका जो इंस्टॉलमेंट बना दैट ओनली केम टू अराउंड $660, सो बेसिकली दे यस 580 वो अभी रेंट पे कर रहे थे, बट देन दे विल बी पेइंग एक्स्ट्रा आई वुड से $80 पर वीक, बट नाउ वो जो पे कर रहे हैं वो इट इज गोइंग towards their own building fortune, you know, कि financial freedom का एक उन्होंने एक पहला step रखा है, छोटा step रखा है, but step रखा है, and that's how you actually see कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, yes, is there any other further commitments, yeah, there would be a rates, अगर आप वहाँ पे उस property के rates से, I think 2,500 के आसपास rates से साल का, so that is the only extra funds which comes into the play, बट अदर देन दैट वाटर बिल्स आप अभी भी पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप अभी भी पे कर रहे हो, बट नाउ यू कैन से दैट एज योर ओन होम, और उसमें आप जितना टाइम स्पेंड करके जितना आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो, या जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर वो प्रॉपर्टी आगे जाके 650 की हो जाती है या 700 की हो जाती है, सो दैट 50,000 गेन और 100,000 गेन इज दैट इक्विटी यू हैव बिल्ट इनटू दैट प्रॉपर्टी विदाउट डूइंग एनीथिंग, यू नो. सो बेसिकली आपने सिर्फ वो स्टेप लिया कि आप रेंटल से आप अपनी प्रॉपर्टी में आ गए,
0: खुद की प्रॉपर्टी हो गई आपकी, या
1: खुद की प्रॉपर्टी हो गई. सो दैट्स की फर्स्ट होम बायर्स के लिए एब्सोल्युटली वो एक जो डर है वो डर खत्म करने वाला होता है. दूसरी बात है कि वी डोंट चार्ज. सबसे बड़ी बात है कि लोग पहले सोचते हैं कि यार हम सीधा बैंक के पास चले जाएं तो बैंक हमें सीधा अच्छा डील दे देगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट कि बैंक आपको अच्छा डील देगा, क्योंकि जो हम एज ए ब्रोकर बेसिकली आपके लिए करते हैं वो इट इज आउटसाइड द बॉक्स. आउटसाइड द बॉक्स मीन्स वी आर ओपन फॉर यू, लाइक यू नो, आप सवेरे हमें 7 बजे कॉल कर लें, रात को 8-9 बजे कॉल कर लें, यू कांट डू दैट टू द बैंक. आपको जब हमने वो बेसिकली आपने बैंक को प्रेजेंट किया, दे कैन से यस और नो, बट देन वी गो इनटू निटी-ग्रिटी ऑफ द योर इनकम्स एंड स्टफ एंड सी की कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ से हम वो फाइंड कर सकते हैं कि जो बेसिकली इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. इन्वेस्टिगेट करके अगर वो लोन आपका अप्रूव होता है देन बेसिकली यू गेट इनटू इट, कैसे उस लोन को फास्ट पे करना है, कैसे उसको स्ट्रक्चर करें कि वी गोना पे इट ऑफ, एंड दैट्स ऑल सर्विसेज आर फ्री, यू डोंट पे एनीथिंग. सो व्हाई नॉट टू यूज द सर्विसेज ऑफ mortgage broker and why not to call them and get this you know financial freedom.
0: Why not call you?
1: Yes. Why not call me?
0: Exactly.
1: Why not call me?
0: तो अगर आपको कॉल करना है, जो भी लोग अभी इस यू नो पढ़ाव में है, फर्स्ट होम बायर्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं, एंड दे लाइक टू डिस्कस देयर सिचुएशन एंड देयर ऑप्शंस, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू?
1: पूजा सिंपल लॉजिक लगाना है, लॉजिक फाइनेंस आप सर्च करोगे गूगल पे, यू विल गेट माय डिटेल्स, माय 0800 नंबर फ्री नंबर भी है. तो आप अगर 0800 लॉजिक जी, लॉजिक जी अपने टाइप मोबाइल पे टाइप करते हो कीपैड पे, लॉजिक जी, देन इट कम्स टू मी व्हिच इज 0800-564-424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
0: थैंक यू सो मच गुरु फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एंड योर टाइम. और अब तो नेक्स्ट वीक थर्सडे को आपसे बातें करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है आपसे जरूर लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंजॉय योर फ्राइडे. लॉन्ग वीकेंड नहीं है, सिर्फ वीकेंड है. चलो टेक केयर, बाय.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chubo jao papi ho, chubo jao. Accurate traffic.
4: Martin Mega Botany Trade.
5: High of 16 today, mainly fine, but could be a few showers. Coming in, Southern Motorway, the slowest of a decent bunch. 38 minutes, Manukau to town. We're fine to Otahu, but heavy on and off from there. Northwestern, 28 in from Massey, fine to Point Chev, then heavy on and off. Northern, 20 in from Constellation, slow at Silverdale, Constellation to Milford and at Esmond. Lagoon Drive in Panmure just got one lane westbound open due to a serious crash.
4: Martin Mega Botany Trade event Saturday. Stock up on great deals and meet the suppliers.
6: You've known us as Fujitsu. We're now General. We've changed our name, but not who we are. Take control of your home comfort with this great offer. Right now, when you install any eligible General Air Stage heat pump with Cool Finance, you'll pay no deposit and no interest for up to 36 months. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
7: Get a General.
8: Purchase by 31st August 26. Install by 30th September 26. Approved applicants only. T's and C's, lending criteria, fees and minimum spend apply. Credit by Q-Card. See generalairstage.co.nz.
9: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
10: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
11: IKEA.
12: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
13: मुझे भी
12: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
14: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at FijiAirways.com or call your travel agent.
2: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. सवाल भी हमने आपसे किया आज व्हाट्स योर टेक के लिए. काफी बिजी बिजी फ्राइडे जा रहा है यार. और आपने भी अपने मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच. हमारे पास हेंडरसन से किसी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा आई कीप वॉकिंग, वॉक कीप्स यू गिव्स यू अ पर्पस एंड कीप्स यू कनेक्टेड विद पीपल बट डेफिनेटली अपग्रेड माई लाइफ स्टाइल अ लिटिल. ये इन्होंने भेजा है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. प्रिया आपका भी थैंक यू सो मच. मॉर्गेज फर्स्ट, हेल्प माई पेरेंट्स, डोनेट टू चैरिटीज, देन मे बी रिटायर समवेयर वॉर्म. ये इन्होंने कहा इट्स माई ड्रीम. अमित है पापा टोयोटा से, उन्होंने कहा आई टेक अ लॉन्ग हॉलीडे फर्स्ट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन. इमेजिन वेकिंग अप एंड नोइंग यू नेवर हैव टू वरी अबाउट बिल्स अगेन. हाँ यार ये बात तो है, शायद मैं भी ऐसा ही करूँ. बट बात यहाँ पर है कि क्या आप अपना जो भी नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करते रहेंगे या वो नौकरी आप छोड़ देंगे. आप ये पैसे इन्वेस्ट कर उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर जो भी रिटर्न आएगा उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर आगे जो है ये आप देखेंगे, या फिर यू कीप वर्किंग, यू कीप डूइंग योर जॉब. ये आपको हमें बताना है, ठीक है. 5599 पर मैसेज भेजिए. इस गाने के बाद विल ट्राई एंड रैप अप द व्हाट्स योर टेक क्वेश्चन एंड सी कितने लोग हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड करते हैं. Let's go.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Inspired furniture for everyday luxury living.
1: What's going on? Kya bakte ho?
2: Are kehna kya chahte ho?
3: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और क्या बकते हो, इससे शुरू कर रहे हैं इस घंटे की. तो इस घंटे सबसे पहले क्या बकते हो में आज की कहानी बिहार से है, इंडिया से है. और बताया जा रहा है कि एक छोटा सा गाँव है, वहाँ की ये कहानी है. इसी महीने इन्फेक्ट ये हुआ है. एक शख्स है जिनका नाम है पवन कुमार. रिपोर्टेडली इन्हें पाया गया था एक पुलिस यूनिफॉर्म जो है ये पहने हुए एंड कैरिंग आउट ड्यूटीज एट द बापूधाम मोतीहारी रेलवे स्टेशन फॉर अराउंड 10 डेज. कमाल की बात यह है कि इन्होंने ये काम 10 दिनों तक किया, वो भी एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में. लेकिन असल बात ये है और वियर्ड चीज़ ये है कि ये एक्चुअली में एक पुलिस कांस्टेबल है ही नहीं. पुलिस थोड़े से सस्पिशियस हुए जब इन्होंने इनको डिटेन किया फॉर क्वेश्चनिंग. और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली, ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि दैट ही वॉज नॉट अ जेन्युइन पुलिस रिक्रूट. एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो शख्स है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इन्होंने क्लेम किया कि इन्हें पैसे पे किए गए थे 4 लाख के. मतलब इन्होंने पे किए थे 4 लाख पैसे टू गेट पुलिस ऑफिसर कॉन्स्टेबल, पुलिस कॉन्स्टेबल्स जॉब. और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि ही हिमसेल्फ मे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉड. और समवन जिन्होंने इन्हें गलत प्रॉमिस किया था नौकरी के लिए, उन्होंने इनको ये गवर्नमेंट पोजीशन के लिए प्रॉमिस किया, उनसे पैसे भी ले 4 लाख और फिर एक झूठ मूठ का यूनिफॉर्म भी दे दिया. और फिर इनको लगा कि भाई मैं तो रिक्रूट हो गया, मेरे को तो नौकरी मिल गई, ये तो अपना काम कर रहे थे. लेकिन जब पुलिस को थोड़ा सस्पिशन हुआ, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाकर पता चला कि कौन थे ये लोग जो कि इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे. और आई थिंक पुलिस अभी भी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है ये जारी रखे हुए हैं. और दर्शाए कि बहुत से अन्य लोग होंगे जो कि शायद इस फेक जॉब रिक्रूटमेंट स्कैम का हिस्सा बने होंगे, उनका फ़ायदा उठाया गया होगा, उनसे पैसे भी लूटे गए होंगे. तो अभी भी इस मामले की जांच जो है ये चल रही है. और अगर कोई डिटेल सामने आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो चलिए चेकआउट करते हैं क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में. सबसे पहले आज आपको बता दें व्हाट्सएप ऑकलैंड में कि बहुत से फ्री कम्युनिटी इवेंट्स हो रहे हैं जिनका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं. सबसे पहले आपको याद दिला दें कि आज यानी कि 31 जुलाई को ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की जो मासिक रामायण कथा है ये होने को है 7:15 PM पर IRST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी. इसमें भाग लेने के लिए आप पहुंच सकते हैं. और इसी शनिवार यानी कि कल और रविवार यानी संडे 2 अगस्त को श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन यहां पर अखंड रामायण पाठ रहेगा जिसका हिस्सा बन सकते हैं. सैटरडे 7 AM रोट पूजा के साथ जो अखंड रामायण पाठ है ये शुरू होगा और संडे 10:30 AM पर हवन और आरती के साथ समाप्त. वैसे अगर आपको इसमें भाग लेना है तो खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 8394647 पर. उसके साथ साथ न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट श्री राम लीला ये लेकर आ रहे हैं एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो 8 अगस्त को होने जा रहा है. स्टोल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से 021-179-5459 पर कॉल करते हुए जरूर बातें कर सकते हैं. बाय द वे मेघ उत्सव ये होने जा रहा है 8 अगस्त को. मेघ उत्सव एक मॉनसून फेस्टिवल है जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है और इमेजिन कि उसका जो वाइब्रेंट सेलिब्रेशन यू नो पूरा का पूरा वाइब है यहाँ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. आप भी मेघ उत्सव का जो हिस्सा है ये बन सकते हैं और ये होगा 8 अगस्त को एट माउंट एल्बर्ट मो मेमोरियल हॉल पर 4:30 PM टू 8:30 PM. एंट्री बिल्कुल मुफ्त है और इसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे जिनमें ट्रेडिशनल इंडियन डांस और म्यूजिक ये तो रहेगा ही लेकिन बहुत सारे यू नो ऑथेंटिक जो इंडियन फूड है ये भी आप ट्राई कर सकते हैं इनके फूड स्टॉल्स को चेकआउट करते हुए. खास तौर पर बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर है सो इफ यू गॉट किड्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम बिकॉज यहाँ पर इनकी पूरी देखभाल जो है ये करने के लिए आपको डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी. इट विल कीप देम बिजी एंड जिस किसी भी उम्र के आप हैं यहाँ पर आपके लिए गेम्स एंड एक्टिविटीज भी होंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो होंगी जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं और साथ ही साथ मेघ उत्सव जो है ये आप मना सकते हैं 8 अगस्त को एट माउंट वो मेमोरियल या माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल 4:30 PM टू 8:30 PM के बीच. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं इनके 4th न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट के लिए या न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए 22 एंड 23 अगस्त को ये रहेगा बर्किन हेड स्काउट्स हॉल पर. जितने भी प्लेयर्स फिलहाल में सुन रहे हैं आप किसी भी लेवल के स्किल प्लेयर हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन यूल नीड टू रजिस्टर फॉर इट. और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज जो है ये विजिट कर सकते हैं या फिर जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पंकज मोंगा इनसे आप कॉल या टेक्स्ट पर बातें कर सकते हैं 021-090-85067 पर. नाउ आपको ये भी याद दिला दें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चिन्मया मिशन की ओर से भागवत गीता डीकोडेड इस मास्टर क्लास का हिस्सा बने. यहाँ पर जो ट्रेन्ड वेदांता टीचर है BR ईशान चैतन्य ये आपको भागवत गीता के बारे में बहुत सी इंटरेक्टिव चीज़ें जो है ये सिखाएंगे एक सेशन में जहाँ पर आप भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं. फ्राइडे 7 अगस्त को रहेगा 7:30 PM टू 9 PM के बीच न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल 45 टोटारा एवेन्यू न्यू लिन. इसके लिए आप पहुंच सकते हैं. एंट्री बिल्कुल मुफ्त है पर याद रखिए कि आपको रजिस्टर करना होगा इसका हिस्सा बनने के लिए जिसके लिए आप chinmaya.org.nz विजिट कर सकते हैं और रजिस्टर जो है खुद को करा सकते हैं. कम्युनिटी में हो रहे और भी इवेंट्स का हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं. जैसे जैसे कुछ डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे पर अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे ही इवेंट्स हो रहे हैं जो अन्य लोगों के लिए हैं एंड यूड वांट अस टू टॉक अबाउट इट तो डेफिनेटली डिटेल्स जो है ये आप हमारे पास सेंड कर दीजिए और हम व्हाट्सएप ऑकलैंड के हमारे सेगमेंट में आपके लिए कम्युनिटी डिटेल्स जरूर लेकर आएंगे. पर याद रहे buzz@humfm.com buzz@humfm.com पर आपको अपने ईमेल्स हमारे पास सेंड करने होंगे.

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिल्ली से बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिल्ली तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
6: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
0: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jaku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jaku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jaku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
7: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, with SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognised qualification. From education and enterprise to creativity and career development, study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
8: SIT Online. Learn without limits.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: My kids won't shut up.
9: I'm not sure that's our problem.
10: They keep reciting lines from one of your radio ads.
9: Aw, cute.
10: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
11: What do you want, son? I want me some of that real southern chicken.
10: 28 times.
9: So where are you now?
10: Eating chicken.
12: Advertise with
13: MediaWorks.
12: New Zealand listens to us.
14: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
15: What's going on?
16: तो हमने आपको बताया था अर्लियर दिस वीक कि आज फ्राइडे 31st ऑफ जुलाई को रेड नोज डे जो है ये मार्क किया जा रहा है सुपर सिटी ऑकलैंड में। अगर आपने इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया तो हम आपको बता दें क्या है रेड नोज डे। सबसे पहले ये हर साल न्यूजीलैंड में 31st ऑफ जुलाई को मार्क किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में बाय क्यूर किड्स। ये दरअसल एक ऐसा फंड रेजिंग इवेंट है, एनुअल फंड रेजिंग इवेंट है जो होता है ताकि पैसे इकट्ठा किए जाए टू रिसर्च इनटू कॉट डेथ जो कि SUDI के नाम से जाना जाता है आजकल। 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी बाय क्यूर किड्स। फिर धीरे धीरे ये थोड़ा और बड़ा हुआ ओवर द ईयर्स और इसका सपोर्ट जो है ये बड़ा और रिसर्च के लिए और भी जो चीज़ें हैं ये सामने आई जिनमें बहुत सारे सीरियस चाइल्डहुड इलनेसेस और कंडीशंस जो है ये शामिल है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी तक रेस किए गए हैं टू हेल्प डिस्कवर बेटर वेज ताकि इन बीमारियों को डायग्नोज किया जा सके, ट्रीट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके हेल्थ इश्यूज जो न्यूजीलैंड में बच्चों को अफेक्ट कर रहा है और इसी वजह से पैदा हुआ रेड नोज डे विच इज बेसिकली क्यूर किड्स का लार्जेस्ट एनुअल फंड रेजिंग अपील जो न्यूजीलैंड में होता है सपोर्टिंग वाइटल चाइल्ड हेल्थ रिसर्च। पैसे इकट्ठा होते हैं रिसर्च के लिए और इनटू चाइल्डहुड कैंसर्स, प्रीटर्म हेल्थ, रूमेटिक हार्ट डिजीज और इनका जो मेन अपील है ये इस साल आज यानी कि 31 जुलाई को फ्राइडे को हो रहा है। आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? बहुत से जो स्कूल्स है वर्क प्लेसेस है ये रेड नोज जो है ये पूरा का पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं, दे पुट अ रेड नोज बेसिकली और बेक सेल करते हैं, सिली चैलेंजेस करते हैं ताकि पैसे जो है ये इकट्ठा किया जा सके। और डोनेशंस जो है ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज इट माइट बी बिट टू लेट फॉर यू टू डू फिजिकल थिंग, तो अगले साल आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं, फिजिकली कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। बट इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट फ्रॉम दिस ईयर तो आप rednose.co.nz विजिट करते हुए डोनेशंस जरूर कर सकते हैं और इसका हिस्सा जो है ये आप श्योरली बन सकते हैं। तो याद रहे ये बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हो रही हैं न्यूजीलैंड में आए दिन जिनका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे और अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस कंट्री को आप भी दे सकते हैं इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे आई वुड से। नाउ दूसरी ओर आपको हम बताएंगे कि आप कैसे एक बड़े ही कमाल की चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, समथिंग दैट यू माइट हैव वॉच्ड ग्रोइंग अप और एक्चुअल एक्सपीरियंस तो ना सही बट कुछ सिमिलर जो है ये आपको करने का मौका मिलेगा। क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा, थोड़ी देर बाद डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे।
13: Bollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। इनफैक्ट कुछ नई फिल्मों के बारे में बता दें आपको जो रिलीज होने वाली है, और यू नो यू कैन ऑल्सो वॉच देम वंस दे आर रिलीज्ड, या फिर इसके बारे में एटलीस्ट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वंस वो आ रही हो सिनेमा में तो आप जरूर जाकर देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर मूवी जिसमें लक्ष्य कपूर नजर आने वाले हैं, बेधड़क इसका नाम है। और कमाल की बात यह है कि इसमें लक्ष्य कपूर के साथ नजर आने वाली है शनाया कपूर, और साथ ही साथ आई एम ट्राइंग टू सी हु एल्स, गुरफतेह पीरज़ादा ये भी इसमें आया। आई काइंड ऑफ लाइक गुरफतेह, बहुत कमाल के एक्टर लगते मुझे ये। आई थिंक कॉल मी बाय में आपने इनको देखा होगा, एक रोल जो है इन्होंने प्ले किया है। बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवी बेधड़क, ये इसी साल रिलीज होने को है। शशांक खेतान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी तक आई डोंट थिंक सो देयर इज अ स्पेसिफिक रिलीज डेट जो सामने आया है, बट स्टार कास्ट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या ये दोस्ताना 2 है या फिर समवत यू नो सिमिलर टू व्हाट दोस्ताना फिल्म थी, उसका कहीं एक दूसरा पार्ट तो ना दोस्ताना 2, या फिर ये दोस्ताना फिल्म से थोड़ा हटकर है, थोड़ा डिफरेंट है। वट एवर द सिचुएशन इज, डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाय द वे मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी चीज़ जो शायद आपने बचपन से देखी हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो नहीं, पर समथिंग सिमिलर आपको करने का मौका मिलेगा, बिकॉज टाइटैनिक द ह्यूमन स्टोरी ये ऑकलैंड पहुंच चुका है। यू गेट अ चांस टू स्टेप बैक इन टाइम और आप डिस्कवर कर सकते हैं सम ऑफ द ट्रू स्टोरीज ऑफ टाइटैनिक थ्रू ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स जो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे एक कंपेलिंग ऑडियो गाइड के तहत। और ये बहुत से ऐसे स्टोरीज लेकर आएंगी फ्रॉम द शिप, इट्स पैसेंजर्स, और इसका जो ट्रेजिक सिंकिंग टू लाइफ एक्सपीरियंस रहा था जो पूरी दुनिया में आज भी लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये एक इनक्रेडिबल इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जो एक्सक्लूसिवली ऑकलैंड में है, और ड्यूरिंग इट्स न्यूजीलैंड सीजन आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आई थिंक इट्स हैपनिंग इन क्वीन स्ट्रीट, और ये फ्राइडे 28 अगस्त को खुलेगा। टिकट्स इसके लिए आपको लेने पड़ेंगे, दे आर ऑन सेल, और ये आई थिंक सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वेंसडे 5 अगस्त को इसकी टिकट ग्रैब करने के लिए प्री सेल्स में। सो टाइटैनिक द ह्यूमन स्टोरी ये आप तक लेकर आया जा रहा है यहाँ न्यूजीलैंड में ऑकलैंड म्यूजियम में, जो ऑकलैंड म्यूजियम एंड न्यूजीलैंड मैरीटाइम म्यूजियम है ये इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब डिटेल्स, आप ऑनलाइन इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं एंड देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस इट। बेसिकली जो ऑडियो गाइड है उसके थ्रू जो रियलिटी है टाइटैनिक की, ये कहीं ना कहीं आप एट दैट मोमेंट इस एग्जीबिशन को देखते हुए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट शो

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: South America is on sale now at Flight Center. Fly return to Santiago from $1,839 with LATAM Airlines. Departing Auckland. Book in store or online. These T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like... And once I'd calmed down, I'd actually do something like...
2: Imagine winning $5 million this Saturday. Play in store or online.
4: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सिलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए

0: Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Hi, Kevin Eater here, TradeStaff. Everyone knows that TradeStaff have lots of jobs working outdoors on roading contracts and building sites. But in winter, working outside can be cold and wet. We also have heaps of inside jobs. TradeStaff has work available now in warehouses, factories and workshops. So for work inside this winter, 0508 40 40 40 or tradestaff.co.nz. TradeStaff.
2: Industrial employment solution. TradeStaff.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: What's going on?
6: चलिए अब डेली राउंडअप की बारी आई है तो आज का डेली राउंडअप एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है आफ्टर एलिजिडली ही उन्होंने थ्रेटन किया एक मोटरिस्ट को विद अ फायर आर्म और उनकी गाड़ी जो है ऑकलैंड ओनिहंगा से लेकर चलते बने. पुलिस ने कहा कि ये जो मामला है ये हुआ था मेरे ख्याल से थर्सडे को अराउंड 6:10 AM के आसपास स्टेट एवेन्यू इन ओनिहंगा जहाँ पर जो ऑफेंडर है एलिजिडली इन्होंने इस ड्राइवर को अप्रोच किया एंड पॉइंटेड अ फायर आर्म और उनका ब्लैक वॉल्सवैगन जो है ये इनसे डिमांड किया. ये जो विक्टिम है इन्होंने अपनी गाड़ी हैंडओवर कर दी एंड वहाँ से फिर ऑफेंडर गाड़ी लेकर फरार हुए. पुलिस ने कहा ये विक्टिम इंजर्ड तो नहीं हुए पर ऑफकोर्स ऐसे मामले में यार कोई भी घबरा जाए विच इज़ द सेम जो इनके साथ हुआ. मोटरवे कैमराज में जब इस स्टोलन गाड़ी को ट्रैक किया गया तो द कार ट्रेवल थ्रू हाईब्रुक वाइल द पुलिस हेलीकॉप्टर ईगल जो पुलिस हेलीकॉप्टर ईगल है इसने हेल्प किया टू लोकेट द व्हीकल इन बीच लेंस ऑलमोस्ट 30 kilometers अवे. और फिर इस घटना के बाद 20-year-old एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है इस मामले में और पुलिस ने कहा कि उनको फायर आर्म के साथ इनसाइड द व्हीकल जो है ये पाया गया. चार्जेस आज बाद में चलकर जरूर इन पर लगाए जाएंगे. जस्ट इमेजिन अ 20-year-old बॉय. वैसे अन्य खबरों में कहा गया है पुलिस ने बताया है कि दे हैव शट डाउन अ मेजर ऑर्गेनाइज्ड कैनबिस ग्रोइंग ऑपरेशन जो रोटोरुआ में पाया गया जहां पर जो कैनबिस है इसे सीज किया गया विच वॉज एस्टिमेटेड एट द स्ट्रीट वैल्यू ऑफ मोर देन 6.5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स. ये जो ऑपरेशन है इट वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन हावी एंड इट लेड टू 16 अरेस्ट एंड द क्लोजर ऑफ 14 लार्ज स्केल कैनबिस ग्रोइंग हाउसेज अक्रॉस रोटोरुआ. पुलिस ने कहा है कि इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो रेसिडेंशियल होम्स है एंड दे हैड बीन कन्वर्टेड इनटू इंडोर ग्रोइंग फैसिलिटीज. तो फाइनली इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली करते हुए कहा गया है कि पिछले 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था जिसमें बहुत से पुलिस और इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के ऑफिसर्स जो है ये शामिल थे और इनमें फाइनली अब 16 अरेस्ट जो है ये किए गए हैं. अभी और भी कुछ डिटेल्स जो है रिवील नहीं किए गए. इन्वेस्टिगेशन जारी है. जैसे ही कोई और डिटेल्स सामने आता है डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो ये थे आज के डेली राउंड अप.

चलिए इसी के साथ साथ अब जाने का समय हो रहा है। आप सभी ने अपना साथ दिया, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फ्राइडे का दिन था आज और कब कैसे शुरू हुआ, कब खत्म हो गया मेरे लिए ये शो, बाय द वे नॉट द डे, पता ही नहीं चला। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। कहते हैं ना कि कंपनी अच्छी हो तो सफर अच्छा जो है ये कटता है। एंड आई ऑलवेज फील जब आपका साथ हो तो आई ऑलवेज एंजॉय योर कंपनी और अच्छे से मजे मजे पूरा का पूरा शो जो है ये निकलता है। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समय के लिए। अब तो जाना पड़ेगा और मुलाकात आपसे होगी मंडे को एक बार ठीक सुबह 6 पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हैव लॉट्स ऑफ फन एंड एंजॉय योर वीकेंड बट विद सेफ्टी ऑब्वियसली।

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? और देखिए वीकेंड आ गया है और ऐसे में इट्स टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द जॉयज एंड ब्लेसिंग्स जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और ख़ास तौर पे तब जब ये हफ्ता ख़त्म होने लग जाता है. और ऐसे में हम ये ग्रेटफुलनेस रखना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस ग्रेटफुलनेस के साथ साथ मैं भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाली हूँ. अगर आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें और अपने इस भाग दौड़ के चक्कर में कहीं अपने आप को ज़रा सा भूलें ना, कहीं थोड़ा सा टाइम आप निकाल लें. बस मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, एक आपसे छोटी सी इल्तिजा है कह सकती हूँ. वाह वाह क्या बात है, रिक्वेस्ट है. तीनों भाषाओं में मैंने बात कर दी, ठीक है ना. ओके, अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? देखिए 31st ऑफ जुलाई हो गया, लास्ट डे ऑफ जुलाई. ये ड्राई जुलाई कैसा ड्राई ड्राई गया है ना. वाकई बारिश तो हुई नहीं, और ये कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रेलर हमने जून के महीने से लेके मिड ऑफ जुलाई तक देखा, और उसके बाद एक जलवा आया छोटा सा जिसमें ठंड और उससे ज़्यादा ठंड पड़ने शुरू हो गई. ये तो डर ही बैठ गया था कि भाई ये ठंड कभी जाएगी कि नहीं जाएगी. अब देखिए एक ही महीना बचा है और उसके बाद स्प्रिंग. हाँ, हम यही कह सकते हैं ना. इसी पॉजिटिव नोट पर आप सबका साथ निभाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक काशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज़ में 12 बजे तक कशिश फूड्स के सौजन्य से. कशिश फूड्स जो आपके लिए लेकर आते हैं किफ़ायती दामों पर आपकी ग्रोसरी के आइटम्स, और वो भी बहुत बहुत सारे नए नए

0: Birds Adda.
1: तो मैंने आपके साथ एक बात जो छेड़ी थी अभी आते ही, वो थी अबाउट कुछ प्लांट्स. अब ये प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली लोग अपने घरों में लगाते हैं. अब घरों में लगाते हैं कहते हैं कि वो लक भी लेकर आते हैं. कुछ हाथ जो हाउस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक माइथोलॉजी होती है, जैसे लकी बैम्बू. अब कहते हैं कि इसको ऑफिस डेस्क पे रख देते हैं और ये जब अपनी लिविंग वॉल्स वगैरह में भी अगर हम लगाते हैं तो ये कहते हैं कि दे बिलीव दे आर सपोज टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक. अब कल्चरल बिलीफ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अनुसार ये एक चीज़ साल दर साल बढ़ती चली जा रही है और लोग इसको कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलैरिटी में है. हाँ, ये हम कर रहे हैं तो तुम भी करो, तुम करते हो तो तुम भी करो. और कुछ कहते हैं बहुत ही ओल्ड फैशन चीज़ें हो सकती हैं. अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये इस तरह के पेड़ दरअसल लक वाकई ही कभी कभार लेकर आते हैं. जैसे बैम्बू की मैं बात करती हूँ, इट हैज़ इट्स ओन फेम एंड ये ऑलमोस्ट जो एंटायर फेंगशुई होती है इसके आसपास आप प्रॉस्पेरिटी गुड एनर्जी इसके साथ साथ लेकर आ सकते हैं. जनरली इसमें कोई एफर्ट करना नहीं होता इस प्लांट में, ये अपने आप बढ़ता चला जाता. थोड़ा सा सॉइल है या पानी है, आप इसको टिपिकली इंडोर बिना किसी शिकायत के ये पेड़ अपने आप ये प्लांट बढ़ता चला जाता है. आपके ऑफिस में, अपार्टमेंट्स में, घर में, एनी होम जहाँ पे सनलाइट कम है लेकिन उसकी स्टेम्स जो है अपराइट रहती हैं और बहुत ईजिली आराम से इसको उगा सकते हैं. और कहा जाता है कि इंटीरियर्स के साथ ये बहुत वेल इस्टैब्लिश लगता है. मनी प्लांट, ओ माई गॉड, मुझे अभी तक याद है मेरी मम क्या करती थी. किसी के घर जाती थी तो वहाँ से चोरी कर मनी प्लांट लेकर आती थी. कैन यू इमेजिन हाउ ट्रू इज इट? क्या आप इस बात से रिलेट करते हैं कि मनी प्लांट आप किसी से पूछ के आप लें तो बेहतर रहेगा? आई वुड प्रेफर टू डू दैट. शी से नहीं, जब चोरी करके, शी यूज टू से दैट जब इस तरह से मनी प्लांट को चोरी करके ही ट्रेडिशन है. अरे भाई, ये मिथ कहाँ की बात है मुझे पता नहीं, बट इसमें ये फास्ट ग्रोइंग है और कहते कि ये एक ऐसा प्लांट है जो बिगिनर्स जो होते हैं लोगों को अपने घरों में लगाना चाहिए. अच्छा, इसको हम सॉइल में, पानी में किसी तरह से ओकेजनली पानी दे दें तो ये हेल्थी रहता है. इसकी फॉइलेज जो इसके जो पत्ते होते हैं उसको कहा जाता है कि आप शाइन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, बास्केट्स में से, शेल्व्स में से इसको हैंग कर सकते हैं राइट कंडीशंस में, एंड दैट्स अबाउट इट. आप देखेंगे कितना फास्ट ये बढ़ने लगता है. एक प्लांट और है जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने घरों में, नए घरों में रखना, और वो है तुलसी. तुलसी का प्लांट जो है काफ़ी सिंबलाइज करता है प्योरिटी, प्रोटेक्शन आपके कोर्टयार्ड में या फिर आपकी एंट्रेंस पर होते हैं. और ये एक स्पिरिचुअलिटी आपकी वेलनेस की प्रैक्टिस आपके लिए करती है. फ्रेग्रेंट पत्तियाँ तो होती ही हैं, आप इसकी चाय बना लेते हैं, होम की रेमेडीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये जो है ये बीज को अट्रैक्ट करता है और फिर अपने जगह जहाँ आपने इनको लगा दिया है वहाँ ये रह जाते हैं. इसका फ्रेग्रेंस जो होता है तुलसी का जनरली बहुत अच्छा माना जाता है. एंड यस, द नेक्स्ट प्लांट इज जेड प्लांट. लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ इस प्लांट की होती है. हाउस वार्मिंग में मोस्टली ये गिफ्ट में दिया जाता है. गार्डनर्स जो है ये कहते हैं कि इसके अंदर, जेड प्लांट के अंदर पानी अपने आप स्टोर होता है, इसकी थिक जो पत्तियाँ होती हैं, और ये प्लांट बहुत जल्दी मुरझाता नहीं है. आराम से धीरे धीरे ये उगने लग जाता है और फिर ये ट्री लाइक शेप में कई साल लगते हैं लेकिन बन जाता है. इट्स प्रिटी, इट्स ब्यूटीफुल और कहते हैं बहुत लक लेकर आता है प्लांट. एक और प्लांट जो है जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव इट, इवन आई हैव इट, इज एलोवेरा प्लांट. अब ये एलोवेरा का जो प्लांट है, दरअसल प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इसकी थिक लीव्स जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और इसके अंदर जो जेल होता है वो स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा होता है. माइनर बर्न्स, आपकी इरिटेटिंग स्किन है उसमें भी आपके लिए एक सूदिंग सा, एक बाम की तरह काम आता है. ईजिली बढ़ने लग जाता है एंड इट्स वेरी ब्राइट. प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी नाइस. तो ये बिलीफ, ये लक, ये पॉजिटिव एनर्जी ये जो प्लांट्स हैं अपने साथ लेकर आते हैं. आप में से कितने लोग हैं जो अपने घरों में, चाहे वो एलोवेरा हो या जेड प्लांट हो, तुलसी हो, मनी प्लांट हो या बैम्बू, आप लगाते हैं? मैं ये पांचों के पांचों प्लांट्स अपने घर में लगाती हूँ, लगा रखे हैं, एंड आई एम फीलिंग सो, यू नो, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दी आर्टिकल दिस मॉर्निंग, कि मैंने कहा आज इसके बारे में बात करूँगी, तो मैं आई वेंट टू डू अ चेक, ये घर में ये प्लांट है कि नहीं, ये प्लांट है कि नहीं, वो सारे प्लांट्स हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. कमिंग अप नेक्स्ट, ऑफिस शाउट आउट.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West, west side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
4: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
5: Get 70% off selected stock at Spa World's clearance center sale event today till Sunday.
6: There's thousands off display models, scratch and dent, and end of line spa pool swim spas, saunas and pergolas on a first come basis.
5: Today till Sunday from 9 a.m. at Spa World's clearance center, 9 Sylvia Park Road.
7: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
8: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
9: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
10: ब्रांची ग्रुप थ्री इवेंट न्यूजीलैंड अने अरोहा ऑटोज साथे मरीने प्रस्तुत करे छे राजगढ़ी लाइव इन ऑकलैंड। तैयार थई जाओ एक यादगार सांज माटे जहां हशे म्यूजिक मस्ती अने नॉन स्टॉप गरबा। सैटरडे नाइट 1 ऑगस्ट द महात्मा गांधी सेंटर राजगढ़ी साथे मनाओ एक शानदार गरबा नाइट। गरबा विथ राजगढ़ी सैटरडे नाइट 1 ऑगस्ट। टिकट्स माटे जाओ events.co.nz.
11: Media voice complaints. How can I help?
12: My kids won't shut up.
11: I'm not sure that's our problem.
12: They keep reciting lines from one of your radio ads.
11: Aw, cute.
12: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
13: What do you want, son?
14: I want me some of that real southern chicken.
12: 28 times.
11: So where are you now?
12: Eating chicken.
15: Advertise with
16: Media Works.
15: New Zealand listens to us.

0: Lauderdale. Office shout out. ऑफिस शाउट आउट की बात आ रही है तो आपका टेक्स्ट आया है 2116. आपने कहा अपने ऑफिस से आप मुझे सुन रहे हैं. थैंक यू थैंक यू. और जब इस तरह की बातें होती हैं कि आप क्वाइटली सुन रहे हैं, आपने कहा कि प्लीज़ डू नॉट टेक माय नेम, आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, जस्ट द डिजिट्स आई हैव टेकन. अब वो उससे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप ही को पता है खाली. तो बिग शाउट आउट गोइंग टू यू, क्योंकि आप लिख के भेजा कि आप माई टाइम सुनते हैं, आपको मज़ा आता है. एंड जो जो इन्फॉर्मेशन आती हैं यहाँ से जब 10 से 12 के बीच में, डेफिनेटली आप उनको इन्जॉय करते हैं. लेकिन अब आपको इन्जॉय कुछ और करना है. भजन जैम ये लाइव करने वाले हैं रवितेश देव और इनका इनक्रेडिबल लाइव बैंड. एक अपलिफ्टिंग डिवोशनल इवनिंग फ्यूजन भजन कीर्तन की होने वाली है, जिसको आपके लिए लेकर आ रहे हैं साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और एनजेड कल्चरल ट्रस्ट ने इसे तैयार किया है इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी. 22 अगस्त के दिन शाम 7 बजे वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोटो में होने वाला है. $30 की टिकट है. बच्चे अंडर 5 ईयर्स गोज फ्री. स्नैक्स और कावा वहाँ पे आपको मिलेगा. टिकट्स खरीदने के लिए ऑनलाइन आप ले सकते हैं एट eventbrite.com के जरिए. एक अमेजिंग सी इवनिंग होगी जहाँ लाइव म्यूजिक, डिवोशन, कम्युनिटी का जो आपके लिए एक मौका है साथ बैठने का, मिलने का, वो आप मिस आउट नहीं कर सकते.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

देखो इसमें कोई भोलेपन की बात नहीं है, इसमें बहुत सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि आप लोगों ने अपने वीकेंड पर कुछ अपने लिए प्लान किया है कि नहीं किया है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ आप क्या प्लान कर सकते हैं। अगर आप गरबा के फैन हैं तो राज गढ़वी लाइव परफॉर्म करने के लिए न्यूजीलैंड आ गए हैं और ये आपके लिए कल परफॉर्म करने वाले हैं द महात्मा गांधी सेंटर। थोड़ी सी ही टिकट बची हैं, अगर आपको खरीदनी है तो 02243947 पर आप स्वप्निल शाह से बातें कर सकते हैं। eventstickets.co.nz के जरिए भी जाकर आप टिकट्स खरीद सकते हैं।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: ईट बेटर लिव बेटर. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है आपको पता भी नहीं चलती हैं, लेकिन कुछ तो पता चलती हैं. देयर इज़ अ जंप इन द नंबर्स. जो टीन्स हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं और उनकी फॉर्मर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होती. एजुकेशन मिनिस्टर ने एक फिगर बताया जहाँ 15% पिछले साल के स्कूल लीवर्स थे जिन्होंने NCEA का सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये भी नहीं ली थी. और ये फिगर सेम है, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे तो ये 10-11% था. इसका मतलब ये हो गया कि इन 2025 10,473 टीन्स जो थे इन्होंने स्कूल छोड़ा बिना NCEA के सर्टिफिकेट के और क्वालिफिकेशन के. और ये पुअर नेबरहुड और जो क्वार्टर लीवर्स हैं वो उस पर इफ़ेक्ट कर रहा था कि भाई ये फिगर्स जो है इसके हिसाब से यही पता चलता है कि लोगों को पढ़ने में शायद इंटरेस्ट नहीं है. अ परसेंटेज ऑफ माउरीज एंड पैसिफिक लीवर्स विद लेवल टू ये स्लाइट इंक्रीज पर आया है टू 63% एंड 74% रिस्पेक्टिवली. और ये फिगर्स बताया जाता है कि 18% ऑफ लास्ट ईयर के लीवर्स ना इन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं करी. ऑल दो 85% जो है लिटरेसी रिक्वायरमेंट और 85% जो है न्यूमरेसी इन रिक्वायरमेंट में पास हुए, बट ओनली 82% मेट बोथ. बट दिस इज सीरियस. आजकल की जो लाइफ चल रही है उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई ले

0: www.sbi.co.nz or call 0800-4NZ-PMI.
1: तो आपने टेक्स्ट किया कि आपकी जो सिस्टर है वो इंगेज हो रहे हैं, और ये सिंबलाइज करता है एक सिग्निफिकेंट लाइफ का जो ट्रांजिशन है उनकी लाइफ में आ रखा है, और हो सकता है ये हाईलाइट करता है आपका खुद का डिज़ायर फॉर अ डीप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी. और ये ड्रीम फ्रीक्वेंटली आपका इमोशनल कनेक्शन जो है, और जो आपका एक रिलेशन जो आप इवॉल्व करती हैं अपने बहन के साथ, वो बताता है. कभी कभी ये जो इंगेजमेंट और मैरिज की ड्रीम्स होती हैं ये कुछ कॉमन कैटेगरीज में आती हैं. आपके सिस्टर की इंगेजमेंट में भी इंडिकेट कर रहा है कि दैट शी इज गोइंग टू स्टेप इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, कुड बी अफेक्टिंग योर ओन बॉन्ड पॉसिबली. फिर एक होता है कि ड्रीम होता है कि प्रॉबेबली एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट आप अपनी बहन का चाहती हैं, और एक रोमांटिक स्टेबिलिटी चाहती हैं क्योंकि आप एक बहुत क्लोज कनेक्शन फील करती हैं उनके साथ. कभी कभी ये इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं ये एक फैमिली मेम्बर का आप अगर शादी देखते हैं, सबकॉन्शियसली आपका एक एफर्ट रहता है कि आप यूनाइट करना चाहते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, एंड सो दैट दे कैन फाइंड सम हार्मनी. और अगर आपका ड्रीम है कभी अनईजी फीलिंग्स छोड़ता है, इट माइट रिफ्लेक्ट योर एंग्जायटी जो आपकी रिलेशनशिप या इनसिक्योरिटी आपकी बहन के लिए आपको कभी कभी फील होती है. तो इस तरह के विजन्स जब रात को आते हैं प्रिसाइसली ये मीन करते हैं यू आर हैवीली इन दो सर्कमस्टांसिस प्रोबेबली गोइंग थ्रू इट. और ये ड्रीम जब आपको एक्सप्लोर करने की मौका मिलता है, समटाइम्स इट्स वेरी फैसिनेटिंग की यह प्रोसेस आप उठकर भी उनको आप शेयर कर पा रहे हैं. इज़न्ट दैट ग्रेट?

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: वैसे हमारी भी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन आप हमें जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं. आपको रुवा ऐप डाउनलोड करना है, जिसके ज़रिए आपको 80s के ट्रैक्स हों या 90s के, 90s तो हम बजा ही देते हैं, 60s 70s के हों, भजन कीर्तन संग्रह हो या फिर पंजाबी हिट्स या राहत फतेह अली खान का आपको म्यूज़िक स्टेशन सुनना हो तो.

भी होता है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें आपको हमेशा याद आती चली जाती है कि अरे मम्मी ने ये कहा था, अरे डैड ने ये कहा था, अरे इन्होंने ये कहा था, अरे उसने वो कहा था, कितनी बड़ी बात थी वो जब कही थी, तब समझ में नहीं आई लेकिन अब आज समझ में आ रही है। तो ये सब समय का चक्कर होता है। वैसे समय से रिलेटेड बातें करते करते मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक भी बह गई इमोशंस में, देखो। लेकिन कशिश फूस के सौजन्य से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हैप्पी फ्राइडे। यस, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने ट्यून इन किया है। 5244 अपना नाम भी लिख देते या लिख देती तो बहुत अच्छा लगता। आपने लिख के भेजा है, ग्रेट जॉब प्लेइंग अ साउथ इंडियन सॉन्ग हियर, वेरी रिफ्रेशिंग, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। हमारी कोशिश रहती है कि हम सबको खुश रखें, सबके साथ चलते चले जाएं। कशिश फूस के सौजन्य से चलिए चलते हैं अब हमारे मिड मॉर्निंग मज़ा की ओर, जहां आपके साथ मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। अब ये ऑप्स जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्स आती हैं, ये जो शॉप्स होती हैं, यहाँ हम भी कई चीज़ें रिसाइकल करते हैं, है ना। तो आज रिसाइकल रीयूज़ करने में कुछ बातें और भी करने वाले हैं। करण औजला के डबल पास के बारे में भी बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग। दिस इज मी कशिका with you till 12 o'clock.

0: वो गई, अब काम करें।
1: ओके, मजे की बात तो ये है दैट आपके लिए आ रहे हैं करण औजला लाइव परफॉर्म करने के लिए पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर, और ये स्पा करीना में 25 अगस्त के दिन ये करने वाले हैं एंड इनके स्पेशल गेस्ट इकी होने वाले हैं। अच्छा, ये एक डबल पास जीतना है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको क्या करना है, करण औजला का KA लिखना है, 5599 पे ये लिख के बताना है कि क्या करण औजला ज़्यादातर इंडिया में रहे या किसी और कंट्री में रहे, क्या वो इंडिया में रहे या ज़्यादातर वो किसी और कंट्री में रहे, बस आपको मुझे यही बताना है। और आपको कुछ लोगों को जो बहुत डाई हार्ड फैन है उनकी पूरी कहानी भी पता है ना, वेरी सैड स्टोरी बट यस ही हैज़ कम आउट ऑफ इट। तो भाई 25 अगस्त के दिन स्पा करीना, मगर आप एक बहुत ही खूबसूरत सी रात इस सुपरस्टार करण औजला के साथ और इक्की जो इनके साथ परफॉर्म करने वाले हैं देखना चाहते हैं इस एपिक शो को, तो डेफिनेटली 5599 पे अजय, परफेक्ट आंसर, आई गॉट इट, यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डोंट फॉरगेट 6 वर्ड स्टोरी, आप भी मेरे साथ 5599 पे टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं।
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
3: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off cabbage.
4: Ooh, yuck.
3: Joining a company with a pyramid-shaped structure. Ordering Happy Meals as an adult. Celebrating your anniversary in the food court. Selling your clean urine to competitive cyclists. DIYing, side hustling, catfishing, cold sharing, couch surfing, foraging, freeloading or joining a thruple.
5: How's it? I'm Dennis.
3: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
6: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
7: हाँ मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI.
8: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
9: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
10: Whites separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
11: आज मेरी सिक्स वर्ड की स्टोरी जो आई है ना टेक्स्ट के जरिए हिंदी में आई है अब ये हिंदी में इन्होंने लिख के भेजा पहला प्यार अधूरी चिट्ठी भीगे नैन पहला प्यार अधूरी चिट्ठी भीगे नैन ओहो अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड ये अनटोल्ड स्टोरी आपकी अधूरी कहानी हमारी तुम्हारी अधूरी कहानी है ना पिक्चर आई भी थी ओके कोई बात नहीं डोंट वरी थिंग्स हैपन एंड जस्ट मूव ऑन I can see that. अच्छा आपका आंसर सही है एंड 5489 रंजीत सिंह आपने लिख तो भेजा अरे यार ओके अजय आपने भी आंसर सही लिखा एंड देन आई हैव निक आपका आंसर भी सही है 2123 आपका आंसर भी सही है सो आप सबका नाम मैंने ड्रॉ में ज़रूर ऐड कर लिया है बाय द वे एक बात आपको बतानी चाहती हूँ क्वांटस मे हैव कंप्लीटेड 24 आवर्स की एक टेस्ट फ्लाइट जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के बीच में की जो एक नई बस एयरबस का उन्होंने यू नो एक एक्सपेरिमेंट किया था बट एक छोटी सी यू नो एयरलाइन जो है इन्होंने बहुत क्वाइटली पुल ऑफ किया एक लॉन्ग फ्लीट यानी कि एयर शैटम्स ने इन्होंने वेलकम किया एक साब S340 और ये एक रूट जो था इन्होंने मेजर किया टू न्यूजीलैंड सो इन्होंने टेक ऑफ किया इन फ्रॉम द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ सास्काचेवान और ट्यूसडे के दिन और एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप ये पहली बार इट फ्लू टू ओकलैंड कैलिफोर्निया अक्रॉस पैसिफिक टू हवाई और थर्सडे के दिन इट मस्ट हैव फ्लोन टू आपिया इन सामोआ बिफोर अराइविंग इन ऑकलैंड ये फ्राइडे के दिन आज पहुंचने वाला है यानी कि लगभग 13,000 किलोमीटर्स की फ्लाइट एंड अ लॉट ऑफ एयर माइल्स एंड जस्ट टू एयर पायलट्स ऑन बोर्ड वाओ व्हाट अ फीट सो ये ए शैटम्स जो है इन्होंने, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, इन्होंने कहा वी पे देम, दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दे डू इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग द फ्यूल, बिकॉज मुझे उसी बात पे डर लग रहा था कि इतनी छोटी फ्लाइट में इतना फ्यूल कैसे हो रहा है. तो ओरिजिनली इन्होंने कहा था कि प्लान किया था कि सॉल्ट लेक सिटी तक के लिए फ्लाइट लेंगे, बट देन वी गॉट अ प्लान टू ओकलैंड इंस्टेड. वाह, वेरी नाइस, इट्स अ ग्रेट फीट. कुछ लोग बहुत आवाज़ करते हैं जब कुछ करते हैं, कुछ लोग क्वाइटली कुछ काम करते हैं, जैसे ए शैटम.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अनगुण.
1: इट डिजर्व्स अ मेंशन. एंड 5734 आपने लिख के भेजा कि करण औजला के लिए आपने लिखा कि हैज हिज लाइफ इन पंजाब गुराला, आई थिंक द जगह का नाम, और उन्होंने कहा वे ही वॉज बॉर्न मोस्टली एंड आफ्टर दैट ही मूव टू कैनेडा फॉर स्टडीज. द स्टोरी दैट आई कैन टेल इज पीपल ऑफन सी द सक्सेस, द सोल्ड आउट शोज, द फेम, बट दे डोंट ऑलवेज सी द सेक्रीफाइस बिहाइंड इट. इवन आफ्टर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल लाइफ, करण हैज नाउ has had to keep moving, adapting and staying away from family and the comfort of home to keep growing as an artist. God bless. Honestly, means a lot. Thank you so much. Aapka naam bhi maine draw mein add kar liya hai. Amma.

0: ईट बेटर लिव बेटर। लेकिन हम जब सेलिब्रिटीज की लाइव्स के बारे में जब बातें करते हैं ना, एक चीज़ ज़रूर होती है। अब ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, मुझे भी पता है कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा चलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहा है, जहां पर सुपरस्टार राजेश खन्ना रहते थे, घर का नाम था आशीर्वाद, एक बड़ा आइकॉनिक सा बंगलो है, एंड इट्स रियली अमेजिंग, फॉर्चुनेटली आई हैव विजिटेड इट। बट ये लेट सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के इस घर को हॉन्टेड, कर्स्ड, अनलकी कहा जाता है। इन द इंटरिम ये एक बिजनेस पर्सन थे जो शशि शेट्टी, जो करेंटली इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है। और उसके बाद उन्होंने 24 जुलाई के दिन ये ऑब्जर्व किया, ये एलिगेशन जो प्रॉपर्टी की तरफ बनाई जा रही थी, कहा गया कि प्लीज़ वी शुड लिव, वी वॉन्ट टू लिव विद डिग्निटी। तो ये इन्होंने इस प्रॉपर्टी को ये ओन करते हैं, और ये ओरिजिनल बंगलो जो था, इट वॉज डिमोलिश्ड आई थिंक लगभग शायद अब 10 साल हो गए, और उन्होंने रिटेन किया वो नाम आशीर्वाद, और एक 4-स्टोरी फैमिली का रेजिडेंशियल बिल्डिंग या घर बना लिया उस पर। हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट्स में हमेशा लिख के आता है वो ये घर कर्स था, इस घर में ये हुआ, उस घर में वो हुआ। तो इस घर के पीछे जो हिस्ट्री थी वो दरअसल, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ, दैट बिफोर राजेश खन्ना जी, ये घर राजेंद्र कुमार जी एक्टर का था, जो राजेश खन्ना जी ने लगभग 3.5 लाख में ख़रीदा था। एंड राजेंद्र कुमार जी ने ये बंगलो आई थिंक इन 65,050s में ये बंगलो ख़रीदा था फ्रॉम आई थिंक देयर वॉज भारत भूषण एन एक्टर, उनसे ख़रीदा था। तो किसी को भी जब इस घर में आए तो उनको उनसे कोई भी सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद उनके करियर में जो पीक होती थी, ये तीनों सुपरस्टार्स थे अपने ज़माने के, और उनका डिविएट ही होता चला गया। सो ये एक मिथ क्रिएट की गई थी, जो मिस्टर शेट्टी ने इसको कहा कि इसका खंडन करते हुए उनका नाम भी उसने राजेश खन्ना ही रखा, और कहा कि डोंट से दिस अगेन दैट इट वाज हॉन्टेड और इट्स जिंक्स्ड और इट्स गॉट सम काइंड ऑफ अ कर्स ऑन इट।
1: ड्राइविंग यू होम The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला,
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
5: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Give your place a winter glow up for less with Mitre 10. Clean up your space with 20% off Dissolve It cleaners and save $160 on a super tub single cupboard laundry tub, now $539. T&C apply. Shop in store and online at Mitre 10.
10: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma. Save lives.
11: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
12: No way.
13: We in trouble?
11: Nah, it's BP Plus.
13: What is that?
11: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
12: Sweet! Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
14: Rescue me, recycle me.
0: रेस्क्यू में रिसाइकिल में मुझे सिर्फ आपसे एक ही बात कहनी है दैट कुछ आइटम्स जो हम घर में इस्तेमाल नहीं करते जैसे कटलरी है या यू नो बोर्ड गेम्स होते हैं जो हमारे कबर्ड में मट्टियाँ खा रही होते हैं या फिर यू नो शर्ट है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं डेकोरेशन का सामान होता है कुछ ये हम ऑप्स फैमिली ऑप्स शॉप में जाके देकर आ जाते हैं वहाँ पर हम उन्हें डोनेट कर देते हैं एंड ये देखा जाए तो एज पर द रिपोर्ट इफ़ समवन इज़ कैरिंग आउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो स्टोर में आप लेके जाते हैं ये बिक जाती हैं अभी अल्टीमेटली देर इज़ अ होम फॉर एवरीथिंग इजन देयर ट्रू और ये एक रिपोर्ट आ रही है जिससे कहा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस ये ऑप शॉप्स जो हैं ये कम्युनिटीज़ को फाइनेंशियली इन्वायरमेंटली और सोशली हेल्प करती हैं और ये रिपोर्ट जो है चैरिटीज़ अक्रॉस द कंट्री इनमें बताया गया कि ये इन्फॉर्मेशन जो सेल एम्प्लॉयमेंट और प्रॉफिट की बात करते हैं एक ह्यूज माइलस्टोन लेके आता है तब जब कभी भी कुछ आप रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं आप कुछ देने की कोशिश करते हैं किसी को चाहे वो सेल्वेशन आर्मी हो या आप यू नो किसी भी रेड क्रॉस वाइट क्रॉस इन तरह की शॉप्स में भी अगर आप जाते हैं देते हैं कहा जाता है एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट है 78 मिलियन वॉज री इन्वेस्टेड इंटू सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स कुछ घरों को रिलीफ मिला जब उनको पता चला कि दे हैव सेव्ड सो मच ऑफ मनी बाय जस्ट बाइंग सेकेंड हैंड आइटम्स एंड लगभग 41,300 टन सेकेंड हैंड गुड्स जो एस्टिमेटेड थे दिस they were saved from going into the landfills now you can you know understand the importance of such a beautiful thing jo aap recycle karte hain usko aap bhej dete hain
13: dil se

0: nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.
1: तो आपका टेक्स्ट आया है, आपने कहा ऑप्स जो शॉप्स हैं दे हैव रीसोल्ड 2.2 मिलियन बिल्डिंग एंड हार्डवेयर आइटम्स लाइक वुड एंड टिम्बर प्रोडक्ट्स टू. वाओ, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस इन्फॉर्मेशन.

इससे पहले कि मैं थ्रोबैक में पहुंचूं, मेरे पास एक और टेक्स्ट आया है और इन्होंने बताया है कि हाउस होल्ड होमवेयर में करीब 22 मिलियन पीसेज वर फाउंड, दे फाउंड न्यू होम, जैसे कि चीज़ें लाइक फर्नीचर, लार्ज अप्लायंसेस, टॉयज एंड गेम्स एज वेल. थैंक यू. आई मीन रियली इट मीन्स अ लॉट जब आप, जब लोग सब इंटरेक्ट करते हैं. सो दीज ब्यूटिफुल आइटम्स मे बी दे वर गिफ्टेड एंड किसी को इस्तेमाल नहीं करना, या कबर्ड में पड़ी रह गई थी आपकी चीज़ें, तो वाई नॉट फाइंड इट अनदर होम रादर देन उसको आप अपने पास अपने घर में संभाल के रखें, जबकि आपको पता है कि आप उसका इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हैं, कि नहीं. लेकिन जब ऐसे में कोई बात बिगड़ने लग जाती है तो आपको पता है ना कि आपको कहाँ किस प्रोग्राम को सुनना है. माय टाइम लेकर मैं काशिका आ जाती हूँ 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे आपके साथ, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कुछ आपको सुझाव देने के लिए, आपको कोई छोटा छोटा ज्ञान या मार्गदर्शन देने के लिए भी कह सकती हूँ. तो डेफिनेटली आई होप आपको जो हमारा कॉन्टेंट होता है माई टाइम में आपको पसंद आया. लेकिन अगर कोई भी फीडबैक होगा आपका तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे काशिका को ईमेल कर सकते हैं ऑन kashikasingh@mediaworks.co.nz. एंड रिमेंबर, आपको तो मेरा नंबर वैसे लोगों को पता ही है, क्योंकि सेल से रिलेटेड जो भी कोई बात करनी होती है तो आप लोग को मैं गाइड भी कर सकती हूँ रिगार्डिंग एनी कैंपेन ऑफ योर्स विच इज़ गोइंग फॉरवर्ड. सो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है शुक्रवार. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. आप किस मूड में हैं, उस मूड में आप बने रहिए, जुटे रहिए, डटे रहिए, लेकिन एक काम करते चले जाइए, अपना ख्याल रखते चले जाइए और हम सुनते चले जाइए. तो अभी के लिए चलती हूँ और आपसे मंडे की सुबह मिलती हूँ. मगर जाने से पहले वायदा लेना चाहती हूँ दैट येस, आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे. सो लुक आफ्टर योरसेल्फ्स. मौसम कैसा भी हो, आपको अपना एक एम बना के रखना है कि मैंने सो एंड सो टाइम अपने लिए निकाल लिया. ऑलराइट, लुक आफ्टर योरसेल्फ्स. दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. टेक केयर, स्टे वार्म.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन।